उबली गायें खा रही हैं और सात बाले हरी हैं और सात सूखी। शायद कि मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। यूसुफ ने कहा, सात बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। इस दौरान में जो फसलें तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकाल लो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर सात बरस बहुत सख्त आएंगे, उस जमाने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर रखा हो। उसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा जिसमें बारान रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे।

बादशाह ने कहा उसे मेरे पास लाओ, मगर जब शाही फरिश्तादा यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, मेरा रब तो उनकी मक्कारी से वाकिफ ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजुर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी? सब ने यक जुबान होकर कहा हाशा लिल्लाह, हमने तो इसमें बदी का शाइबा तक न पाया। अजीज की बीवी बोल उठी अब हक खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसे फुसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ ने कहा इससे मेरी गरज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी खयानत नहीं की थी, और ये कि जो खयानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूं, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूं। जब यूसुफ ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा अब आप हमारे यहां कद्र मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा मुल्क के खजाने मेरे सपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूं और इल्म भी रखता हूं। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि उसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अज्र हमारे यहां मारा नहीं जाता, और आखिरत का अज्र उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ

यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके हां हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे ना आशना थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना, देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूं और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूं। अगर तुम उसे न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी न भटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राजी हो जाएं और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के एवज जो माल दिया है वो चुपके से उनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस फयाजी पर एहसान मंद होंगे और अजब नहीं कि फिर पलटें। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं और उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बारे शुतर और ज्यादा भी ले आएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं उसको हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दे दो कि इसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा, देखो, हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है।

फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुस्सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता, उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और वाकया भी यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफर्रक दरवाजों से दाखिल हुए तो उसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को जानते नहीं हैं। ये लोग यूसुफ के हुजूर पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूं जो खोया गया था, अब तू उन बातों का गम न कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ इन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालो, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खोई गई? सरकारी मुलाजमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके जमादार ने कहा, जो शख्स ला कर देगा उसके लिए एक बारे शुतर इनाम है, इसका मैं जिम्मा लेता हूं। उन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा, उसकी सजा, जिसके सामान में से चीज निकले वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाए। हमारे यहां तो ऐसे जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से गुम

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

दिलों का भी मालिक हालात का भी मालिक है। जब बंदा ये मानता है तो उसके दिल से मखलूक का खौफ कम हो जाता है। गोया वो इस दुआ का कायल है, ऐ हमारे रब, रब्बना या मालिक अल-मुल्क वल-मलकूत, ऐ बादशाहत और पूरी कायनात के मालिक, नऊदु बिका मिनल किब्र वल-मुतकब्बिरीन, ऐ अल्लाह हम तकब्बुर से भी तेरी पनाह चाहते हैं और मुतकब्बिर लोगों के शर से भी। आप जानते हैं सामिन किराम, किब्र वो बीमारी है जिसमें इंसान खुद को बड़ा समझे और दूसरों को हकीर जाने, और इस कबीह वस्फ से मुतसिफ जो शख्स है उसे मुतकब्बिर कहते हैं। तो मुतकब्बिर इंसान दूसरों को तकलीफ देता है, इसलिए दुआ है, या अल्लाह हमारे दिल से तकब्बुर निकाल दे। इजअलना मिन असहलिल मुमिनीन अत्तय्यिबीन, हमें नरम खो, आसान, भले और पाकीजा मोमिन बना दे। ऐसा मोमिन जो लोगों के लिए आसान हो, मुश्किल ना हो, जिसके पास बैठकर सुकून मिले, परेशानी नहीं। या रब, ऐ हमारे रब, इहदी नुफूसना वकीना शर्रहा, ऐ रब हमारे नफ्स को हिदायत दे और उसके शर से हमें बचा ले। और नफ्स के शर से बचाने का मतलब हम बार बार कहते आए हैं, और वो ये कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर ही होता है, और वो है नफ्से अम्मारा। ये ख्वाहिश, गुरूर, हसद, गुस्सा, लालच सब उस नफ्से अम्मारा के हमले हैं। इसलिए ये दुआ की जा रही है, اجعلنا اهدي نفوسنا وقنا شرها, پھر آگے بندہ یوں کہتا ہے, اصلح نوايانا واعمالنا, ہماری نیتیں بھی درست کر دے اور اعمال بھی, کیونکہ بعض اوقات عمل تو اچھا ہوتا ہے, نیت خراب ہوتی ہے, کبھی نیت اچھی ہوتی ہے مگر عمل کمزور ہوتا ہے۔ مومن کو تو دونوں چاہیے, नेक नीयत भी, नेक अमल भी। और इस वजह से मोमिन हर वक्त इस बात पर परेशान रहता है कि कहीं शो ऑफ और दिखावा का काम तो मुझसे सादर नहीं हो रहा। नऊदु बिका मिन मज़ाहिरिर रिया वस्सुमअ, दिखावे और लोगों में नाम कमाने की ख्वाहिश से पनाह चाहते हैं। रिया यानी इबादत लोगों को दिखाने के लिए करना, और सुमा इसका मतलब है अच्छे काम इसलिए करना कि लोग सुने और तारीफ करें, और ये दिल की खतरनाक बीमारियां हैं। फिर रिया और सुमा से पनाह मांगते हुए बंदा मजीद आगे बढ़ता है, कहता है, ए अल्लाह तेरी इबादत मेरे लिए मजा और खुशी का सबब बना दे, यानी नमाज बोझ न लगे, कुरान भारी न लगे, दुआ मुश्किल न हो, बल्कि ये सब आमाल दिल को राहत देने वाले बने। वल उन्स वर्रिदा बिमर्दातिक, अपने रिजा वाले कामों में दिल का सुकून और खुशी अता फरमा, यानी जो अल्लाह को पसंद है वही हमें भी महबूब हो जाए। सामने किराम, आज की इस दुआ में हमारे लिए कई सारे पैगामात हैं। बस आज की दुआ दिल की इस्लाह, नफ्स की तरबियत, आजिज़ी, इखलास और इबादत की लज्जत मांगने वाली दुआ है। ये दुआ गोया हमें ये नसीहत कर रही है कि तकब्बुर छोड़ो, नरम मिजाज बनो, नफ्स की इस्लाह करो, नीयत साफ रखो, दिखावे से बचो, इबादत में लज्जत मांगो और अल्लाह की रजा में सुकून ढूंढो। फिर बंदा ये भी जानता है कि अल्लाह की रहमत के सिवा ये सब कुछ नामुमकिन है, तो फिर वो कहने लगता है, अंजिल अलैना मिन औसा रहमातिका या रहीम, यानी हयात रहम करने वाले रब, हम पर अपनी वसी रहमत नाजिल फरमा, ऐसी रहमत अता फरमा जिससे हमारा दीन भी संवर जाए और दुनिया भी। रहमतन

0: प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक गांव में एक शरारती लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली अपने वालिद के साथ एक खेत में रहता था, जहां वो गायें, बकरियां और दीगर जानवर पालते थे। भाई, अली को तो शरारतें करने का बहुत शौक था और अक्सर वो गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन अली के जहन में एक अजीब ख्याल आया। वो सोचने लगा कि गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो अपने खेत के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया मदद करें, भेड़िया भेड़िया मेरे खेतों में घुस आया है। गांव के लोग ये सुनकर परेशान हो गए और दौड़ते हुए अली के खेतों में पहुंचे। वो अपने साथ डंडे और दीगर औजार लेकर आए ताकि वो भेड़ियों को भगा सकें। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि ना कोई भेड़िया था और ना ही कोई खतरा। बस वहां अली खड़ा जोर जोर से हंस रहा था और कहने लगा, आप सबको तो मैंने आज भी बेवकूफ बना दिया, यहाँ कोई भेड़िया वड़िया नहीं था। गांव वाले बहुत गुस्सा हुए, लेकिन वो सोचने लगे कि चलो जाने दो, बच्चा है, इसलिए उन्होंने उसे माफ कर दिया और वापस चले गए। लेकिन अली कहां बाज आने वाला था। चंद दिन बाद अली ने दोबारा वही हरकत की। दोस्तों, वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया मदद करो मदद करो। गांव के लोग अली की आवाज सुनकर दोबारा भागे और जैसे ही वो खेत पहुंचे तो एक बार फिर वहां ना कोई भेड़िया था और ना कोई खतरा। और फिर से अली साहब वहां पे कहके लगाकर हंस रहे थे, देखा आप लोग फिर बेवकूफ बन गए। गांव वाले इस बार काफी नाराज हो चुके थे और उन्होंने

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, अरबी जबान की कहावत है जो इंसान के एक आम रवैये की तस्वीर भी, तर्रार व तशर्रत, यानी मांगने वाला और ऊपर से शर्तें भी लगा रहा है। ये कहावत तब कही जाती है जब कोई मोहताज या साहिल आपसे मदद मांगे, जब उसे कुछ देते हैं तो उसे लेने में तरद्दुद करे या कहे ये कम है, ज्यादा चाहिए, मैं ये नहीं लूंगा, उसकी जगह वो दे दो, या शराइत तय करने लग जाए। गोया वो खुद तो मोहताज है मगर मुतालिबे उसके बड़े हैं। अरब इस रवैये को मजाकन और तंजन बयान करते हुए कहते हैं तर्रार व यश्तरित, यानी भिखारी और नखरे भी। हमारे यहाँ भी मशहूर मुहावरा है कि भिखारी के नखरे, गोया मांगने वाला शर्तें लगाए तो बहुत ताज्जुब की बात समझी जाती है। ये कहावत हमें ये सिखाती है कि इंसान को अपनी हालत के मुताबिक गुफ्तगु, रवैया और तवक्कात रखनी चाहिए। जो मदद ले रहा हो उसमें शुक्रगुजारी होने चाहिए, न कि नखरे और मुतालिबे। इसीलिए अरब कहते हैं तर्रार व तशर्रत, भिखारी और ऊपर से शर्तें भी लगाता है।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादात या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने किराम, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो हमें ये सिखाती है कि इबादत के साथ इंसानों के जज्बात और जरूरियात का एहतराम भी दीन का हिस्सा है। आज का मौजू है नमाज में मुक्तदियों का ख्याल रखना और बच्चों पर शफकत करना। अबू कतादा और अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ और मेरा इरादा होता है कि नमाज को तवील करूँ, लेकिन जब मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो अपनी नमाज मुख्तसर कर देता हूँ इस खौफ से कि कहीं उसकी माँ मशक्कत में न पड़ जाए। सबरिक्रम, जरा इस मंजर को तस्वर कीजिए, नमाज जारी है और इमाम कौन है? खातमुन्नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवील क़याम बहुत महबूब था, लेकिन अचानक एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज आती है। फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाती शौक को एक तरफ रखते हैं और नमाज को मुख्तसर कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि कहीं उस बच्चे की माँ परेशान ना हो। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, सख्ती न करो, खुशखबरी दो, नफरत न दिलाओ। ये हदीस उसी उसूल की अमली तस्वीर है। अगरचे नमाज लंबी करना ये बजात खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक महबूब अमल है, लेकिन जब उससे दूसरों को मशक्क़त होने लगी तो आपने आसानी को ही इख्तियार किया और वही आपकी सुन्नत करार पाई। मजीद एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई लोगों को नमाज पढ़ाए तो हल्की नमाज पढ़ाए, क्योंकि इनमें कमजोर, बूढ़े और जरूरतमंद भी होते हैं। अब ये सुन्नत सामने किराम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, घर में भी अगर हम नमाज पढ़ रहे हों और किसी बच्चे को हमारी जरूरत हो या कोई आवाज दे रहा हो या कोई हकीकी जरूरत पेश आ जाए तो हमें दीन की रूह को समझते हुए हिकमत और तवाजुन के साथ अमल करना चाहिए। इस्लाम सख्ती का नहीं, रहमत का दीन है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। हम खुराक खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं देखते हैं कि उसका रंग क्या है, उसकी खुशबू क्या है, कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसमें क्या छुपा हुआ है, कुछ केमिकल छुपे हुए हैं या नहीं है, और हमारी सेहत पर उसके क्या असरात हैं, और ये कि जो प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले जाते हैं वो क्या करते हैं। खाना ख़राब होने से तो बचाते हैं, रंग जो है खाने का बहुत ही चमकदार दिखाते हैं, जायका भी बढ़ा देते हैं, लेकिन उससे हमारा मैदा कमज़ोर हो जाता है, एलर्जी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, और ख़ास तौर पर बच्चों में हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। आमतौर पर जो एडिक्टिव्स हैं, जैसे कि मुख्तलिफ कलर्स की चिप्स हैं, जेलीज हैं, कैंडीज हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और इससे स्किन पर रैश हो सकते हैं और हाइपर एक्टिविटी भी हो सक्ती है। और नूडल्स जो कि बहुत ही पसंद किए जाते हैं या फ्रोजन फूड हैं, उससे जिस्म पर ख़ारिश होने का मसला हो सकता है और सर में दर्द भी हो सकता है। स्वीटनर्स जो कि शुगर फ्री बिस्किट्स हैं, वो इंसुलिन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आर्टिफिशियल जो कलर्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों में। तो इसलिए जो केमिकल्स हैं वो रेडीमेड जूसेस में, बिस्किट्स में, चिप्स में, जो चिकन नगेट्स हैं उनमें, मार्जरीन जो है उसमें, और इस तरह जो बेकरी के आइटम्स हैं उनमें पाए जाते हैं, केचप और सॉसेस भी उसमें शामिल हैं। तो फिर यह है कि हमें घर का बना हुआ जूस इस्तेमाल करना है, और इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप ज़रूर उन्हें देख लीजिए। जैसे आप शॉपिंग करते हैं ध्यान दीजिए ई नंबर्स पर, और इसी तरह रेड फ्लैग में बहुत लंबी इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है उसे आप देख लीजिए। ये भी देखिए कि उसमें नो आर्टिफिशियल्स का जर लिखा है या नहीं, और ज़ीरो शुगर जो है अक्सर वो हिडन स्वीटनर्स उसमें डाले होते हैं। बच्चों की ग़िज़ा में ख़ास एहतियात कीजिए, लंच बॉक्स जो है वो फ्रेश फ्रूट उसमें रखिए, फ्रेश फूड बनाकर उसमें रखिए, रेडीमेड जूसेस जो हैं उनसे परहेज़ कीजिए, और जो नेचुरल स्नैक्स हैं जैसे कि खजूर है, बादाम है, योगर्ट है, वो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को आप दें। कुदरती अशिया हमेशा महफूज हैं, जितना सादा खाना होगा इतनी ज़्यादा बेहतर सेहत होगी। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर के वन ऑफ द लीडिंग फुटबॉलर्स में से एक करीम बुदियाफ। यस दोस्तों, करीम बुदियाफ कतर के सबसे तजुर्बेकार और भरोसेमंद फुटबॉलर्स में शुमार किए जाते हैं। उनकी पैदाइश 16 सितंबर 1990 को फ्रांस में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने कतर की कौमी टीम की नुमाइंदगी अख्तियार की और मुल्क के फुटबॉल निज़ाम का अहम हिस्सा बन गए। वो ज़्यादातर डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर डिफेंडर की पोजीशन भी बाखूबी संभाल लेते हैं। करीम ने अपने क्लब कैरियर का बड़ा हिस्सा अल दोहेल के साथ गुजारा, जहां उन्होंने कई कतर स्टार्स लीग टाइटल्स और डोमेस्टिक कप्स जीतने में किरदार अदा किया। उनकी मजबूत टैकलिंग, बेहतरीन पोजीशनिंग और गेम को पढ़ने की सलाहियत उन्हें टीम का लाजमी खिलाड़ी बना दिया। कतर की नेशनल टीम के लिए भी करीम ने बहुत अहम परफॉर्मेंसेस दी हैं। उन्होंने एएफसी एशियन कप 2019 जीतने वाली टीम में शानदार किरदार अदा किया और मिडफील्ड को मजबूती फराहम की। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 और वर्ल्ड कप 2026 में भी कतर की नुमाइंदगी की, जहां उनका तजुर्बा टीम के लिए कीमती साबित हुआ। करीम बुदियाफ को उनकी लीडरशिप, डिसिप्लिन और मेहनत की वजह से कतर फुटबॉल का एक मिसाली और मोहतरम नाम माना जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आज हम मौसम के बारे में जो एलर्जीज होती हैं, एक मालूमाती सिलसिले का आगाज कर रहे हैं। ये सीजनल एलर्जीज दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर करती हैं और बाज़ूकात रोज़मर्रा ज़िंदगी, हमारी तालीम, काम और नींद पर भी असरअंदाज होती हैं। सीजनल एलर्जीज उस वक्त पैदा होती हैं जब हमारे जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम बास बेज़रर ज़र्रात को नुकसानदेह समझकर उनके खिलाफ रद्द अमल ज़ाहिर करता है और इन ज़र्रात को एलर्जन कहा जाता है। सीजनल एलर्जी का सबसे आम सबब पोलन है। पोलन दरअसल पौधों, दरख्तों और घास के जो ज़र्रात होते हैं उनमें होते हैं, जो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। जब ये ज़र्रात हमारे नाक, हमारी आँखों या सांस की नाली में दाखिल होते हैं तो हसास अफराद में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। हर शख्स में ये एलर्जी पैदा नहीं कर सकते, बस वो ही अफराद ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बाहर के मौसम में दरख्तों के पोलन और गर्मियों में घास का जो पोलन है वो, और इसी तरह खजा में जड़ी बूटियों का पोलन ज़्यादा मकदार में फिजा में मौजूद होते हैं। इसलिए बाज़ अफराद को मखसूस मौसमों में बार बार एलर्जी की शिकायत होती है। इसके अलावा बारिश के बाद नमी ज़्यादा होने से फंगस के ज़रात भी फ़िज़ा में बढ़ जाते हैं जो एलर्जी का सबब बनते हैं। अब ये कि कौन से जो लोग हैं, कौन से ऐसे अफराद हैं जो ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं या रिस्क पर होते हैं, ऐसे अफराद जिनके ख़ानदान में एलर्जी या अस्थमा की शिकायत हो, इस तरह अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो, बच्चे और नौजवान, एक्जिमा के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो अफराद जो फ़िज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में रहते हैं। इसी तरह से लिस्टनर्स, फ़िज़ाई आलूदगी में एलर्जी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। उसमें गाड़ियों का धुआं है, सनती आलूदगी है, गर्दोगुबार सांस की नाली को बहुत ज़्यादा हसास बना देते हैं। एलर्जी से बचने के लिए ज़रूरी है कि पोलन की मकदार ज़्यादा होने वाले दिनों में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से गुरुज कीजिए। सुबह के अवकात में पोलन की सतह उमूमन ज़्यादा होती है। ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि सीजनल एलर्जी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उसका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो ये दमे और सांस के जो दूसरे मसाइल हैं उन्हें ज़्यादा कर सकती है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: आज दोस्तों इस सेगमेंट में मैं बात करूंगी यूथ और टेक्नोलॉजी की फॉर अ ग्रीनर टुमारो. आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल फोन्स का दौर है, एआई का है, स्मार्ट डिवाइसेस का है, डिजिटल टूल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि एनवायरमेंट को बचाने और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए भी यूज की जाती है. इस मिशन में यंग जनरेशन का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. देखिए आज का जो यूथ है या आज के जो यंग पीपल हैं टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतर समझते भी हैं. आपके हमारे बच्चे ही देख लीजिए कितना ज्यादा फ्लुएंट है, फ्रेंसी है उनकी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स को चलाने समझने, और हम कई बार स्ट्रगल ही करते रहते हैं. वो नए आइडियाज ला सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं. शायद इसीलिए यूथ को लीडर्स ऑफ टुमारो कहा जाता है. क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, वेस्ट जैसी चैलेंजेस पूरी दुनिया के लिए बड़े कंसर्न्स हैं. लेकिन टेक्नोलॉजी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेदर के पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकता है, एनर्जी कंजप्शन मॉनिटर कर सकता है और रिसोर्सेस को इफिशिएंटली मैनेज कर सकता है. वहीं यंग इनोवेटर्स जो है ना वो दुनिया भर में नए एप्लीकेशंस और डिजिटल सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसी ऐप डेवलप कर रहे हैं जो लोगों को रिसाइकलिंग के बारे में गाइड कर रही है. कुछ स्मार्ट सिस्टम्स एनर्जी वेस्ट को रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं. वहीं रिन्यूएबल एनर्जी, जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी भी टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा इफेक्टिव हो रही है. सोलर पैनल्स, इस पे तो हमने बात की थी, विंड टर्बाइन क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करती है. और देखिए यंग इंजीनियर्स हैं या फिर साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजीज को और बेहतर अपना रहे हैं, समझ रहे हैं. एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन भी टेक्नोलॉजी की वजह से अब देखा जाए तो कितनी आसान हो गई है. स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज और रिसर्चेस के जरिए सस्टेनेबिलिटी के बारे में सीख सकते हैं. नॉलेज जितनी ज्यादा होगी मुझे लगता है सॉल्यूशंस भी उतने बेहतर होंगे. ऐसे सोशल मीडिया को ब्लेम तो हमने हमेशा किया है लेकिन यहाँ नहीं ऐसा होगा. सोशल मीडिया

0: पॉजिटिव चेंज का एक इम्पोर्टेंट टूल बना है. जी हाँ, यंग पीपल जो है वो 96% सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर बेशुमार इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं. जैसे आप जानते ही हैं, स्कूल्स में तो बहुत ही कॉमन है ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, या फिर और कोई सस्टेनेबिलिटी के मैसेज है, वो अगर लोगों तक पहुँचाना है तो एक क्लिक के साथ आप इतने मिलियंस लोगों तक पहुँचा सकते हैं. वही स्मार्ट सिटीज, इन्हें हम कैसे भूल जाए. वही स्मार्ट सिटीज भी तो फ्यूचर का एक अहम हिस्सा है, जहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स हो, या फिर स्मार्ट लाइटिंग हो, या फिर एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग्स हो, या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज, इन सब को बनाने में मदद करते हैं. और इन प्रोजेक्ट में यूथ के पार्टिसिपेशन को कैसे इग्नोर किया जा सकता है भाई. देखिए, टेक्नोलॉजी का ना सही यूज करना भी उतना ही अहम है जितना उसे डेवलप किया जाए. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट आज एक बड़ा चैलेंज बन चुका है. पुराने मोबाइल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिसाइकल करना कितना जरूरी है. दोस्तों, इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है, इनोवेशन का मतलब है कि प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखना और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढना. कभी कभी एक सिंपल आइडिया भी बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो पैदा करता है. यूथ एंटरप्रेन्योरशिप भी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकती है. यंग एंटरप्रेन्योर्स को फ्रेंडली बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए जॉब्स भी क्रिएट करें. देखिए, हर यंग पर्सन साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर यंग पर्सन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर देख के संभाल सकता है. एनर्जी सेव करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना और ट्रीज लगाना, ये कितने छोटे कदम हैं जो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाएंगी, फ्यूचर आज के स्टूडेंट्स बनाएंगे, जो कल के इनोवेटर्स होंगे, जो कल के लीडर्स होंगे, जो कल के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट होंगे. अगर यूथ टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज करे तो दुनिया को क्लीनर, ग्रीनर और हेल्दियर बनाया जा सकता है. आखिर में कहा जा सकता है कि यूथ और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सबसे पावरफुल फोर्स है. जब क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मिल जाएं, तो हर चैलेंज का सलूशन मुमकिन है. इसीलिए तो कहते हैं कि ग्रीनर टुमारो का सफर आज के यंग माइंड से ही शुरू होता है. वैसे आपके नजदीक फूड वेस्ट कम करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, सोचिएगा और मुझे बताइएगा. फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी. One step to 2030.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: इस तरह के अस्करी भी हैं, ठीक है, दोनों तरह के यहाँ उनके पास से स्टाफ्स हैं। तो यहाँ तक कि उनकी इस डिपार्टमेंट में जो ख़ास स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेटर्स जो ट्रांसलेट करते हैं, यानी अगर कोई किसी ने कॉल की हो और वो किसी ख़ास ज़बान में बात करने वाला हो, तो उसके लिए ख़ुसूसी उस तर्जुमा ट्रांसलेटर भी वो मुहैया फराहम करते हैं, ताकि वो मुख्तलिफ लैंग्वेज में कंप्लेन वसूल कर सकें और इस तरह कम्युनिटी के तमाम अफराद तक ये सर्विस यानी उनकी दस्तियाब हो। तो इस तरह जो है ना, उन्होंने इस डिपार्टमेंट के दायरे कार को मुअस्सर बनाने के लिए ये तमाम कार्रवाई की गई है, यानी ये तमाम इकदाम किए गए हैं, ये तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। अब अगले महवर की तरफ हम मुंतकिल होंगे। सवाल ये है कि जब 999 पर कॉल करते हैं हम, या 999 पर, तो हमें किस अंदाज़ में यानी बात करनी चाहिए? कभी कभार ऐसा होता है कि लोग फ़ोन करते हैं लेकिन उनको सही से जो है ना, अपना जो जो भी बात है, जो ख़बर है, जो हंगामी सूरत हाल है, पहुंचाने के ये बात पहुंचाने का जो तरीक़ा है ना, उनके पास इसकी इसका इल्म नहीं होता। तो वो मालूमात पहुंचाने में काफ़ी वो देर कर देते हैं, या फिर यानी ऐसी किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि इमदादी टीमें ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारी मदद तक पहुंच सके? आइए यही सवाल अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से करते हैं। सैयद मुलाज़िम अव्वल अब्दुल्ला मोहम्मद अल-कसैरी, ضابط خدمة الطوارئ 999 في إدارة العمليات المركزية تابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. نجدد الترحيب بكم في برنامج الشرطة والعوام. وسؤالنا التالي هو بخصوص يعني رقم 999. الناس يعني كثيرا ما يتواصل، بس هو ما يعرف كيف يؤدي الغرض، كيف يبلغ الموضوع. فهناك أكيد يعني طرق صحيحة، طرق مؤثرة للتعامل أثناء المكالمة، فما أهم النصائح اللي تريدون أن توجهونها للجمهور؟
1: النصائح اللي نبي نوجهها للجمهور هو ضمان سرعة وصول الجهات المختصة، أن يكون البلاغ واضح، المحافظة أول شيء على الشخص أنه يحافظ على الهدوء وعدم التوتر أثناء المكالمة
0: عشان يبلغ الفكرة بشكل عشان أسرع
1: إيه بشكل أسرع وأوضح
0: أيوة أوضح، هذه النقطة مهمة.
1: وأيضا بعد أنه يحدد الموقع بشكل دقيق، أنه يكون يعرف العنوان الوطني، والعنوان الوطني من ثلاث عناصر يتكون: اسم المنطقة، واسم الشارع، واسم المنزل.
0: هاي العناوين الزرقاء اللي موجودة،
1: اي هذه العناوين الزرقاء
0: مع كل المبنى و...
1: اي نعم
0: صحيح. فهذه
1: هذه يساعد على سرعة الوصول الجهات المختصة للموقع.
0: جميل جميل.
1: تقديم معلومات واضحة مختصرة عن طبيعة البلاغ، وايضا الاستماع جيدا الى اسئلة حين يسأل الموظف، موظف 999، على بعض الأسئلة أن يجاوب عليها بدقة، تكون المعلومات تساعد في سرعة اتخاذ القرار
0: صحيح
1: أو الإجراءات المناسبة. وأيضا الثقة بأن فرقة الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابات مثل هذه البلاغات وتقديم المساعدة.
0: حلو حلو.
1: في هذه البلاغات.
0: جميل. واضحة، جزاكم الله خير. سامعين الكرام، جسكي همارة مهمان فرست لفتننت عبد الله محمد الكثيري، जिनका ताल्लुक सेंट्रल ऑपरेशन डायरेक्टोरेट या डिपार्टमेंट से है, और उन्होंने हमें इस सिलसिले में वजाहत पेश की कि जब हम 999999 पर कॉल करते हैं तो हमें दरअसल किस तरह बात करनी चाहिए, क्या इस मामले को कैसे सही से निभाना चाहिए। तो इस सिलसिले में उन्हें हमें बताया कि यानी जिस अंदाज़ से आप बात करेंगे वो इमदादी टीमों की जो रफ़्तार और मौसर कार्रवाई पर बराह रास्त असरअंदाज़ होता है। तो इस वजह से किसी भी इमरजेंसी कॉल के लिए ये सबसे बड़ी अहम बात होती है कि घबराने के बजाय अपने आसाब पर, नर्व्स पर काबू रखा जाए,

0: पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: सामने क्रम, जैसे कि हमारे मेहमान फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला मोहम्मद अल कथेरी, उनसे हमारा जैसे कि सवाल था, आपने सुना है कि हम अगर इस तरह के कोई ख़ास समाज से महरूम अफराद हों तो वो अगर रब्ता करना चाहें तो वो कैसे करें। तो आप सब जानते हैं कि वज़ारत दाखिला यहाँ की खिदमात जो है ना, ये तमाम कमेटी के अफराद को शामिल करती है। तो यहाँ इसी सोच के तहत वज़ारत दाखिला ने समाज से महरूम अफराद और कम सुनने वाले अफराद के लिए भी खुसूसी हंगामी सहूलत फराहम की है। तो यानी जो अफराद सुन नहीं सकते या गुफ्तगू करने से कासिर हैं, उनके लिए इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इमरजेंसी सर्विस 992 का ये इन्होंने इंतज़ाम किया है, मुतारिफ़ कराई है सर्विस। तो जो खुसूसी तौर पर डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग कम्युनिटी के लिए तैयार की गई है। तो इस सर्विस की एक सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इसमें रबते के मुतद ज़रा फ़राहम किए गए हैं। उन्होंने जैसे कहा, वीडियो कॉल, SMS, ईमेल, तो आप मुतल इदारों तक अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। और इस तरह की सर्विसेज उन्होंने रखी है, मुतारफ कराई है। तो यानी हदफ ये है, मकसद ये है, ताकि उन तक अगर ज़रूरत पड़ी तो ताकि वो अपनी जो मदद की ज़रूरत है वो उन्हें यकीनी बनाई जा सके। अब एक मज़ीद हम आखिरी सवाल करेंगे, बस ये आखिरी सवाल है, चूँकि हमें हमारे इसके बाद प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, हमारे अगले मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। तो हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा उनसे कि अगर वो हमें कुछ इस तरह की ख़ास कोई बात कहना चाहेंगे, कोई ऐसे कोई मैसेज है हमारे सामीन के लिए। सेहत मुलाज़िम अव्वल, यानी वसलना इला फ़क्रा इला यानी ख़िताम अल्लिका मअकुम, इंशाअल्लाह सनस्तमर फिल लिका मअ ज़ाबित आख़र मिन इदारा अख़रा ताबिअ लिवज़ारत दाख़िलिया। फ़ख़िताम यानी تبي بخصوص الخدمة اللي ذكرتها خدمة طوارئ الصم، أو يعني نعم خدمة طوارئ الصم، هل هناك شروط استخدام هذه الخدمة؟
5: نعم، اللي يتصل على 992 يكون المستخدم من فئة الصم أو ضعاف السمع، والخدمة المطلوبة واستخدام هذه الخدمة لأغراض المخصصة لها فقط.
4: جميل.
5: وأيضا توفر بيانات المستخدم ورقم عضويته في المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم. وهذه
4: جميل، يعني الشروط.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: देखो मुझे समझ भी नहीं आता मैं शो की शुरुआत कैसे करूं, ये बोलूं कि स्वागत है, वेलकम है आपका, मैं खैर मक्तम करता हूं, जो भी है आप ये फॉर्मल इंट्रो ले लीजिए मेरे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, एंड इस शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है Qatar 2026। देखो शो का मकसद बड़ा सिंपल है, इस शो में बताया जाता है कि आप कहां कहां जा सकते हैं, कौन कौन से इवेंट्स कतर में हो रहे हैं, होने वाले, हो चुके हैं वाले मैं इसलिए बताता हूं ताकि एक आपको रियलाइजेशन हो कि अरे ये निकल गया मुझसे, अच्छा खासा हूँ मुझसे कह रहा था कल जाने के लिए मैं गया नहीं। एक तो ये थोड़ा गिल्ट ट्रिप देने के लिए, दूसरी चीज जो इवेंट चल रहे हैं वहां पे आप जा सकते हैं एज ऑप्शंस, एंड देन जो आने वाले इवेंट है ताकि आप पहले ही चौकन्ने हो जाएं। प्रेजेंट सर वैसा वाला तैयार रहे आप तो इसीलिए टू टेक योर अटेंशन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फिर से ये बार बार बार बार बार मेंशन कर रहा हूँ, एक महीना बचा है हार्डली, और इस महीने के आखिर तक जितने भी ऑफर्स हैं जो स्टेकेशन के हैं वो सारे सारे खत्म हो जाएंगे, स्कूल वगैरह तैयार हो चुके होंगे, और फिर आप बोलेंगे कि काश मैं स्टेकेशन पे दोस्तों के साथ फैमिली के साथ चला जाता या चली जाती। तो अभी भी मौका है आपके पास, वीकेंड्स का फायदा उठाइए, इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ वेदर, अभी गर्मियां बस छटने वाली हैं, धीरे धीरे धीरे हौली हौली चली जाएंगी, ये कहने से भी गर्मी कम होती है पता है आपको। तो मेरी बात मानिए, इफ यू हैवन प्लान्ड योर स्टेकेशन ऑल ओवर कतर, अक्रॉस कतर इनफैक्ट आई शुड से, हर होटल में आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स मिल ही जाएंगे। एंड ऑन दैट नोट, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, तो प्लीज हमसे भी जुड़िएगा क्योंकि हो सकता है आप किसी इवेंट में चले गए हो जो हमसे मिस आउट हो गया हो, एंड देन यू कैन टेल मी कि हाँ भाई ये वाला इवेंट था वो तुमने कबीर साहब मेंशन नहीं किया, तो जस्ट लेट अस नो। सबसे पहले जो इवेंट है जिसके बारे में बात करूंगा, इसको होने में अभी टाइम है, बट आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव क्योंकि ये बहुत लोगों का फेवरेट इवेंट है, मुझे बहुत पसंद है भाई, आई जस्ट लव दिस इवेंट। अगर आप गाड़ी का शौक रखते हैं और आप विंटेज के शौकीन हैं, एक सपना बन जाता है ना विंटेज गाड़ी लूंगा भाई एक दिन बढ़िया सी 1950-60 की निकालूंगा, तो ये जो चीजें हैं कतर में बहुत खूबसूरती से नजर आती हैं जब लोग आगे आते हैं अपनी विंटेज कलेक्शन को सामने रख देते हैं और फिर लोग देखते हैं और चौकन्ने होते हैं, हैरान होते हैं और लगता है वाह यही है मेरा गोल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोल, इट्स जस्ट अ फीस्ट टू योर आइज। तो ये जो इवेंट है इट्स नॉट जस्ट एन एग्जीबिशन, ये है कतर क्लासिक कार्स कॉन्टेस्ट एंड एग्जीबिशन, दोनों चीजें हैं इसमें। तो 2026 का जो एडिशन है बड़ा खास होगा, इसमें भी जो ओनर्स हैं एक्सेप्शनल क्लासिक कार्स वाले वो सारे के सारे आपस में कम्पीट करेंगे, बहुत सारे एक्सक्लूसिव अवार्ड्स एंड रिकग्निशन भी हैं, और अपनी जो प्राइज्ड व्हीकल है जो उनकी दिल की बिल्कुल करीब गाड़ी है, विंटेज है, वो आगे रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द एस्टीम्ड जज्ड पैनल, जजिंग पैनल, और साथ में हम भी तो जज हैं, हम सिर्फ जज कर सकते हैं, इनाम तो नहीं देंगे, पर इनाम अपने आप में यही है कि आपने किसी की गाड़ी के साइड में खड़े होकर कह दिया भाई क्या गाड़ी है यार। तो इस बार भी ये क्लासिक कार एग्जीबिशन होने जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्टेस्ट, रियर क्लासिक गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी जो कि इस बार स्पॉटलाइट में रखी जाएंगी, एंड इन्हीं गाड़ियों को प्रेस्टिजियस टाइटल्स और प्राइजेस दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा 31 अगस्त को, तो अभी टाइम है 31 अगस्त को 2026 में ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो कर सकते हैं, अपना स्पॉट जो है सिक्योर कर सकते हैं इस एग्जीबिशन में। देयर इज अ लिंक टू इट जो आप जाके देख सकते हैं, अगर आप कतर क्लासिक कार्स कॉन्टेस्ट एंड एग्जीबिशन टाइप करेंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगी। ये मदीना संत्रालय में होने वाला है, पर्ल आइलैंड, और ये इवेंट होगा 17 नवंबर 2026 से 22 नवंबर 2026 तक। तो ये जो इवेंट है अभी आने में टाइम है, पर आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दिस इवेंट टू हैपन, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, बढ़िया वेदर एंड दिस ऑन द फ्लोर, तो इससे बढ़िया हो नहीं सकता। ये रात के 12 बजे तक है इवेंट, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग। पिछली बार जो हुआ था वी कवर्ड इट, इंशाल्लाह इस बार भी FM 107 कवर करने की पूरी कोशिश करेगा, वी विल बी कवरिंग इट, आई डोंट थिंक कोशिश करेंगे, वी विल बी कवरिंग दिस इवेंट बिकॉज बहुत खास इवेंट है, और एक तरीके से नवंबर का वो महीना होता है जब कतर में इवेंट्स का सिलसिला शुरू हो चुका होता है, तो बहुत सारे इवेंट्स लाइन अप है, बट दिस वन इज फॉर द कार एंथूजियास्ट लाइक मी एज वेल, एंड जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है इसमें क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस नाम और काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं, वो 31 अगस्त से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। मैं भी फंबल कर गया, क्या करें, विंटेज हूं ना मैं तो। ये आप देख सकते हैं इवेंट 17 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में। And moving on to another amazing event.
3: Qatar 2026.
2: जो अगला इवेंट है ये गर्मियों की एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है, सिटी सेंटर में मौजूद है, पर इनफैक्ट मैं कहूंगा मौजूद था, क्योंकि शायद जब मुझे आप सुन रहे हैं तो इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, मगर जो लेटेस्ट इसकी डेट है वो 1 अगस्त रही है। 1 अगस्त को ये इवेंट पूरी तरह से ओवर हो चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। एपाइज म्यूजिकल प्लेग्राउंड, लोकेशन सिटी सेंटर, एंड यहाँ पर कई सारे एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस और एंटरटेनमेंट देखने को मिला है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए था। और 26 जुलाई को इवेंट शुरू हुआ था, 1 अगस्त तक ऑफकोर्स इनसाइड द मॉल्स, ताकि आपको गर्मी की शिकायत ना हो। और शाम के 5 बजे से 9 बजे तक इवेंट हुआ है। बहुत जबरदस्त इवेंट्स होते हैं ये, जो खास कॉर्नर्स होते हैं मॉल्स के उन्हें जरूर चेकआउट किया करें, चाहे वो सिटी सेंटर हो, मॉल ऑफ कतर हो, DFC हो, दीज आर द प्राइम मॉल्स, विलाजियो इनफैक्ट एज वेल। बहुत जबरदस्त इवेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं एंड काफी आई कैचिंग होते हैं, सिर्फ करने भर के लिए नहीं होते, देर नॉट जस्ट के करना है आ गया इवेंट देख लो, नहीं, एक्चुअली में काफी वैल्यूएबल होते हैं। और अगर आपकी फैमिली के साथ आप जाएंगे सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय ऑल दीज इवेंट्स। और कतर का एक और बड़ा ही पसंदीदा किस्म का इवेंट है, कतर का क्या भाई, सबका बहुत पसंदीदा इवेंट है। सबसे पहले आई जस्ट वांट टू वार्न ऑल द पीपल, जो कतार बोलते हैं, कतार नहीं हैगा, कतार की ओहो, कतर लोग कुछ ज्यादा ही देसी लोगों को मैंने देखा है कतार बोलते हुए, वो एक्सेंट क्यों मार रहे हैं मुझे नहीं पता, जस्ट वांट टू करेक्ट देम, इट्स कतर। कभी किसी लोकल को कतार बोलते हुए सुना है? नहीं ना, तो फिर काहे को अंग्रेज बनने का है। सो कतर का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट इज गोइंग टू हैपन, 2027 का जो एडिशन है कतर नेशनल, सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल QIFF, ये होने जा रहा है अगले साल को, वो भी शुरुआत में ही। तो 13 जनवरी से 23 जनवरी तक लुसर का जो स्टेडियम है उसका प्रेसेंट वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रहेगा, और ये इवेंट तो आप छोड़ नहीं सकते, तो तैयार रहिए इन केस यू आर आइंग ऑन दिस, क्योंकि इसमें ना सिर्फ खाने के शायकीन बल्कि वो लोग जो अपने सेटअप्स लगाते हैं वो भी बहुत बहुत इसमें मसरूफ हो जाते हैं। इट्स जस्ट अ फन फीस्ट ऑफ एन इवेंट। सो ऑफिशियल QIFF यानी कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल का जो पेज है उन्होंने अनाउंस किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इट्स ओपन फॉर इंटरेस्टेड वेंडर्स, और रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट आप कर सकते हैं वहां पे जाके, लुसेल स्टेडियम प्रिसिंक्ट में ये होगा 13 जनवरी से 23 जनवरी तक। ये अपना 12 बजे से रात के 12 बजे तक इवेंट है, इट विल बी अवेलेबल। तो जितने वेंडर्स हैं जो चाहते हैं कि अपना वहां पे शोकेस करें, रेस्टोरेंट हो, आपका कुछ भी हो, एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्स्ट्रावेगेंजा, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। ये जो इवेंट है ये आपकी मार्केटिंग के लिए बेहतर है, ये वेंडर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें फायदा बहुत होता है, ना सिर्फ जो लोकल हैं, रेसिडेंट्स हैं, वो सिटीजन हैं वो पहुंचते हैं, बल्कि वो लोग भी जो इंटरनेशनली सिर्फ और सिर्फ खास करके कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल के लिए आते हैं, ऑल द ट्रेवलर्स अक्रॉस द ग्लोब जब कतर में मौजूद होते हैं इस सीजन में, स्पेशली जो जनवरी का सीजन है तो इसमें उनको मन करता है ऐसे फेस्टिवल्स में जाने का, तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, तो आप भी इसका फायदा उठाइए एंड QIFF के ऑफिशियल पेज पे जाके आप देखेंगे तो अभी से उन्होंने इंटरेस्टेड वेंडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। सो डोंट जस्ट शाय अवे, ये आपका टाइम है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। अब बाकी तो खाने पीने के लिए हम जाने ही वाले हैं, कोई टेंशन को नहीं भाई, तो खाने पीने के लिए जितने लोग पहुंचेंगे बढ़िया मौसम रहेगा, मैं तो भाई अभी से ठंड देख पा रहा हूँ, कहना पड़ता है भाई कंटेंट के लिए। I truly mean it. मतलब जनवरी का नाम लेते ही जो फील आती है ना, मेरा कोई बर्थडे नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, तब भी लगता है कतई खूबसूरत हो जाता है जब जनवरी का मौसम होता है ना। जस्ट कैन नॉट वेट फॉर कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल, अगेन इट्स गोइंग टू टेक प्लेस एट लुसेल स्टेडियम प्रिसिंक्ट फ्रॉम 13th of January to 23rd of January, तो गेट रेडी, मूविंग ऑन।
3: Qatar 2026.
2: इसके अलावा भाई बहुत बढ़िया कोर्ट रूम ड्रामा आपको देखने को मिल सकता है, वो आपके ऊपर मिल सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स जस्ट ऑल ऑन यू, आपको मौका मिले तो इसका हिस्सा जरूर बने। ये जो इवेंट है ये पूरी ऑडियंस के लिए काफी इंगेजिंग, बड़ा खास रहता है, और इस बार भी यू कैन एक्सपीरियंस एन एक्सिलरेटिंग कोर्ट रूम ड्रामा जहाँ पे ऑडियंस विल प्ले द रोल ऑफ द ज्यूरी। यहाँ पे ऑडियंस को मौका मिलेगा वो टेस्टिमनी सुने, इवेल्युएट करें एविडेंस, और अल्टीमेटली डिसाइड करें कि उनका वर्डिक्ट क्या है। अदालत नहीं, अभी तो अदालत शुरू होगी, तो गिल्टी है कि क्या सीन है, ये सब आप डिसाइड करेंगे, और आपके लिए मॉरल डिलेमा भी होगा डिलेमा में आपको फंसा दिया जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक सेल्फ ड्राइविंग कार, एक एक इंसान की जान चली जाती है, एक यूनिक चैलेंज कोर्टरूम के लिए, किसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, टेक्नोलॉजी को ठहराया जाए तो टेक्नोलॉजी को ट्रायल पे कैसे लाया जाए, ये सारी चीजें होंगी इसमें। जो पार्टिसिपेशन है बड़ा कमाल का होगा, पार्टिसिपेशन होगा एक लाइव थिएटर कोर्टरूम ड्रामा में, जहां पर आपको मौका मिलेगा कि फाइनल वर्डिक्ट का आप हिस्सा बन सके, और डिफिकल्ट चॉइसेस होंगी थ्रू आउट द परफॉर्मेंसेस। आपका जो वोट होगा विद ऑल द ऑडियंस मेंबर्स, वो शेप करेगा कहानी का नैरेटिव। आप एनालाइज करेंगे तमाम सबूतों बयानात को मद्देनजर रखते हुए, आप सब कुछ सुनेंगे, टेस्टिमनीज डिसाइफर करेंगे, जो एविडेंस मिले हैं सबूतों को अच्छे से परखेंगे, और फिर उसके बाद सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद केयरफुली यू विल डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और अगर आपको ड्रामा चाहिए, ज्यूरी एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये दोहा में आपको मिलेगा। तो 18 सितंबर शाम को 6 बजे और 23 अक्टूबर शाम के 6 बजे, बाय द वे 2.5 घंटे का ये कोर्टरूम ड्रामा है। लोकेशन इसकी रहेगी यू वेन्यू, बिल्डिंग 23, स्ट्रीट 875, जोन 54, कतर। और इसके अलावा जो 18 सितंबर है उस दिन भी है, 18 सितंबर 2026 और 23 अक्टूबर, तो मतलब हाँ सेम ही डे है, आई थॉट कि मैंने अलग डेट बता दी, डेट यही है, डोंट गेट कंफ्यूज। सो 18 सितंबर और 23 अक्टूबर को ही होगा, शाम के 6 बजे से 8:30 बजे तक। जैसे मैंने कहा कोर्टरूम ड्रामा आपने हमें बहुत यूनिक है, और इसको मैंने एक बार इसका वीडियो देखा था एक जगह पे, एंड आई वाज सो अमेज्ड टू सी इट, जहां पर थिएटर लाइव है, आप एक लाइव ऑडियंस हैं और आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। हार्डली ऐसा होता है कि आप किसी प्ले का या किसी इवेंट का ऐसा हिस्सा हो पाते हैं जहां पर जो चल रहा है, जो एंटरटेनमेंट है, आप उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। दिस इज योर चांस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कोर्टरूम ड्रामा, एंड आई थिंक यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। अगर आपने इससे पहले ये नहीं देखा कैसे होता है, इसके क्या रूल्स हैं, अब बड़ा सिंपल है, यू विल गेट अ चांस टू वोट, और आपके सामने सब कुछ बताया जाएगा बाकायदा नरेशन के तौर पे, और आपके वोट डिसाइड करेंगे कि कहानी किस तरफ जाएगी। सो बेसिकली कहानी जो नैरेटिव है वो उसके ऑप्शन 2-3 तो होंगे, कम से कम 3 तक तो होते ही हैं, तीनों में से किस तरफ कहानी जाएगी ये डिसाइड करेगी पब्लिक। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई, ये मत छोड़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं, एंड इफ यू हैवंट सीन इट, एक बार आप कोर्टरूम ड्रामा टाइप कीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस है इसके ऑनलाइन मौजूद है, एंड देन यू विल बी लाइक कि हाँ यहाँ तो जाना ही जाना है। बाकी मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला जब ये बिल्कुल करीब आ जाएगा इवेंट, जस्ट अ रिमाइंडर, क्योंकि मैं इसका हिस्सा होने वाला हूँ डेफिनेटली, बाकायदा दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अगला इवेंट बेहद खास जो बस खत्म होने वाला है, यह है दोहा शॉपिंग सीजन फेयर 2026, जो शोकेस कर रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स, एंड दोस प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज, जो डिस्प्ले पर है सेल के लिए है, और विजिटर्स जो आएंगे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वैरायटी ऑफ आइटम्स। इसमें परफ्यूम शामिल हैं, एक्सेसरीज हैं, होम डेकोर है, शूज हैं, कारपेट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अबायाज हैं, और बहुत सारे फैमिली एसेंशियल्स आप यहां से पिकअप कर सकते हैं। तो ये अभी एवरीडे के लिए रखा गया है, 10 से 10, मतलब सुबह के 10 से रात के 10, और जुमे के दिन दोपहर के 3 बजे से रात के 10 बजे तक। लोकेशन है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। 23 जुलाई से सिलसिला शुरू हुआ है और 5 अगस्त को पूरा हो जाएगा, तो कुछ दिन बचे नहीं है आपके पास, अभी फायदा उठा लीजिए अभी के अभी। अगर अभी सोच के जा रहे हैं भीड़ होगी अभी जो जाइए, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप ये मान के चले अब तो सारा सामान अच्छा अच्छा निकल जाता है, अभी भी बहुत अच्छा अच्छा सामान पड़ा हुआ है आपके इंतजार में। भाई बहुत चालाक होते हैं ये, वहां पे जो लोग होते हैं वो अच्छा अच्छा सामान लास्ट के लिए रोक देते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा बिल्कुल आखिरी के दिनों में और बोलेगा कुछ अच्छा माल बचा नहीं, तो फायदा उठाइए। और 5 अगस्त तक ये इवेंट है, सुबह के 10 से रात के 10, और जुमे के दिन है 3 बजे से दोपहर के शुरू होगा और ये होगा रात के 10 बजे तक। सो डोंट थिंक अबाउट इट, ये दूसरा मौका नहीं है यहाँ सोचने का, ये पहले ही मौके पे चौका मारने वाला इवेंट है भाई, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठा लीजिए आप, एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। ये दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में है, एंट्री बहुत इजी है, यहाँ पे आपको बाहर एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 2 मिनट का भी काम नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े चलो। अब जरा आपको लेके चलते हैं सूक वाकिफ में। तो अगर आप इस जगह से वाकिफ है तो यहाँ पर एक ईस्टर्न स्क्वायर एरिया है जहां पर एक बड़ा ही खास इवेंट है। जहां पर आप कतर की रिच हेरिटेज और डिस्कवर कर सकते हैं लोकल डेट्स को। खजूर मेरे दोस्त, खजूर जो डायरेक्टली लोकली जो ग्रोन खजूर है वो डायरेक्टली लोकल फार्मर्स के थ्रू आप तक पहुंचाए जाएंगे इस फेस्टिवल के जरिए। इतनी बड़ी डिमांड है टन के हिसाब से भाई, टनों के हिसाब से यहां पहुंचेंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट द क्वालिटी ऑफ नेशनल प्रोड्यूस। और कंट्री की जो एग्रीकल्चरल लेगेसी है वो हर साल एटलीस्ट 2x 3x बढ़ती जा रही है विच इज इम्प्रेसिव एंड इट इज ओपन टू ऑल। तो 10 अगस्त तक है, 25 को शुरू हो गया था इवेंट, 25 जुलाई को, एंड 10 अगस्त तक इवेंट रहेगा। तो शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक कोई टिकट की कोई जरूरत नहीं है, कोई टिकट नहीं लगेगा, इट्स ओपन टू ऑल, इट्स फ्री। यहाँ पे ना सिर्फ लोकल प्रोड्यूस्ड खजूर है बल्कि इसके अलावा आपको खजूर के बाकी आइटम्स भी नजर आएंगे। मेरा फेवरेट जो है वो खजूर शेक है भाई, क्या बढ़िया बनता है, क्या बढ़िया बनता है। और खजूर का मैंने यहाँ पे एक जैम देखा था जो बड़ा कमाल का है। और बातों बातों में एक चीज और बता देता हूँ जो गले के लिए अच्छी रहती है। यहाँ पर एक चीज है जो बड़ी देसी नुस्खा होता है, वो घरों में लोग ट्राई करते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ था पिछले डेट फेस्टिवल जब मैं गया एंड आई सॉ दैट। तो वो लोग क्या करते हैं, जो खजूर के बीज होते हैं ना उसको वो लोग निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, उसके बाद उसे फेंकते नहीं है। तो क्या करते हैं, उसे पहले धूप में सुखा देते हैं बढ़िया करके, और फिर उसका चूरा बना देते हैं, और चूरा करने के बाद उसे दूध में मिला के पीते हैं। भाई इतनी मुफीद चीज है, समझ रहे, खजूर का एक एक हिस्सा काम का है। सुभानअल्लाह, बहुत वैल्यू होल्ड रखता है खजूर। और ये जो फेस्टिवल है लोकल डेट फेस्टिवल, इट्स गोइंग टू टेक प्लेस, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। इट्स नॉट गोइंग टू टेक प्लेस, इट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ एज वी स्पीक। तो 25 जुलाई से शुरू हो गया है, अभी भी टाइम है 10 अगस्त तक का, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, ईस्टर्न स्क्वायर सुकवा के। ऊपर से कुछ नहीं लगेगा पैसा, इट्स फ्री, ओपन टू ऑल। अंदर जाके आप कुछ खरीदेंगे तो बात दूसरी, मगर एंट्री के लिए यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एट ऑल। ठीक है जी, बोलिए आगे बढ़े, चलो। अब अगले इवेंट की तरफ बढ़ूं तो आपको ले चलता हूं लुसेल इंटरनेशनल सर्किट। क्या है, क्या शानदार सर्किट है लुसेल इंटरनेशनल सर्किट, मैंने बहुत करीब से देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला देखने का, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। क्या इंटरनेशनल लेवल का बना है, बाहर एक बाहर से इटालियन आते हैं, लास्ट टाइम जब F1 थी तो वी वर जस्ट टॉकिंग टू दिस गाय, वो कह रहे थे भाई इतना तो हमारी तरफ नहीं है, ये इतनी साफ सफाई, इतना बढ़िया ट्रैक श्रैक बना के रखते हैं लोग। हम तो ऐसे प्राउड फील कर रहे थे, हम यही का पासपोर्ट है हमारे पास, बड़ी खुशी मिलती है, जस्ट मेक यू फील प्राउड, एंड दैट्स द स्पिरिट ऑफ कतर। सो लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में 23 जनवरी, मतलब बस अब तो साल खत्म ही हो गया, ठीक है, आधा उनका बोलने का हक है मुझे, 23 जनवरी 2027 ये पूरे दिन, इनफैक्ट रात के 12 बजे तक एक इवेंट होने जा रहा है जो एक ग्रैंड ऑटो शो जो लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पर पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा। एंड टिकट्स इसके अवेलेबल हैं, यू कैन परचेज देम ऑनलाइन, अभी मतलब हो जाएंगे अवेलेबल, इट्स नॉट अवेलेबल टू बाय राइट नाउ, लेकिन जल्दी हो जाएंगे। ओके, तो और कुछ पार्ट्स हैं इनके लिए अब कोई जरूरत नहीं है, सो वो पब्लिक एरियाज जो होंगे वो फ्री रहेंगे। सो ये ग्रैंड ऑटो शो जो है लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पे होगा, एक अलग किस्म का, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस। और बता दूं आपको मैं, ये वाला जो इवेंट है द ग्रैंड ऑटो शो, ये पहली मर्तबा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम कतर का जो लीडिंग कार इवेंट है, इट जस्ट मूव्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल इंडोर एग्जीबिशन, और ये सेट करेगा, दिखाएगा दैट इट इज बिल्ड फॉर स्पीड साउंड एंड स्पेक्टिकल। देख रहे हो कैसे एड वाली बेस आवाज में बोला है मैंने, स्पीड साउंड स्पेक्टिकल। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे ओपन एयर फेस्टिवल, जहां पर आपको एक्सेप्शनल कार दिखेंगे, आप बोलो अरे यो या गाड़ी गाड़ी तरह भाई चलाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, इसमें जो है आपको लाइव एक्शंस भी देखने को मिलेंगे, एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशंस होंगी कुछ गाड़ियों की, इमर्सिव ब्रांड एक्सपीरियंस मिलेगा, और अनफॉरगेटेबल ऑटोमोटिव मोमेंट्स। इसी के साथ जो गाड़ियां जो विंटेज हैं वो तो दिखेंगी, पर उनके साथ साथ सुपर कार्स, हाइपर कार्स, मोटर स्पोर्ट्स आइकॉन सब वहां पे मौजूद रहेंगे, और जो काफी रेयर कलेक्टर कार्स हैं वो भी वहां पे मिलेंगे आपको, और जो लेटेस्ट मॉडल्स आ चुके हैं या कंपनीज लॉन्च करने वाली हैं वो भी आपको इस इवेंट में मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। तो कतर का जो ये ग्रैंड ऑटो शो है, ये जब भी आता है तो कुछ ना कुछ नया लेके आता है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग देयर ऑडियंस एंड देयर रीच, एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू एवर हैड। सो ये बेस्ट ऑटोमोटिव कल्चर के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए, इफ यू आर अ कार एंथुजियास्ट और इफ यू जस्ट वॉन्ट टू हैंग आउट मैन, तो पहुंचेगा जरूर. इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाउ डू आई पुट इट इन वर्ड्स, वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक रेसिंग एनवायरमेंट. क्योंकि यहां पर आपको वो लोग भी मिलेंगे जो लेजेंड्स हैं इस फील्ड में, भाई लेजेंडरी लोग हैं. कुछ बड़े बड़े रेसर्स हैं, कुछ बहुत शानदार रहे जो कलेक्टर्स हैं और काफी सालों से इस चीज के लिए. एंड दे गॉट अ चांस, दे हैव दिस चांस टू शोकेस देयर टैलेंट एंड देयर कार्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट. ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, कहीं और चलते हैं. चलिए आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इवेंट हो चुका है, आप नहीं जा पाए. सैड, ये इवेंट हुआ ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में. 23 जुलाई को शुरू हुआ, 1 अगस्त को अपने इख्तिताम पे पहुंचा, शाम को 5:30 बजे से 9 बजे तक. इसमें भी कोई टिकट्स नहीं थे. अब जो लोग चले गए उन्होंने मौज काट लिए. और यहां पर था मॉल ऑफ कतर में, बीट द हीट एंड ट्रांसपोर्ट योर फैमिली इनटू द हार्ट ऑफ अ वाइब्रेंट मिस्टिकल रेन फॉरेस्ट. यहाँ पे था इनटू द जंगल, जो एक स्पेक्टेकुलर है. फैमिली फ्रेंडली लाइव एनवायरनमेंट सेट किया गया था, लोगों ने एक्सपीरियंस किया और इस स्टेज को एक नए तरीके से. और जब तक इवेंट रहा है पीपल वर मेस्मराइज्ड. क्या लश वर्ल्ड क्रिएट किया इन लोगों ने, और जिस तरीके से उन्होंने नेचर को और फैंटेसी को एक साथ मिलाया ना, मुझे लगा था मैं कोई गेमिंग की दुनिया अपनी नजरों के सामने देख रहा हूँ. और ओएसिस स्टेज का पूरा पूरा फायदा उठाया भाई. लार्जर देन लाइफ जंगल लाइफ कैरेक्टर्स दिखाए गए, डैजलिंग कलरफुल यूनिफॉर्म सीन, थिएट्रिकल पपिट्री वहां पर हुई, डायनेमिक डांस दिखाया गया. एंड नॉट जस्ट दैट, जो सर्कस से इंस्पायर्ड एक्ट्स होते हैं, नॉट एक्चुअली अ सर्कस बट एक्ट्स विच वर इंस्पायर्ड और आई वुड से हाइब्रिड, वो वहां पर इवेंट्स नजर आए. और ऑडियंस ऑफ ऑल एजेस वर प्रेजेंट देयर. सो उसके फोटोज आप मॉल ऑफ कतर के पेज पे देख सकते हैं. एंड जो इंटरेक्टिविटी होती है उसमें एक बड़ी जरूरी चीज होती है जो आपको बांधे रखती है, वो होती है स्टोरी टेलिंग. जो मैं आपको सुनाता हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ. तो स्टोरी टेलिंग भी है, साथ में इंटरेक्टिविटी भी है. और एक मकसद था इनका जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है, एंड दैट इज टू मेक योर समर्स अनफॉरगेटेबल. इनके हिसाब चलते फिरते पहुंच गए थे कभी मॉल ऑफ कतर एंड यू हैव सीन दिस, तो अपनी यादें जरूर शेयर कीजिएगा. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि FM107 कतर को टैग कर दिया करें जब भी आप ऐसे इवेंट्स को देखें. एंड जस्ट लेट अस नो दैट यू वर देयर. हाजिरी बड़ी जरूरी है इवेंट्स भाई. इंडिया जाके, पाकिस्तान जाके, बांग्लादेश, नेपाल जाके बताना होता ना, भाई वहां पे तो कतर में ऐसे इवेंट होते हैं भाई, क्या बताऊं. तो उसके लिए भी इन इवेंट्स का हिस्सा जरूर बना करें. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर अमेजिंग इवेंट, कतर 2026. अगला जो है भाई, ये है बहुत भारी भरकम इवेंट. ये है बहुत भारी, बहुत वेटेज वाला इवेंट है. मैं नाम बोलूंगा आप समझ जाएंगे इसका वेट इतना ज्यादा क्यों है. दिस इज दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन आई एम टॉकिंग अबाउट. ये पूरे रीजन का, ना सिर्फ कतर का, पूरे रीजन का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस और लग्जूरियस इवेंट है. यहाँ पर शोकेस की जाती है ज्वेलरी और वॉचेस कलेक्शंस को. एंड इंटरनेशनली रिनाउंड और लोकल ब्रांड्स इसमें हिस्सा लेते हैं, सारे के सारे अंडर वन रूफ. और इसी के साथ जो डिजाइनर्स होते हैं, अपकमिंग डिजाइनर्स, हाई एंड डिजाइनर्स, वर्ल्ड क्लास वॉच मेकर्स और ज्वेलरी एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं. सो टेल यू एंड गिव यू एन इनसाइट कि लग्जरी आखिर होती क्या है. ये ऐसी चिड़िया है जिसे उड़ाने के लिए सपने चाहिए और फिर सपनों से बनते हैं वो रोकड़ा पैसा. मगर मीनवाइल आप हैरान होना चाहते हैं कि लग्जरी कहते किसे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी डेफिनेशन की एक एक वर्ड को देखने का मौका मिलेगा. बिकॉज ये इवेंट भाई बहुत बढ़िया इवेंट होता है, बहुत बढ़िया. इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एवर, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट दिस टाइम अराउंड. सो दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन जो है वो वैसे भी, जैसे मैंने कहा, इट्स अ की इवेंट ऑन द ग्लोबल लग्जरी कैलेंडर. यहाँ पर ये लोग जो ब्लेंड ऑफ क्रिएटिविटी दिखाते हैं इनोवेशन के साथ, क्राफ्टमैनशिप होती है, क्योंकि लग्जरी को लोग समझते हैं अरे मशीनों से बनाई हुई चीज, पर जो भाई जो वॉच मेकर्स यहाँ पे बैठते हैं, हैव यू सीन दोज वॉचेस, वो जो हैंडीक्राफ्ट वॉचेस होती हैं और ऊपर से लग्जरी, कमाल की, वन ऑफ अ काइंड इवेंट है. और एग्जीबिशन एक तरीके का प्लेटफॉर्म भी है जो ब्रांड्स को मौका देता है कि अपने लेटेस्ट क्रिएशंस को पब्लिक तक पहुंचा सके. सो दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन ये होगा 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इसी साल. तो 28th of September till 3rd of October 2026. एंड इसको वीकडेज में आप विटनेस कर सकते हैं 12 बजे से 10 बजे तक. सो बेसिकली दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक. और फ्राइडेज की बात की जाए तो दोपहर के 3 बजे से 10 बजे तक ये इसकी टाइमिंग्स रहेंगी. तो आप उसके हिसाब से जो है मैनेज कर लीजिएगा. बट इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट. इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ एनी लग्जरियस इवेंट दैट हैपेंड इन कतर एवर, दिस इज योर चांस टू फील समथिंग डिफरेंट. तो वाइब है भाई, वाइब है भाई, वाइब है वाली चीज, ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. अगला जो इवेंट है, इसके लिए मैं आपको फेवरेट जगह ले चलता हूँ. ये मेरी फेवरेट जगह है पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में 2022 में मैं यहाँ पे रहा हूँ. ये मेरा दूसरा घर बन गया था, मुझे बेहद प्यार है. मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ इस जगह को लेकर, और ये जगह है कतारा. आई एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस. ठंड में जाओ, गर्मी में जाओ, भाई साहब वाइब से रहती है. बहुत ही बढ़िया जगह है. और इस बार कतारा इज इनवाइटिंग यू एंड मी टू जॉइन द हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स समर वर्कशॉप 2026. इसमें इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है, काफी इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है. इनफैक्ट आप खुद इन आर्ट फॉर्म्स को सीख सकते हैं, वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं वो कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल क्राफ्ट. ना सिर्फ क्राफ्ट सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि उसका इंसेप्शन कहाँ से हुआ, वो आज कैसा है. क्योंकि कुछ ऐसे क्राफ्ट्स होते हैं जो मॉडर्नाइजेशन के बाद अपने रूट को नहीं छोड़ते, बट दे जस्ट डिवेलप देमसेल्व्स थ्रू द डस्ट ऑफ टाइम, एंड दैट्स हाउ इट इज. कतर ने भी अपने आप को वैसे ही शेप अप किया है. कतर अपनी हेरिटेज को भी पकड़े हुए है और मॉडर्न जमाने के साथ भी, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट बैलेंस आउट देयर. और ये वर्कशॉप, ये इवेंट उसको बेशक दर्शाता है. सो कतर में जो कतारा है, दोज वन न्यू, अगर आप ये एक्सपीरियंस करना है, दिस विल बी समथिंग डिफरेंट टू लर्न अबाउट कतर एंड यहाँ की क्राफ्टमैनशिप. तो ये जो इवेंट होगा, ये 9 जुलाई से 4 अगस्त तक रखा गया है, तो अभी बस ख़त्म ही होने वाला है. अगर आप नहीं गए हैं तो प्लीज़ इसका पार्ट बने. सुबह के 10 बजे से रात के 12 बजे तक है ये. इनफैक्ट सॉरी मैंने टाइम गलत बोल दिया, मैं रात के 12 बजे भेज दूंगा, फिर आप लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे. सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक है, आफ्टरनून तक ख़त्म हो जाएगा. और इसकी लोकेशन है बिल्डिंग 46, और यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आपको एग्जीबिशन नज़र आ जाएगी. वहाँ पर उन्होंने बाकायदा लगा रखे हैं, जो डायरेक्शन है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. एंड जैसे मैंने कहा, 9 जुलाई से 4 अगस्त 10 से 12 दोपहर कतारा में ये इवेंट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स समर वर्कशॉप. पूरा नाम हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स समर वर्कशॉप 2026. इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ इट, बी अ पार्ट ऑफ दिस नाउ. पेपर देखो, पेपर की याद आ रही है, ये सब आपके लिए डिटेल लिख के लेके आता हूँ. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत कीजिए भाई, घूमने फिरने में सोचने का ना. सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, आप इनमें से किसी भी बताए इवेंट में जाएं और आपको याद आए कि हाँ शायद कबीर ने बताया था, सो 666-22-107 नंबर है, 666-22-107. बी अ पार्ट ऑफ आर सोशल मीडिया फैमिली एज वेल. आपके बिना सब कुछ सुना सुना लगे, तो वहां पे हमें टैग भी कर दिया करें आपके स्टोरीज पे या आपके पोस्ट पे. एंड डू लेट अस नो इफ यू हैव एंजॉयड एनी ऑफ द इवेंट्स, या आप किसी इवेंट में गए एंड हमसे छूट गया तो वो भी हमें बताइएगा जरूर. 666-22-107 इज द नंबर. एंड इसी के साथ हमें टैग करने के अलावा मैं फिर से आपको बता दूं कि आप स्टेकेशंस का हिस्सा बन सकते हैं कतर में, अक्रॉस कतर, ना सिर्फ खाने पीने के लिहाज से, मगर जो बूफे सिस्टम है इस बार अलग तरीके से ओपन हो जाता है. समर्स में ब्रेकफास्ट के लोग पहुंचते हैं एंड अलग अलग जगहों पर उन्हें अलग अलग किस्म की जो है पकवान खाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये ऑफर्स के साथ होते हैं. सो डोंट जस्ट शाय अवे कि यार मैं ऑफर देखूंगा क्या, आप कहीं भी खा लेते हैं, नहीं, ये एक्सपीरियंस है. यहाँ पे सिर्फ खाने वाला सिस्टम नहीं है कि बस मैं अब खाने के लिए जा रहा हूँ, नहीं, दिस इज एन एक्सपीरियंस विच यू शुड गिव टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. इकट्ठे होके जाओ, क्या टेंशन है. फैमिली नहीं है, आप बैचलर रह रहे हैं, कोई गल नहीं है, आप दोस्तों के साथ जाइए, ये आप कभी भी कर सकते हैं. देखो ठंड आ जाएगी ना, फिर हिम्मत नहीं पड़ने वाली. अभी गर्मी में क्या है, थोड़ा निकले, पूल वूल में कूदे, मस्त. मैं पिक्चर पेंट कर रहा हूँ आपके आगे, मस्त पूल वूल में कूदे, ठंडे ठंडे बने बाहर निकले, बढ़िया एकदम खींच के नींद ली, उसके बाद खाया पिया, मौज किया, तो ये करने का मौका तो अपने आप को देना पड़ेगा. This is something you should not miss out on. So be a part of the staycation culture which is present in Qatar. This is very, very integral part of the culture as well now. Now, it has become a part of the culture, I should say. So, ये इवेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये तो है ही. बाकी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इस दौरान बारिश वारिश हो चुकी है, बारिश वारिश के दौरान अगर बूंदाबांदी भी हुई है और आप किसी इवेंट का हिस्सा बने हैं, तो भैया हमें बता दिया करो. देखो हम जो हैं ये रिकॉर्डेड शो आपके लेकर आते हैं ताकि हम इकट्ठा एक साथ आपको सारे इवेंट्स बता दें. तो इसका हिस्सा जरूर बने. एंड इसी के साथ जो है एक और वाटर पार्क था, मुझे एक सेकंड ढूंढने दो. हाँ, ये मेरिल वाटर पार्क जो है ये भी खुला रहेगा, तो यहाँ पे भी आप टिकट जीत सकते हैं. इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इवेंट एंड काफी सारे बहुत सारे फोरम्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं बट दे आर लेटर ऑन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर या फिर स्टार्ट ऑफ 2027. सो उनके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा. जैसे मैंने पिछली बार बताया हैंस जिमर भी परफॉर्म करने वाले हैं रियली सून इन नवंबर होपफुली बिकॉज पिछली बार तो हम हिस्सा हो नहीं पाए थे. आई थिंक पिछली बार आए थे नहीं आए थे आई डोंट रियली रिमेंबर बट एक हवा आई थी उनकी कि हैंस जिमर आने वाले हैं. इफ ही इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो आप उसके लिए भी तैयार हैं. एंड द लास्ट इवेंट व्हिच आई एम गोना टॉक अबाउट इज मैक्स अमीनी जो लाइव परफॉर्म करने वाले हैं दोहा में. अभी इसकी डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं बट आपके सामने बार बार पोस्ट आता रहेगा दैट मैक्स अमीनी इज लाइव विल बी लाइव इन कतर. तो ना टिकट्स के बारे में बताया ना ही अभी डेट्स आई हैं बट दोहा इज ऑल सेट टू विटनेस द नाइट ऑफ लाफ्टर क्योंकि कॉमेडियन मैक्स अमीनी ने अपनी जगह बनाई है स्पेशली अमंग द गल्फ रीजन्स. सो जस्ट बी रेडी ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग का ये मिक्सचर भी सुनने के लिए. एंड ऑन दैट नोट काफी कुछ बता चुका हूँ काफी कुछ आप जानते रहेंगे काफी कुछ आप मुझे बताते रहिएगा. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर एंड दिस इज दोहा वाला कभी साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. Assalam.
0: Qatar 2026. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: आप सुन रहे हैं FM 107.
5: दिल से देसी.

लड़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

फेस्टिवल के चौथे एडिशन का इख्तिताम हो गया। एक माह तक जारी रहने वाले इस मेले में 1,48,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जो अब तक की सबसे बड़ी हाजिरी है। ये फेस्टिवल दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद किया गया, जहां 7 तफरीही जोन्स, आलमी ब्रांड्स, इंटरेक्टिव सरगर्मियां और स्टेज शोज़ पेश किए गए। इस फेस्टिवल में कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब इमारात से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कतर समर गेम्स कैंप में बच्चों के लिए मुख्तलिफ तालीमी और तख्लीकी वर्कशॉप्स भी मुनाकिद की गईं। इंतज़ामिया के मुताबिक ये फेस्टिवल कतर की सकाफती ख़ानदानी तफरीही सरगर्मियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। राबता आलम इस्लामी ने गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हुए शहरियों, अहम तंसीबात और सिविल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन हय्यत उलमाए मुस्लिमीन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने अपने बयान में कहा कि गज़ा और दीगर मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में जारी इसराइली इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं और ये तमाम इसराइली इक़दामात बैन अल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खुली ख़िलाफ़ वर्जी भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात ख़त्ते में अमन के क़याम की तमाम कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुत्तहिद अरब इमारात के नए वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील फ़हमी से टेलीफ़ोन के ज़रिए राबता कायम किया। इस टेलीफोनिक राबते में मशरिक़ वस्ती के ताज़ा तरीन हालात और ख़त्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त से मुतालिक बातचीत की गई। इस गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दद इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर का भी जायज़ा लिया। मज़ीद बरां ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार सलामती के क़याम के लिए जारी इलाकाई और आलमी कोशिशों को मज़ीद मौसर बनाने और बाहमी तआवुन में इजाफे के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक मौज़ूआत पर भी बातचीत की। इराक़ की हुकूमत ने कहा है कि वो अपनी सरजमीन को किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ ख़तरात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इराक़ी इंतज़ामिया ने कहा है कि किसी भी हमले या ख़तरे को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब नए हुरमुज को दोबारा खोलने के हवाले से एक मुआहदा जल्द ही तय पा सकता है। उधर ईरान की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के बारे में सल्तनत ओमान के साथ मुश्तरक ऐलामिया हतमी जायज़े आखिरी मरहले में हैं। ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि मस्कत के साथ होने वाली मुफाहमत में अब नए हुरमुज के ज़रिए जहाज़ों की आमद रफ्त के बहरी रास्तों के नक्शों पर इत्तेफाक किया गया है। पाकिस्तान की अफवाज ने ऐलान किया है कि मुल्क के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में जारी सिक्योरिटी कार्रवाइयों के दौरान 12 मुसल्लह अफराद हलाक कर दिए गए हैं। फौज ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुसल्लह अफराद के कब्ज़े से बड़ी मकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गज़ा में काबिज़ इसराइली फ़ौज के हमलों के नतीजे में 4 फ़िलिस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दद दीगर ज़ख्मी हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। गज़ा के सरकारी मीडिया दफ्तर के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइल की जानिब से 4,000 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जिनमें 1,200 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। जनूबी लुबनान में इसराइली फोर्सेस ने ज़िला सूर के मुख्तलिफ इलाक़ों पर फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है, जिसके नतीजे में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए।
دوسری جانب اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفل نے کہا ہے کہ فریم ورک معاہدے پر دستخط کے بعد سے

पहनना भी जायज है। वैसे इमामा अरब मुआशरे का मारूफ लिबास था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे इस्तेमाल फरमाया, इसलिए अगर कोई मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। अल हाशमी अल हुसैन एक कतरी फुटबॉलर हैं जो डिफेंसिव मिडफील्ड और सेंट्रल मिडफील्ड रोल्स में अपनी डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग स्टाइल के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी पैदाइश कतर में हुई और उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर असद अकेडमी सिस्टम के जरिए अपनी ट्रेनिंग हासिल की। वो उन प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और गेम रीडिंग की वजह से नेशनल सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्लब लेवल पर अल हाशमी अल हुसैन ने कतर स्टार्स लीग में मुख्तलिफ टीम्स के साथ खेलते हुए अपनी वैल्यू को प्रूव किया। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका स्टैमिना, प्रेसिंग एबिलिटी और मिडफील्ड ट्रांजिशंस को कंट्रोल करना है। वो डिफेंसिव ड्यूटीज के साथ साथ सिंपल और इफेक्टिव पासिंग से टीम को बैलेंस देते हैं। इस साल के वर्ल्ड कप में कतर की नेशनल टीम का हिस्सा बनकर उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचेस में इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस हासिल किया और इसी टूर्नामेंट से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। अल हाशमी अल हुसैन को एक इमर्जिंग मिडफील्डर माना जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वो अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाएंगे और कतर फुटबॉल के लिए एक रिलायबल एसेट साबित होंगे। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107
2: दिल से देसी।
3: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: FM 107 दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
5: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। अक्सर अफराद दिल की सेहत, वजन या शुगर पर तवज्जो देते हैं लेकिन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि एक सेहतमंद जिस्म की बुनियाद एक सेहतमंद जो निज़ामी इन्हज़ाम है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी ग़िज़ा को हज़्म करता है, ग़िज़ाई अज़्ज़ा जज्ब करता है और जिस्म से जो टॉक्सिक्स होते हैं उन्हें खारिज करता है। जब ये पूरा सिस्टम दुरुस्त तरीके से काम करता है तो फिर हम खुद को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं, एनर्जेटिक और सेहतमंद महसूस करते हैं। आपने गट हेल्थ या फिर आंतों की सेहत का तो नाम ज़रूर सुना होगा। हमारी आंतों में बेशुमार मुफीद जरासीम मौजूद होते हैं और ये जरासीम खुराक को हजम करने, विटामिंस बनाने, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने और नुकसानदेह जरासीम से हिफाजत में मदद देते हैं। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ सही काम नहीं कर रहा होता तो उसमें फिर महसूस हम करते हैं कि हमारा पेट जो है वो फूल चुका है, कब्ज़ है, दस्त हैं या गैस जो है वो महसूस होती है, सीने में जलन हो सकती है, पेट में दर्द या फिर बेआरामी महसूस करते हैं और मुसलसल थकन महसूस करते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखने के लिए हमें चंद बातों का खास ख्याल रखना है जैसे कि हम मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करें, متوازن غذا میں تمام چیزیں جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں، معدنیات ہیں، یہ تمام ایک اس پورشن میں ہونے چاہیے۔ پانی کی مقدار جو ہے اس پہ بھی خاص توجہ دینی ہے، اور اس میں 7 سے 8 گلاس جو ہے آپ ضرور لیں۔ روزانہ ایکسرسائز کریں، کیونکہ ایکٹیو لائف سٹائل ہوگا تو ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کام کر سکے گا۔ اپنی نیند جو ہے بہتر بھی بنانی ہے اور پوری بھی لینی ہے، یعنی 7 سے 8 گھنٹے نیند جو ہے وہ آپ ضرور پوری کریں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں تو وہ پھر ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹینشن کو کم کرنا ہے، یعنی ذہنی دباؤ کو کم سے کم رکھیں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، سوشل جو ہے وہ ایونٹس میں آپ حصہ لیں، اور اپنی خوراک پر خاص توجہ دیں۔ بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں اور ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے اور ہمارے جو آنتیں ہیں ان کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ذہنی دباؤ، انزائٹی، ڈپریشن اکثر میتے اور آنتوں کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ اگر بہتر ہے اور اچھی روزمرہ عادات سے ہی وہ شروع ہوتا ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی جو مثبت تبدیلیاں آپ کی مجموعی صحت پر بہت اچھا اور گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔

तो जन्नत बड़ी यानी हम सबको मिलने वाली है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें जन्नत का सवाल है, हमें अल्लाह से, अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। तो रहमत की बात, माफ़ी की बात, अरे बहुत मज़ेदार है दुआ, सुकून, रूह परवर, इस तरह उम्मीद की बात, मोहब्बत की बात, आसानी की बात, हाँ सब कुछ सही है। हाँ, नफ्स पर काबू, हराम छोड़ने, शहवत रोकने, अपने मफाद के ख़िलाफ़ चलने के हवाले से अगर बात आ जाए तो वहाँ पर आके हम क्या कहते हैं तो ये भाई नाकाबिल कबूल है। इसको हम यानी समझते ही नहीं है कि ये हमें सही से इन चीज़ों को भी हमें मद्दनज़र रखनी है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये चीज़ें यानी ये एहसास नहीं है, ये ज़हनियत है ही नहीं, बल्कि कॉस्फर इस्लाम। भाई इस्लाम तो इतना वो कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं कहता कि आप ये करो वो करो, अगर कहता भी है तो ये ज़रूरी नहीं है। ये वो ज़हनियत में हमने इसको बड़ा यानी आसान बना लिया इस मौजू को, कॉस्ट फ्री इस्लाम। ये हमारी ज़हनियत बन गई है, कॉस्ट फ्री इस्लाम। तो इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, बस दुरूद शरीफ के अमल के बाद दोबारा लौटते हैं।

0: करते नहीं करते उस पर, यानी वो एतमाद करता है कि आपको लाइसेंस मिलेगा या नहीं। तो इसी तरह यानी आपने कीमत चुकानी है ना, तो इसी तरह अगर आपने जन्नत की सर्टिफिकेट लेनी है, जन्नत हासिल करनी है, अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, ईमान के दावेदार बनकर इस्लाम पर अगर हम मरना चाहते हैं, ईमान के हालत में मरना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने के मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये ना समझें कि यानी कीमत चुकाना यानी अपने जान को कुर्बान कर देना हर जगह में। हाँ, जान कुर्बान देना भी एक कीमत है। ये हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में हमें इसका मॉडल मिलता है, मुख्तलिफ सहाबा किराम ने जान की कुर्बानी की। तो जान को इस्लाम की नज़र करना ये भी इसकी मिसाल है, काफ़ी लोग शहीद हुए। लेकिन हमारी सोच में, जहनीत में काफ़ी ऐसे जाविए हैं, काफ़ी ऐसे जो यानी पहलू हैं जिनमें दरअसल इस बात की ज़रूरत है कि भाई हम ये समझें कि हम अपने इस ईमान को, इस इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में कैसे नाफिज कर सकते हैं, हमारी सोच में हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं। तो ये बड़ी बात बन जाती है कि भाई आप ये ना समझें कि अगर आज आपको आसाइशें और ये फरावानी ये सब मिल गई है, अगर मुझे मेरी सूरत हाल यानी बहुत माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, मैं कंफर्ट लाइफ जी रहा हूँ, तो भाई मेरी तो कोई आजमाइश नहीं है। अगर आप मुसलमान, ईमान और मुसलमान होने का दावा करते हैं, ईमान लाने का, तो देखें आप बंदा तो मुसलमान तो ये सोचता है कि हाँ मेरे ये भी क्या है, मेरी आसाइशें, मेरी ये तमाम तर राहत की ज़िंदगी, ये भी मेरे लिए क्या है, आजमाइश है। जो फ़क्र में है वो भी सोच रहा होता है कि ये भी तंगी, ये मुसीबत, ये भी मेरे लिए क्या है, आजमाइश है। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो सामने के नाम यहाँ तकरीर मकसद नहीं, तकरीर मकसद नहीं, बल्कि मैं आप लोगों की बात भी सुनना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई हमारी ये जो कंफर्ट जोन में जीने का जो एक तरीका है। हाँ, अगर ये बात यानी दूसरे तमाम दुनिया के मकासद के लिए हम भाग दौड़ करना चाहते हैं, ये भागन भागी, हर कोई एक मकसद के पीछे दौड़ रहा है। कोई डिग्री वगैरह लेने के लिए काफ़ी मेहनत करता है ना, उससे सामने ये वाजे रहता है कि भाई अगर मुझे ये डिग्री मिल जाए तो आगे जाके क्या होगा, अच्छे अच्छे वजीफ़े और ये नौकरी मिलेंगी, ये होंगी, वो होंगे। लेकिन जब इस्लाम ईमान की बात आए तो वो तो भाई अपने माँ आबा व अजदाद के दीन पर हम हैं, कोई हमारे लिए इसकी कोई कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रही है गाड़ी वैसे चलने दीजिए, और यानी हम यानी हर हालत में हमारे लिए जो एक एक वाई और एक सोच, एक जहनीत, इसको जो हमें सही से इस्तवार करना है दीन के मकासद पर, ये चीज़, ये जहनीत नहीं रहती, इसके लिए हम कोशिश नहीं करते, तो इस तरह जो है ना आगे हम सिर्फ कहने वाले बन जाते हैं, दावेदार बाकी रहते हैं, लेकिन हकीकत में हम उस यानी दावे के काबिल जो है ना आमाल, इससे दूर रहते हैं। दावा तो सब कर सकते हैं, लेकिन असल पहचान उस वक्त होती है जब दावा की कीमत मांगी जाए। तो सामने कराम प्रोग्राम के इस मरहले में आप लोगों को यानी ये जो मौजू है कि ईमान के लिए आजमाइश का, ईमान और आजमाइश का अपना ताल्लुक एक साथ है, यानी अगर आप ईमान लाते हैं तो बंदा हर हाल में वो ये है कि वो समझता है कि मैं आजमाइश के दौर से गुज़र रहा हूँ और मुझे हर काम को सोच फिक्र के साथ करनी है, और ये इस तरह जो है ना सही से करके आगे बढ़ना है। यूँ नहीं कि बस जैसे भी चाहे मनचाही ज़िंदगी गुजार दी तो भाई डिग्री आपको कैसे मिलेगी। अगर मनचाही पढ़ाई लिखाई सही से ना हो तो आप ये जो मास्टर्स की डिग्री है, ये डॉक्टरेट की डिग्री, ये आप कैसे हासिल करेंगे, सही आपको नतायज कैसे मिलेंगे। तो ये बात ज़रूरी है, और ईमान और आजमाइश का ये ताल्लुक़ कुरान करीम का हमें आयत से मिलता है। अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनकबूत की इब्तदाई आयात हैं, अलिफ लाम मीम, अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि सिर्फ ये कह देने पर कि हम ईमान ले आए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं होगी। तो देखें एक सवाल का अंदाज़ है इधर, यानी कुरान पूछ रहा है क्या तुम वाकई समझते हो कि ईमान ये सिर्फ एक दावा है कि बस कह दो कि हम मुसलमान हैं और ये हैं वो हैं, हाँ जन्नत के हकदार बन जाओगे, یہ تصور خود عقل کے بھی خلاف ہے نا. عقل اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو یہ تصور بنتا نہیں ہے, بلکہ یعنی ضروری ہے کہ آپ کچھ آپ نے کوششیں جاری رکھنی ہیں, آپ نے محنت کر دی ہیں, اور یعنی فتنے کی جتنی وجوہات ہو سکتی ہیں, فتنے کے جتنے صورتیں ہو سکتی ہیں, ان سے آپ نے ان کو آپ نے پرکھ کر ایک ایک اسٹیپ کو صحیح سے آگے بڑھانا ہے. تو دنیا کو فتنہ کہا گیا ہے, اور فتنہ کہتے ہیں ایک ایسا امتحان جو اصل حقیقت کو ظاہر کر دے. اچھا دیکھیں, فتنہ یہ لفظ سونے کو آگ میں ڈالنے کے عمل سے بھی متعلق ہے, کہ جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خالص ہے یا ملاوٹ شدہ. اگر دھات نقلی ہو تو آگ جو ہے نا اس کی حقیقت کھول دیتی ہے, اگر سونا خالص ہو تو آگ اسے ضائع نہیں کرتی بلکہ اس کی چمک اور خالصی کو اور بھی زیادہ نمایاں کر دیتی ہے. تو زندگی کا آزمائشیں انسان کے باطن کو ویسے ہی سامنے لاتی ہے کہ بھائی یعنی حرام کے حوالے سے جتنے حرام جو شعبے ہیں, اگر آپ کے لیے وہ آسان رہے اور حلال آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو بھائی یہاں سب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. لوگوں کے حقوق کو مارنا آپ کے لیے بڑی یعنی ظاہر سی بات ہے, نہیں بہت آرام سی بات نظر آئے لیکن آسان لگے, لیکن اگر لوگوں کے حقوق کو واپس لوٹا دینا یہ آپ کے لیے مشکل ہو. امانت دار یعنی بڑا یعنی کوئی اگر امانت دار ہو تو اس کو برداشت کرنا آپ کے لیے ناقابل, اس کو برداشت کرنا کافی یعنی مشکل ہو. جو ایسے بڑا انجوائے کرتا ہے, بڑا وہ دنیا دار ہے, امانت اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو پھر اس کو ہم آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ذہنیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک لسنر صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہلو مرحبا, کیا حال چال ذوالقرن بھائی؟ ٹھیک ٹھاک.
1: جمعہ کی خیر و برکات,
0: اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا فیصلہ کرے, آمین یا رب العالمین. تو آج کیا ٹاپک, ضرور آپ نے سنا ہوگا اور
1: میں سن رہا تھا, کہہ رہے تھے نا کمفرٹ زون.
0: جی جی کمفرٹ زون کے حوالے سے
1: اور بھی مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں.
0: نہیں نہیں ضرور, بس یہی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ہماری ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ ہم بس کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں, اور اس طرح کاسٹ فری اسلام, یہ جو میں نے ایک اصطلاح استعمال کیا ہے, تو اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟
1: یعنی ہمیں سست کاہل بنایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی کوشش اور جد و جہد, یا کوئی کہتے ہیں نا جیسے حجم سعی, صحیح مطلب کوشش نہ کریں. اور اگر آپ اس کائنات کے ڈیزائن پہ غور کریں, ہر چیز حرکت میں ہے, زمین, چاند, ستارے, ہمارا جسم. یعنی ہم اپنے دل کو کمفرٹ زون میں لا سکتے ہیں. صبح 24 گھنٹے دھڑکتا ہے, اس کو ذرا بند کر دیں یار, سکون ملے اس کو.
0: کیا بات, صحیح صحیح, کبھی بھی نہیں.
1: پھیپھڑے بےچارے جو جہاں جراثیم بھی گھس جاتے ہیں, تھوڑا یہ بھی اپنا سکون کا سانس لیں یار, ان کو بھی تھوڑا سا آرام دیں. نہیں ہو سکتا,
0: کبھی بھی نہیں. جی جی.
1: اس کا اور اس کے علاوہ بڑی سیریس سرجری یا کوئی میڈیکل کنڈیشن سے بھی گزرے نا, تو ڈاکٹر کہتا ہے جتنی ہمت اور طاقت ہے موو یور سیلف. دیوار کو پکڑ کے اس کو چل کے, مقصد ہے کہ ہماری اللہ نے ہماری سرشت میں ہی ڈالا ہے کہ ہم نے ہمت اور کوشش کرنی ہے. اور جو کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں وہ پھر سمجھ لیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو خود ہی تباہ و برباد کرنے والی راہ پہ چل پڑتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جب امریکہ بھی دریافت کیا یا سب کانٹیننٹ یا ان لوگوں نے ان جگہوں پہ رہتے ہوئے یا ایون گلف سائڈ پہ کتنی گرمی تھی جب 150-200 سال پہلے یا 300 سال پہلے جو آئے جس ماحول میں, یہ اے سی کی لگژری تو ابھی ہے نا کمفرٹ زون, اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا.
0: صحیح صحیح بالکل.
1: نہ جہاز تھے اور ایون نہر سوئز بھی نہیں تھی, کتنا چکر لگا کے. تو اللہ تعالیٰ جو کمفرٹ زون سے نکلتا ہے وہی ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ سکتا ہے, ورنہ وہ نیچے گھومتے رہتے ہیں.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح. تو یہ اس طرح جو ہے نا, اگر یہ جو سوچ ہے, ہم آج کل سوچتے ہیں کہ بھائی یعنی اپنے آبا و اجداد یا پھر جیسے گاڑی چل رہی ہے ویسے چلنے دیجئے, اور وہ اپنی اسلام جو کہ جتنے شعبے ہیں اس پر خاص کوئی نظر دینے کی ضرورت نہیں ہے, یا پھر جیسے ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ باتوں بات میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ بھائی ہم نے تو ایسا نہیں سنا, ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا. تو یہ ذہنیت دراصل اسی کمفرٹ میں जोन में हम चलना चाहते हैं, हम उस लकीर पर ही चलना चाहते हैं जिस लकीर के देखने के हम आदि हो गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप का हर वक्त जो है ना अपने ज़िंदगी का जायज़ा लेना, ये काफ़ी अहम है। ये दरअसल आपकी बात से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। और ज़ुल्क़रन भाई बताइए, क्या हाल चाल, कैसा जा रहा है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: इसको मज़ेदार एक बात ये कि मैं इसको मज़ीद ऐड करूं कि बाज़ लोग इसे यानी गुलाबी इस्लाम भी कहते हैं। इस दौर में वो कौन लोगों की ज़हनियत इस तरह हो गई है कि वो कन्फर्म जन्नती वाला
1: कन्फर्म जन्नती वाला, तो अंबिया कराम अल्लाह ताला ने उनको समझें जन्नत की गारंटी दी है, और लोग भी हैं और जिनके पास अशरा मुबशरा हैं उन लोगों की आप एफर्ट देखें। वो सहाबा कराम कहते थे कि अगर आज ऐलान हो कि ये जहन्नुम में जाएंगे तो हम लोग खुद समझेंगे, और यही है। और अल्लाह ताला भी हमसे यही चाहता है कि हम हर वक्त उसके ताबे रहें, और इस चीज़ को गारंटीड सर्टिफिकेट कोई नहीं है। और आपने कम्फर्ट जोन की बात की, बड़ा अच्छी मिसाल आ गई। रमज़ान शरीफ हम रोज़े रखते हैं आउट ऑफ कंफर्ट, पूरा रोटेट करता है महीनों में, लेकिन उसका नेट रिजल्ट बेनिफिट क्या है? इस देखें, दीन ने कहा है रोज़े रखने हैं, अगर उसको किसी को तकलीफ होती है, आपने कह रहा कि वो लकीर देखने की, पहले हमें ये देखना चाहिए वो लकीर हमें दिखाता कौन है और उसके हमें बेनिफिट्स हैं। और वैसे ना आप कहते हैं आपको मोटापा हो रहा है, आपको डायबिटीज़ ख़ास तौर पर इतनी दुनिया में फैल रही है, और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, या ये आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी आप रोज़े ना रखें, जो नहीं रखते वो फास्टिंग करें, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने वो रोज़ा रखते थे, और अल्टीमेटली घूम फिर के जो अल्लाह के हिकामात हैं वो घूम फिर के साइंस वाले कहने लग गए हैं। हाँ, साइंस का इस्लाम का नाम लेते हुए या दीन का नाम लेते हुए ज़रा तकलीफ़ होती है, या उनको शऊर नहीं है, आगही नहीं, लेकिन अगर आप उसको कसौटी पे परखें तो वही बात है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक तरीका बयान किया है, हम उस पे चलें, खाने पीने सोने में बीमारियों से दूर रहें। अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम इतने बीमार हो जाएंगे हम जी नहीं सकते।
0: सही सही सही सही।
1: तो इस सिलसिले में अगर हम अल्लाह, ये सबसे बड़ी चीज़ एक मैंने सीखी है कि आप लोगों को ये जो चीज़ बताने वाला लिखने वाला, आप कोई तहरीर पढ़ते हैं ना, तो आप तहरीर ना पढ़ें, आप देखें लिखने वाला कौन है, उसका मोटिव क्या है, वो हमें क्या दिखा रहा है, वो खुद क्या है।
0: ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी।
1: ये बड़ी मिसालें हैं जी, लिखने वाले ने जानबूझ के हमारे अंदर ये ख्यालात डालने की कोशिश की है, जबकि वो खुद अमल नहीं करता है, उसकी कोशिश नहीं है, उसकी कोशिश है हमें भटकाने की।
0: सही सही। वैसे ज़ुल्क़रन भाई, यानी कॉस्ट फ्री इस्लाम या फिर गुलाबी इस्लाम या कॉन्फर्म जन्नती, ये जो बात, ये तो हम मनफी पहलू पर कह रहे हैं चूँकि हम तो इसके अकीदत नहीं रखते, लेकिन ये इन इस्तलाहात के इस्तेमाल के साथ साथ कौन सा ऐसा अमल आपको यानी जहन में आता है कि हाँ लोग इस सिलसिले में काफ़ी जो है ना ये कंफर्ट जोन में चलना चाहते हैं ज़्यादा, ऐसा कोई ख़ास अमल?
1: यानी कंफर्ट जोन में चलना चाहते हैं
0: इस दौर में हम देख रहे हैं कि लोग इस सिलसिले में यानी दीन के इस सिलसिले में काफ़ी कंफर्ट जोन में चलना चाहते हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे अगर कोई कतर में जी रहा है तो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसमें यानी उतना तगोदो करने की कोशिश नहीं करते, कोई ऐसी कोई बात जहन में आ रही है?
1: आप नॉर्मल आजकल के लाइफ को देखें ना, अगर बीमारियां हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मोटिव है स्ट्रेस, और जब स्ट्रेस है तो इसका मतलब है कि आप कंफर्ट लाइन जोन के बजाय जब अल्लाह के अहकामात की तरफ चलते हैं और उस कंफर्ट जोन से निकल कर, यानी मैं तो कहता हूँ वो कंफर्ट जोन ही है, यानी मिसाल के तौर पे कि आप नमाज के लिए जा रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, या किसी के साथ अच्छे अखलाक कर रहे हैं, तो यू मेंटली रिलीफ, आपको सुकून मिल रहा है।
0: हाँ, वो तो सही।
1: और अगर वो कहता है कि मस्जिद में जाना आउट ऑफ कंफर्ट जोन है या गर्मी है, तो ये जो आप वॉक करते हैं, आप जाते हैं, आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेंटली जब आप ये सोचते हैं कि मैंने एक अल्लाह की रजा के लिए जा रहा हूँ, आप खुद ब खुद बेहतर महसूस करने लग जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, और अक्सर औकात आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, और वुजू करते हैं, ब्लड प्रेशर अप है, ये इस तरह है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइम में ये ऑप्शन है। यकीन करें ख़ास तौर पे ये ऑफिस टाइम में जो दो तीन चार नमाजों का टाइम आता है, ये जैसे हम नमाज के लिए जाते हैं

0: और चलें आपके साथ बात करें तो टाइम इज नो लिमिट। अस्सलाम वालेकुम, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
1: खुश रहें जी, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैर। तो सामने कराम शाहजुल्कनैन भाई थे, काफ़ी अहम बातें हुई उनसे डिस्कस। ये डिस्कशन बहुत ही उम्दा रहता है माशाल्लाह से हमारे जुमे में। तो इसी तरह हम बाकी कॉलर्स के भी इंतज़ार में रहते हैं 4434377। ये है कि मौजूद हमारे दीनी हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है मेरी कि भाई आम फहम अंदाज में लोगों के साथ ऐसे एज ए डिस्कशन किस तरह हम बात को पेश कर सकते हैं, आप भी ताकि शरीक हों, छोटी सी छोटी बात भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए और ये यानी बात को समझने के लिए, मुद्दा को सही से समझने के लिए भारी दलाइल की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि ये कि आप अपने सोच का जो जाविया है आपकी सोच का, तो वो इसी में अगर थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए, अगर आप मेरी सोच के जाविये को, किसी सामने के सोच के जाविये को किस तरह बदल सकते हैं, तो वही सबसे दावत की सक्सेस हम कह सकते हैं। अल्लाह सुभान व तआला हमारे इन आमाल को कबूल फरमाए, और ये जो कोशिश है आजकल इसकी काफ़ी ज़रूरत है, चूँकि देखें लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, चारों तरफ मालूमात ही मालूमात, तकरीरें तकरीरें। अब कहते हैं कि भाई हमें तकरीर सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई हाजत नहीं। अब ये है कि आप जब किसी के साथ किसी डिस्कशन में आते हैं, डिबेट में आते हैं, तो डिबेट यानी उस माने में कि हकीकी एक दूसरे को शिकस्त देने की नीयत से नहीं, ठीक है, ये कि आप सही जो है हकीकत जो है ना उसको उसका सुराग लगाने के लिए, उसको ढूंढ कर निकालने के, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है, तो ये डिस्कशन, ये डिबेट और इस तरह की जो बातचीत होती है तो वो ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। हाँ सामिन करम, बात हमारी जारी रहेगी, गुफ्तगू बाकी प्रोग्राम का तकरीबन 15 मिनट बाकी रह गया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है हमारी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: FM 107
5: दिल से देसी। जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
6: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल।

0: 107. FM 107.
1: Dil se desi.
2: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. आज हम बात करेंगे नरम लहजा इख्तियार करने की अहमियत के बारे में। इंसान के अल्फाज और उसका लहजा उसकी शख्सियत का आईना होता है। नरम लहजा रिश्तों को मजबूत बनाता है जबकि सख्ती दूरियां पैदा करती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम हर हाल में नरमी और हिकमत के साथ बात करें। अक्सर एक ही बात अगर नरम अल्फाज में कही जाए तो उसका असर ज्यादा होता है। घर हो, काम की जगह हो या दोस्तों के दरमियान, अच्छा लहजा हर जगह जरूरी है। नरम लहजा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद हमारे लिए भी सुकून का सबब बनता है। आज का अमल ये है कि पूरे दिन अपनी बातों के लहजे पर खास तवज्जो दें और हर किसी से नरमी से बात करने की कोशिश करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107
1: दिल से देसी।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। हमें कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम करम का मामला करना है। वैसे उमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाई, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो सामने किराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए हर वक्त हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत यही हो सकती है कि उनके लिए हम रहमत व मग़फ़रत की दुआ करते रहें, सेहत व आफ़ियत की दुआ करें और मग़फ़रत के हवाले से वालिदैन के लिए काफ़ी सारे ऐसी दुआएँ आई हैं क़ुरान में, जहाँ मुख्तलिफ किस्सों में मुख्तलिफ तरीक़े से वालिदैन के लिए बिलखुसूस दुआ का ज़िक्र है। तो सामने किराम, इस दुआ का जो तरबियती पहलू है, इस पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ क़ुरान ने इंसान को उसकी तफूलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था, वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, तो यहाँ हर एक के लिए बचपन की याद दहानी है ताकि हम अपने बड़ों

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर का स्पेशल प्रोग्राम कससुल कुरान। आज का वाक्य बहुत खास है। ये किसी बादशाह, नबी या कौम की नहीं बल्कि एक आम औरत की है। एक औरत जो अपने हक के लिए उठी और अल्लाह ने उसकी फरियाद सातों आसमानों के ऊपर से सुन ली। मदीने की एक गली में एक औरत तेजी से चलती जा रही है, कदमों में अजलत, चेहरे पर खौफ और दिल में इस्तेराब।

क्यों ना हो, एक बीवी, एक माँ, एक घर के मुहाफिज आज अपने ही घर के बिखरने के खतरे से दो चार है। एक लम्हे के गुस्से में उसके शौहर के मुंह से निकले चंद सख्त अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो एक पुरअमन घर को तबाही के दहाने पर ले आए। वो बेबस बेकरार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़ती है, कहीं तो कोई हल मिले, कहीं तो इंसाफ की रोशनी झलके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हमेशा सबके लिए खुला रहता था, कोई दरबान नहीं, दरवाजे पर कोई पर्दा नहीं। वो दाखिल होते ही आंखों में आंसू, लबों पर फरियाद, या रसूल अल्लाह मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह हराम है, मैं न बीवी रही न मुतल्लका, मेरा घर टूटने वाला है, मेरी जिंदगी बिखरने वाली है, या रसूल अल्लाह मेरी फरियाद सुन लीजिए। यह औरत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, वाजीम खातून जिनके फरियाद आसमानों के पार तक जा पहुंची। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपने समय बसारत को किस कदर वसी बनाया है। खौला रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अपने शौहर की शिकायत बयान करने लगीं। मैं घर के कोने में बैठी थी, मुझे उनकी तमाम बात सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अल्लाह ने ऊपर सातों आसमानों से उनकी बात सुन ली और फिर वही नाजिल हुई। मुजादला के नाम पर वो सूरत थी, एक आसमानी कानून के साथ जो हमेशा के लिए औरत के हक को बहाल कर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर के बारे में तुमसे झगड़ रही है और अल्लाह से फरियाद कर रही है। अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा है, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। क्या अजीम लम्हा था, एक मजलूम औरत की आवाज़ जमीन से आसमान तक जा पहुंची और रब कायनात ने खुद जवाब दिया। तफसीर की किताबों में लिखा है कि खौला बिन तसालवा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनके शौहर औस इब्न सामित रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनके दरमियान भी वही मामूली ख़ानदानी इख्तिलाफ़ हुआ जो अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान हो जाया करता है। लेकिन फ़र्क ये था कि औस इब्न सामित रज़ी अल्लाह अन्हु मिजाजन बहुत तेज़ और जल्द गुस्से में आ जाने वाले इंसान थे। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने खौला रज़ी अल्लाह अन्हा से वो जुमला कह दिया जो ज़माना जाहिलियत में बहुत संगीन समझा जाता था। उन्होंने कहा, अंत अलैया कज़हरी उम्मी, यानी तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम है। ये वो रस्म थी जो इस्लाम से पहले अरब मुआशरे में राइज थी। इस्लाम ने इस जुल्म को हराम करार दिया, लेकिन बाज लोगों के दिलों में अभी भी जाहिली असरात बाकी थे। गुस्सा ठंडा हुआ तो औस रज़ी अल्लाह अन्हु को एहसास हुआ कि वो क्या कह बैठे हैं। उन्होंने अपने बीवी से रुजू चाहा, लेकिन खौला रज़ी अल्लाह अन्हा एक बाशूर बा ईमान खातून साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लूं, मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। औस रज़ी अल्लाह अन्हु को शर्म आई, उनसे ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहना मुमकिन न हुआ। लिहाजा खौला रज़ी अल्लाह अन्हा खुद चल पड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर अपनी इज्जत, अपने निकाह और अपने घर को बचाने के लिए। वो आईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा सुनाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अराकी इल्ला कद हुर्रिमति अलैहि, मुझे लगता है कि तुम अपने शौहर पर हराम हो गई हो। खौला रज़ी अल्लाह अन्हु ने आजिज़ी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर का मकसद न तलाक था न जुदाई। वो गुस्से में ये लफ्ज़ कह बैठे, लेकिन नीयत ऐसी न थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, मुझे यही लगता है कि तुम उस पर हराम हो गई हो। ये सुनकर खौला रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल पर चोट लगी, उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो दर्द दुआ से भरे दिल के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैं अपनी हालत, अपनी बेबसी, अपनी मोहताजी तुझी से बयान करती हूँ। खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी हैं, दिल टूटा हुआ, आंखों में आंसू, लेकिन जबान पर उम्मीद के कलिमात। वो न मायूस हैं न शाकी, बल्कि पुरअज़्म हैं कि रहमत इलाही से कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने शौहर औस से मोहब्बत करती हूँ, मैं उनसे जुदा नहीं होना चाहती,

मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी जिंदगी उन्हीं के साए में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फरमाया, मुझे यही लगता है कि तुम अपने शौहर पर हराम हो गई हो। खौला रज़ियल्लाहु अन्हा मायूस नहीं हुई। उन्होंने अपनी फरियाद में इंसानी दर्द, माँ के एहसासात और बीवी के जज्बात को शामिल किया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अकेली हूँ, मेरे लिए इस दुनिया में मेरे शौहर के सिवा कोई सहारा नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें बाप के हवाले कर दूँ तो वो ज़ाय हो जाएंगे और अगर अपने पास रखूँ तो भूख से मर जाएंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। खौला रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। अब कोई और सहारा न था, न कानून, न कबीला, न रिश्तेदार। इसी के साथ सामीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद बेदिल्लाही ताला इस किस्से की तकमीला बयान करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
0: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107 दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अक्सर अफराद दिल की सेहत, वजन या शुगर पर तवज्जो देते हैं, लेकिन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि एक सेहतमंद जिस्म की बुनियाद एक सेहतमंद जो निज़ामी इन्हज़ाम है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी ग़िज़ा को हज़म करता है, ग़िज़ाई अज़ा जज्ब करता है और जिस्म से जो टॉक्सिक्स होते हैं उन्हें ख़ारिज करता है। जब ये पूरा सिस्टम दुरुस्त तरीके से काम करता है तो फिर हम खुद को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं, एनर्जेटिक और सेहतमंद महसूस करते हैं। आपने गट हेल्थ या फिर आंतों की सेहत का तो नाम ज़रूर सुना होगा। हमारी आंतों में बेशुमार मुफीद जरासीम मौजूद होते हैं और ये जरासीम खुराक को हजम करने, विटामिन्स बनाने, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने और नुकसानदेह जरासीम से हिफाजत में मदद देते हैं। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ सही काम नहीं कर रहा होता तो उसमें फिर महसूस हम करते हैं कि हमारा पेट जो है वो फूल चुका है, कब्ज है, दस्त हैं या गैस जो है वो महसूस होती है, सीने में जलन हो सकती है, पेट में दर्द या फिर बेआरामी महसूस करते हैं और मुसलसल थकन महसूस करते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखने के लिए हमें चंद बातों का खास ख्याल रखना है, जैसे कि हम मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। मतवाजन ग़िज़ा में तमाम चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मादनियात हैं, ये तमाम एक उस पोर्शन

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नया जमाना है और नए तरह के स्कैम्स हर रोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्कैम के बारे में। जैसे पहले जो हुआ करता था, लोग कॉल के जरिए, ओटीपी के जरिए, फोन कॉल के जरिए या फिर मिस कॉल के साथ साथ एप्लीकेशन के जरिए, यानी कि इंसान आपके सामने नहीं होता था लेकिन दूसरा तरीका होता था, डिजिटल एरेस्ट जैसे तरीके होते थे लोगों को फ्रॉड में फंसाने के लिए या उनके साथ स्कैम करने के लिए, और उनका हजारों रुपए, हजारों रियाल उनका गायब हो जाया करता था। लेकिन अब फिजिकल स्कैम का जमाना आ गया, लोग आपके सामने आने लग गए, अब किसी बात का डर नहीं रहा है। और अब ऐसे ही एक स्कैम चल रहा है जिसका नाम है बायोमेट्रिक वेलफेयर एंड राशन स्कैम। रूरल एरियाज और विलेजेस में आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स और फ्री राशन के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन लाजमी हो गया है। स्कैमर्स फेक गवर्नमेंट एजेंट्स बनकर आते हैं और भोले भाले गांव वालों को, विलेजर्स को स्कीम का फायदा दिलाने का बहाना बनाते हैं। वो उनका फिंगरप्रिंट मशीन पर स्कैन करवाते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि आपको जितना भी अनाज है, जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो आसानी से आपके घर पे आ जाएगा, इसलिए आप स्कैन जो है अपना अंगूठा या अपनी उंगलियां स्कैन कर दें। लेकिन ये एक चाल होती है, असल में वो फिंगरप्रिंट उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, यानी कि भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए यूज हो जाता है। खैर, इसका सॉल्यूशन भी है दोस्तों। किसी भी अनजान या प्राइवेट पर्सन के कहने पर अपने बायोमेट्रिक कंफर्मेशन या थंब इंप्रेशन किसी को ना दें। हमेशा वेरीफाई करें कि आने वाला पर्सन, इंसान असली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, और सिर्फ ऑफिशियल सेंटर्स पर जाकर ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं। और इस तरह के स्कैम से बचने के लिए हर वक्त सतर्क और होशियार रहें। फिर मिलेंगे नए जमाने के एक और नए स्कैम से आपको बचाने के लिए। तब तक सुनते रहें FM 107 दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है जूनियर जनाब ऑन एफएम 107। साथियों अभी तो मैंने बता दिया कि मैं सफा हूं और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा शो जहां चमक रहे हैं हमारे साथ कुछ छोटे छोटे सितारे बिल्कुल सुपर हीरो स्टाइल में। यहां हम बात करते हैं उन बच्चों की जो अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपने जज्बे से दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भाई एज डज नॉट मैटर एट ऑल, बस आपको हिम्मत और पैशन चाहिए होता है और भाई मंजिलें फिर आपके कदम चूमती हैं। कोई बच्चा इस शो में आकर ड्राइंग एक्सपर्ट होता है, कोई म्यूजिशियन बहुत अच्छे अच्छे बैठे हुए होते हैं, तो कोई अपनी स्टडीज में माशाल्लाह से दे हैव ब्राइट फ्यूचर इन देयर स्टडीज, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। छोटी छोटी आंखों में बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं और भाई कुछ तो मार्शल आर्ट्स के भी टैलेंटेड लोग बैठे हैं हमारे पास। जैसे आज मेरे पास जो नाम है, नाम थोड़ा मैं इनका सुन के चौंकी जरूर थी क्योंकि मैंने पहली दफा ये नाम सुना था, लेकिन मुझे इनकी हॉबीज और इंटरेस्ट बड़े अच्छे लगे तो मैंने कहा क्यों ना आपकी भी इनसे मुलाकात करा दी जाए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ही इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग किड्स। तो तैयार हो जाइए साथियों, मिलाने वाली हूँ मैं आपको एक ऐसे यूं कह लें छोटे, ज्यादा छोटे नहीं लेकिन छोटे सितारे से जिनकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं, बिल्कुल हीरोज की तरह, या आप कह लें कि चैंपियन, आने वाले चैंपियन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई हमारे पास आज हैं यदु, इनका नाम है यदु और मैंने इनसे पूछा यदु ये तो बताएं आपके नाम का मतलब क्या है। यदु कहते हैं पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया, I do not know the exact thing, but I was so curious about it that I literally find it out for him. I found it और मैंने इनको बताया इनके नाम का मतलब क्या है। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। और यदु वेलकम टू आवर शो एंड आई होप आई एम टेकिंग योर नेम राइट।
3: Yes, ma'am.
2: अच्छा, how are you feeling today?
3: I'm fine.
2: Good?
3: Good.
2: Nervous तो नहीं feel कर रहे?
3: No, ma'am.
2: पक्का?
3: Yes, ma'am, पक्का.
2: पक्का, चलें भाई. अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा सा ना, अब मैंने तो थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है, but I would want you also to tell our listeners something about yourself, about your hobbies, about your age, about जैसे ना बायोडेटा एक सीवी में लिखते हैं हम रेज्यूमे में, बिल्कुल वैसा वाला भाई बता दें.
3: Okay. So my name is Yadu. I'm 17 years old. I'm studying in IDEAL. And my hobbies, I would say, I like playing sports, martial arts, like different types of sports. Like I love trying. I like learning new stuff in like different sports. So I can play all of them.
2: Good.
3: So it won't get boring too.
2: You like experimenting new stuff, right?
3: Yes.
2: Especially in sports.
3: Especially in sports.
2: Good. मतलब हमारे पास एक एथलीट बच्चा बैठा हुआ है। अच्छा, I was very impressed. Nowadays kids say that okay, we are interested. As usual, हमारे जो एक देसी बच्चों का एक कॉन्सेप्ट था, क्रिकेट तो आनी चाहिए। यदु एंड आई स्टैंड समवॉट सेम एट द इन द सेम बोर्ड कि जब यदु से मैंने क्रिकेट के बारे में पूछा ना, यदु डू यू हैव सम एक्सपीरियंस इन क्रिकेट और समथिंग और आर यू इंटरेस्टेड, यदु कहता है Yeah, I know there are around 11 to 12 players in it. मैंने कहा यदु wow, we know, we have the same exact information. बस pinpoint इतना ही पता है हमें किसके अंदर 12 players होते हैं। So यदु you were telling me about martial arts.
3: Yes.
2: I was impressed by that. Martial arts is something good. I would want, regardless of gender, girls and boys, I love this thing, this concept. That martial arts aana chahiye. Mm-hmm. Aana chahiye. Achha, ye bataye ki ye martial arts ka jo love hai, ye kab aapke dil mein aisa hua, aapne socha ki bhai, it's something to try.
3: So, I would say all the credit goes to my father. He like used to train karate when he was younger.
2: Ah, nice.
3: Then he stopped it at the age.
2: Mm-hmm.
3: Then like he didn't do it for like 20 years.
2: Ooh.
3: Then okay. When he got me, he started sending me to karate classes.
2: Oh, nice. Jo khwab main nahi pura kar paya, mera beta pura kar. Okay. So how young were you when you joined?
3: I was 8 years old, I guess.
2: Young age mein shuru kiya. Acha, so you find it way more interesting than other sports, or do you enjoy other sports as well? Nahi kahoge ki bhai nahi mujhe yahi sabse zyada pasand hai.
3: Then I would say it's football.
2: Football.
3: Yeah.
2: Bhai, this is a basic thing. If you're living in Qatar, you would love football. Acha, which is your favorite team?
3: Club or country? Like,
2: Dono bata do beta.
3: Okay. I would say Real Madrid.
2: Real Madrid. Okay.
3: Then okay. Portugal. I'm a big Ronaldo fan.
2: Ronaldo. CR7. Oh my God, we can be friends. When it comes to CR7, jo mujhe kehta hai na, ke bhai, I like CR7. Automatically, pata nahi kyun mujhe wo log achhe lagna shuru ho jaate. Regardless ke mujhe unke baare mein kuch pata ho na batao, bas mujhe ye pata hona chahiye ki CR7 ke fan hai. To main khud ba khud unki fan ho jaati hu. Acha, tell me, you told me that your father made you join the
3: classes.
2: The classes, right? So, mujhe ye bataein ki martial arts aap jab chote the, to kya aapko jab when you actually joined it, were you actually interested? Thoda thoda. Kuch bache hote na, kuch join karte hain and they are like, no, it's not my cup of tea. Nahi, ya nakhra hota hai ki nahi mujhe nahi jana.
3: I was a kid like that.
2: You were?
3: Yeah,
2: you were.
3: I was.
2: You, but then, how did you become interested in it then?
3: I would say, like, when I was small, I used to go only because my father wanted me to go.
2: Uh-huh.
3: Then, after the age of, like, you know, after the corona.
2: Yeah. COVID. Okay.
3: During the COVID, I got a burn in my leg.
2: Mm.
3: I was bed rest for, like, 2 months. I became chubby, fat. You know, I was so fat. Like so much fat that I don't even like look at those photos nowadays. Then when I went back to karate classes,
2: uh-huh.

0: बच्चे ये भी सोचते हैं ना कितना टाइम कहां से लेकर आऊं कि मैं अपनी स्टडीज को भी टाइम दूं, मैं अपना स्क्रीन टाइम भी पूरा करूं, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की क्लासेस के लिए भी जाऊं, मैं अपना फुटबॉल भी एंजॉय करूं. हाउ इज दिस पॉसिबल?
1: मैम इट्स लाइक I don't have a schedule. It all happens somehow.
0: Interesting. But when things become a part of our life, na, so it becomes our daily routine. Yeah. I think so. Daily routine ban jati hai, so you don't need a schedule for it.
1: Yes, exactly.
0: आपको अपने आपको plan करना पड़े. So you, pre-plan चल रहे हैं. ये के देखें ये अपनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं तो इतना healthy बच्चा हूँ कि I don't need any schedules beyond. मैं already बहुत aligned चलता हूँ. ये मियां मिंटू बन रहे हैं. अच्छा भाई, अच्छा ये बताएं कि do you have any friends who are inspired by your routine or by your hobbies and they admire you for it?
1: Ma'am, like that, I don't know, but
0: होता है ना, देखो there are kinds of friends. कुछ

0: AI engineer sounds nice.
1: AI engineer.
0: IT.
1: IT में interested. कर ये मार्शल आर्ट रहे हैं इंटरेस्टेड. अरे वाह, एक पाँव मार्शल आर्ट्स की तरफ, एक पाँव आईटी की तरफ. ये क्या चल रहा है. चलो बट इट्स गुड, इट्स गुड. देर आर मल्टी टास्किंग पीपल एज वेल, सो नाइस. अच्छा कभी ये सोचा है कि चलो एआई में कुछ आईटी में कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा लेकिन मार्शल आर्ट्स नहीं
0: छोड़ूंगा. Nice. So I can
1: balance it together. Yeah. Oh, nice, nice, nice, nice. Acha, tell me one thing. If I ask you, is there anything that as of now, you do aaj ki date na, iske

0: वो उतना क्रेडिट नहीं देते हैं अब्बा को जितना उन्हें देना चाहिए. बट यू आर वन ऑफ दोज हु डज, सो यू आर सेइंग इट आउट लाउड. हाँ भाई मेरे अब्बा हैं, भाई मेरे अब्बा की वजह से मैं खड़ा हूँ. वेरी गुड, नाइस. बिकॉज समटाइम्स ये भी होता है कि बॉयज आर अ बिट डिस्टेंट फ्रॉम देयर फादर. मुझे नजर आ रहा है कि यदु इज अ काइंड ऑफ बॉय हु वुड लाउडली से आउट कि नहीं भाई माय फादर इज माय फेवरेट वन एंड आई लव हिम मोर.
1: यस
0: मोर. ओके ओके. सो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी जो अचीवमेंट्स रही हैं उनके सबसे डिफिकल्ट वाली कौन सी थी? इट इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, मतलब उसके लिए करेज ही इकट्ठा करना कि ओके आई हैव टू डू दिस. That is also something कि आपके लिए सबसे difficult वाली कौन सी जिसके लिए आपको अपने लिए अपने आप को ना push करना पड़ता है.
1: It was the national tournament in Qatar last year. It was a time when like I was not at my peak form. But I should have been like so much better to even get into the selection.
0: Okay.
1: So I used to like usually I have two classes a week. For martial arts. But only for that tournament I used to go like every single day.
0: Ooh, okay.
1: Evening 2 hours for sure.
0: Okay.
1: Then like I not even Friday I used to sleep like
0: okay.
1: every day without gaps. Then it was like continuously for 1 month. And after that I got into the selections.
0: Okay.
1: Got into my category.
0: Okay.
1: And I got over like gold medal in my category.
0: Nice.
1: And that was a very long process.
0: Tough.
1: Yeah, tough process. Hard process.
0: Okay. Okay. That was okay. एक month का पूरा practice, एक दिन भी छुट्टी नहीं भाई. हम तो थक जाते हैं. हम कहते हैं नहीं भाई. Either I'm bored or I'm tired.
1: Yes.
0: Physical activities are tiring. अच्छा भाई, that is something you're passionate about it, and the main thing was consistency. Oh, constant enough.
1: And I give a big, you know, part of that to my father, only credit. Because he was there. Yeah, a big credit to my father.
0: अच्छा, emotional attachment.
1: Yeah.
0: आपकी जब the person who you want to be there with you, उन्होंने कुछ और नहीं किया, but he was emotionally present with you, right?
1: Yeah, he was there. Yes.
0: So hats off to your father. Hats off. ये भी एक बड़ी अच्छी बात होती है parents की कि they are emotionally available. अच्छा भाई, और मुझे एक और बात बताएं कि वो कौन सी चीज है भाई जो आपको मोटिवेटेड रखती है स्टडीज में भी. हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ इन स्टडीज?
1: आई वुड से नॉट बैड.
0: Average. ठीक है. Okay, good. Average भी चलता है. Because when you're keeping an eye on your hobbies, when you're doing something you're passionate about, तो average is okay, good. I don't mind. बच्चा जब तक fail नहीं होता ना तब तक सही. जब तक इसके chances हैं कि हाँ भाई he has a goal that he needs to do something in IT and he's getting those grades. के होता है ना एक परसेंटेज होता है कि भाई आईटी में जाने के तुम्हें इतना परसेंटेज चाहिए. एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग दैट परसेंटेज तो दैट इज आई वुड से दैट इज फाइन. इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: अच्छा ये बताएं कि हाँ मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया कि क्या चीज है जो मोटिवेटेड रखती है भाई.
1: मैम लाइक व्हेन यू आर ट्रेनिंग फॉर समथिंग, when you see the goal in your eyes, like what you could achieve, like the prizes, the, you know, the applauses, honor. You get the honor. Yeah. Yeah, when you see that in your mind, you feel more and more motivated to work for it, give your best so you could do your best.
0: Acha, in everybody's life, in mine, and I believe even in our forefathers ko piche dekh le, there comes a time in everybody's now, every now and then, in everybody's life there comes a time where aap kehte ho yaar give up, mujhse nahi ho payega, I cannot do this, and it does exist. No matter how passionate you are about something, no matter how much you love what you're doing, एक टाइम ऐसा आता है जब आप या बोर हो जाते हो या इट बिकम्स टू मच टफ फॉर यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव न्यू गोल्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव न्यू समथिंग एंड देन ऑल ऑफ द सडन योर माइंड क्रैशेस एंड यू से यार मुझसे नहीं हो रहा. I can. Has that ever happened to you? How, and if that has happened, how did you manage to get out of it?
1: That kind of situation, like not in a worst way, but.
0: मुझे साइकिलिंग चलानी मैं फुटबॉल खेलते थक गया मुझे नहीं खेलनी और फुटबॉल तो हैज इट हैपेंड टू यू बिफोर.
1: यस मैम लाइक इवन if martial arts is my favorite thing or I have won something but you would get boring doing that. Not boring, I would say it's like a fatigue you get.
0: Physical activities are like that. Yeah. Yes, hum do din gym jaate hain to hamari halat khari ho jati hai. Martial arts aur zyada upar hai.
1: So mostly what I would do is like go out with friends. You get your mind fresh.
0: This is what the answer I was looking for. Good. That's escape. Wo hum kehte hain chor darwaza hota hai escape pe. To kya kehte hain to distract our mind.
1: Yes.
0: To distract our tensions. To distress our distract our stress. Okay. Good. Ye bhi ek bahut achhi baat hai. So you have a thing ke aap jab stressed out feel karte hain you just hang out with your friends.
1: Okay.
0: Acha. कोई ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम लेना चाहेंगे और उनको बोलना चाहेंगे कि भाई आई एम हैप्पी टू हैव यू और लोग कहते हैं ना अपने दोस्तों को स्पीचेस देते हैं.
1: मैम आई वुडंट वांट टू टेक इन नेम्स कोई रह गया सो मेनी आर देयर इफ आई मिस आउट समवन इट्स गोना बी फाउंड
0: इट्स गोइंग टू बी वेरी टॉर्चर इट्स गोइंग टू बी अ बिग टॉर्चर कि भाई दोस्तों ने फिर टांगे पकड़ कर खींची अच्छा तुमने मेरा नाम नहीं मतलब तुम मुझे दोस्त नहीं समझते. अच्छा ये भी हो जाता है. चलें अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि what is that main thing which keeps you confident?
1: Confident.
0: एक होता है ना एक चीज होती है जब हम किसी चीज के बारे में there are days when we feel low but then you back yourself up and you say नहीं नहीं यदु you have to कुछ ऐसा याद आता है जिसकी वजह से यू नो दिस इज सेइंग कि ऑलवेज रिमेंबर इफ यू फील लो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाई डिड यू स्टार्ट इट. सो आपके लिए ऐसा कोई टाइम आता है या आप किसको याद करते हो कि भाई यार ये चीज स्टार्ट की थी नहीं हो रही लेकिन करूंगा इसके लिए करूंगा या उसके अंदर भी अब्बा का नाम आता है नहीं फॉर माई डैड आई विल डू इट फॉर माई डैड समथिंग.
1: I would say I would do it for myself.
0: Nice, I like this. The person who pays attention to themselves does achieve. They achieve success. ये तो है बात. जो अपने ऊपर ध्यान देता है ना कि अच्छा भाई मैं भी मेरी भी एक personality. I like it. Nice. अच्छा मुझे बताएं कि आप अपने पास से आज जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, उनको कोई advice देना चाहेंगे? Related to anything, it could be related to their hobbies, related to their behavior, related to their schedules, anything which you would want to highlight and say कि हाँ भाई ये एक issue चल रहा है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि I would like to advise them कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो. So life would turn out to be a bit better and you might कहते ना आप और ज़्यादा potential आपका enhance हो सकता है.
1: I would actually say that like nowadays most of them are as you said like most of them are interested in indoor games
0: occupied on screens
1: all on that.
0: Yes,
1: I would say at least try to add 30 minutes of physical exercise or something in your schedule so you you stay fit healthy. Even for elders after their whole working day, working hours, you might be tense, pressured. Like a 30 minutes walk could, you know,
0: make you relax.
1: So I would say that adding 30 minutes, at least 30 minutes of exercise every day would like really keep you fit, enhance your health, keeping you calm.
0: That's a very good advice ki at least 30 minutes ya main kehti hu 15 minutes bhi bhai apni physical activity ke liye nikale. अगर आप जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट हैव अ वॉक अराउंड. अच्छा ये भी हो सकता है कि कभी कभी ना हमारे पेरेंट्स भी लेजी हो जाते हैं तो दे आर एट अ एज उनको पकड़ो कहो नहीं 15 मिनट्स के लिए वॉक कर आएंगे कुछ नहीं तो आई नीड टू वॉक सो आई कैन नॉट वॉक अलोन आई फील बोर्ड यू वॉक विद मी तो उनकी भी वॉक उनकी भी हेल्थ सही रही और आप भी थोड़ा दुनिया का चक्कर लगा कर आ गए कि अच्छा भाई स्काई लुक्स ब्लू और डार्क ब्लू और आई डोंट नो समथिंग. तो भाई हमारे शो का जो है अब टाइम ख़त्म होने लगा है और हमने बहुत मज़े की बातें की हमारे आई थिंक फ्यूचर मार्शल आर्ट उस्ताद से. इज इट आईटी में समथिंग इंशाल्लाह विद इन फ्यू इयर्स आई विल हियर नेम यदु एंड आई विल से ओ यदु ये नाम सुना हुआ लग रहा है एंड देन आई विल रिमेंबर योर नेम बिकॉज आई टोल्ड यू नाउ यू नो व्हाट डज इट मीन.
1: यस मैम.
0: या A warrior, strengthful person, and it is also inspired by a great leader. There was a leader also with that name. So I hope in your life you achieve. मैं क्या कहूँ कि more than you have thought about positive things. Inshallah, may you inspire others as well. And may you inspire others for physical activity as well. क्योंकि आजकल हमारे इस दौर में बहुत कम चल रहा है वो मामला लोग सिर्फ स्क्रीन्स तक महदूद रह गए हैं. चलिए साथियों मैंने आज आपकी मुलाकात कराई यदु से जो कि जिनका मानना है कि मेहरबानी करके अपने स्क्रीन टाइम्स छोड़ दें. If you're not interested in martial arts like him, it's okay. But he is imposing के भाई please मेहरबानी करके 15 मिनट तो अपने लिए निकालो किसी फिजिकल एक्टिविटी के छोड़ दो ना ये टीवी कहीं जा रहा है ना ये मोबाइल कहीं जा रहा है कि नहीं यदु.
1: yes, ma'am.
0: हाँ कहीं कोई कुछ कहीं नहीं जा रहा आपने जाना है फिजिकल एक्टिविटी के कहीं पार्क घूम लिया कहीं वॉक कर ली कहीं कुछ साइकिलिंग कर ली. सो भाई मैं भी इसी बात के बारे में बोलती हूँ कि जो यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप इफ यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट दैट्स हाउ यू कैन कीप अदर्स हैप्पी एज वेल. जो अपने आप को खुश रखता है वो दूसरों को भी खुश रखता है जो अपना ख्याल रखता है वो दूसरों का भी ख्याल रखता है. दूसरों का ख्याल रखने के लिए ना अपना ख्याल रखना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नहीं. चलिए भाई मुझे दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नए अचीवर के साथ किसी और नए छोटे से सितारे के साथ जिसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं और इंशाल्लाह यदु से मुलाकात होगी किसी आईटी डिपार्टमेंट में और मे बी ही वुड बी हैविंग हिज ओन मार्शल आर्ट्स क्लब लाइक ही सेड ही वांट्स टू इंशाल्लाह. अपना ढेर सारा ख्याल रखें और याद रखें बड़ों की इज्जत करें छोटों का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता. आई एम साइनिंग आउट. सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। भाई देखिए, हम AI का इस्तेमाल सवाल जवाब करने के लिए करते हैं, रैंडम से सवाल जवाब। फोटो एडिट करना बहुत हमें अच्छा लगता है, वो भी ऐसे करवा लेते हैं। इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम AI से कोई सवाल पूछते हैं या कोई ऑनलाइन सर्विस यूज करते हैं तो इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता होगा? देखिए, अक्सर हम एनर्जी कंजम्पशन के बारे में सुनते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या AI के पीछे पानी इस्तेमाल भी होता है? तो भाई, आज के इको स्विच में हम बात करते हैं AI और पानी के बारे में, यानी कि क्या वाकई पानी वेस्ट करता है AI। साथ ही प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। देखिए, AI खुद पानी नहीं पीता, लेकिन AI को चलाने के लिए जो बड़े बड़े सिस्टम्स यूज होते हैं ना, उन्हें हम डाटा सेंटर्स कहते हैं। अच्छा, ये डाटा सेंटर्स बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स पे मुश्तमिल होते हैं जो दिन रात इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा, जब इतने सारे कंप्यूटर्स कंटिन्यूसली काम करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इन मशीन्स को ठंडा रखने के लिए जारी बात है कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। कुछ कूलिंग सिस्टम्स में पानी का इस्तेमाल होता है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। यानी जब हम AI यूज करते हैं तो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट एनर्जी और रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर AI यूज करना पानी का ज्यान है। नो, असल बात ये है कि टेक्नोलॉजी को इस तरह डेवलप और ऑपरेट किया जा रहा है। अच्छा, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन बताती हूँ। AI और टेक्नोलॉजी को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है ये बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला इको स्विच ये है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करें। AI को अननेसेसरी यूज करने के बजाय जरूरत के मुताबिक यूज करें ना। हर छोटी चीज के लिए एक्स्ट्रा डिजिटल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बजाय सोच समझ कर टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं भाई। हाँ, दूसरी चीज ये कि

0: सस्टेनेबल डाटा सेंटर्स। देखो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कंपनीज ऐसे तरीके एक्सप्लोर कर रही हैं जहां डाटा सेंटर्स कम एनर्जी का इस्तेमाल करें, बेहतर कूलिंग सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस में मदद कर सकती हैं। एक और चीज ये भाई डिजिटल अवेयरनेस। देखिए भाई जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हर ऑनलाइन एक्टिविटी के पीछे एक फिजिकल सिस्टम काम कर रहा होता है। इंटरनेट और एआई सिर्फ हवा में नहीं चलते, इनके पीछे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेज का एक पूरा नेटवर्क होता है। अच्छा एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आप जब अपने मोबाइल पर एआई से कोई इमेज बनवा रहे होते हैं ना तो मसला ये है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सी इंफॉर्मेशन जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इसके पीछे बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं। वो कंप्यूटर डाटा सेंटर में ऑपरेट करते हैं जहां उन्हें ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी कंपनीज अब ऐसे सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं जहां रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ जाए, कूलिंग सिस्टम्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, पानी के इस्तेमाल को कम किया जाए। यानी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। तो साथियों इको स्विच चैलेंज आज का ये है कि आज जब भी आप कोई डिजिटल सर्विस यूज करें तो एक पल के लिए प्लीज सोचिएगा जरूर, क्या मैं टेक्नोलॉजी को स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज कर रहा हूँ। और हाँ हमें बताना ना भूलिएगा, चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जो कि है @FM107 Qatar। और ये जरूर बताइएगा कि आप एआई का सबसे ज्यादा किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए या किसी और काम के लिए। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए टेक्नोलॉजी का फ्यूचर तभी बेहतर होगा जब इनोवेशन के साथ साथ एनवायरमेंट का भी ख्याल रखा जाए। भाई छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए बड़ा फर्क पैदा करें और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे नरम लहजा इख्तियार करने की अहमियत के बारे में। इंसान के अल्फाज और उसका लहजा उसकी शख्सियत का आईना होता है। नरम लहजा रिश्तों को मजबूत बनाता है जबकि सख्ती दूरियां पैदा करती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम हर हाल में नरमी और हिकमत के साथ बात करें। अक्सर एक ही बात अगर नरम अल्फाज में कही जाए तो उसका असर ज्यादा होता है। घर हो, काम की जगह हो या दोस्तों के दरमियान, अच्छा लहजा हर जगह जरूरी है। नरम लहजा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद हमारे लिए भी सुकून का सबब बनता है। आज का अमल ये है कि पूरे दिन अपनी बातों के लहजे पर खास तवज्जो दें और हर किसी से नरमी से बात करने की कोशिश करें। आज का मैसेज, आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी। One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया।
5: Step to 2030.
4: दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट SDG कौन सा है। देखिए, आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनका मकसद है कि बेहतर, सेफ और सस्टेनेबल दुनिया बनाई जाए। इनमें पावर्टी कम करना, क्लाइमेट चेंज को जो है वो उसका मुकाबला करना, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। मैं कहूंगी कि हर SDG अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, तो मेरी चॉइस, फर्स्ट चॉइस होगी क्वालिटी एजुकेशन, SDG 4। ये गोल कहीं ना कहीं ये कहता है कि हर इंसान को क्वालिटी एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी ही चाहिए। सवाल ये है कि एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब है, एजुकेशन वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी तमाम गोल

खड़े हो सकते हैं देखिए सोचिए अगर लोग एजुकेटेड ना हो तो क्या वो हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं क्या वो और दूसरे गोल्स को जो है वो पूरा करने में मदद या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर एजुकेशन ही ना हो तो लोग कैसे क्लाइमेट चेंज को समझ सकेंगे अगर एजुकेशन ही ना हो तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट और टीचर्स कहाँ से आएंगे इसीलिए एजुकेशन को हर तरक्की की बुनियाद कहा जाता है जब एक बच्चा तालीम हासिल करता है तो वो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि उसकी पूरी फैमिली और पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करता है एजुकेशन इंसान को नॉलेज भी देता है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी ये हमें बेहतर फैसले करना सिखाता है एजुकेशन जो है वो गुर्बत को भी कम करता है दुनिया के कई कंट्रीज में आप देखते हैं कि पावर्टी गुर्बत है और अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है ये जब लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलती है तो उनके पास बेटर जॉब्स के ऑप्शंस होते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होती हैं। एजुकेशन इंसान को ना स्किल देती है जो उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती है और इसी वजह से एक्सपर्ट्स दुनिया भर में एजुकेशन के लिए या इसके हवाले से बहुत सारे काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की माने जाए तो एजुकेशन को पावर्टी के खिलाफ सबसे पावरफुल टूल भी माना जाता है इसे एक एजुकेटेड सोसाइटी जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव और प्रॉस्पेरस होती है आज जो बच्चे क्लासरूम्स में बैठकर सीख रहे हैं वो कल के डॉक्टर्स हैं लीडर्स हैं दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है AI, रोबोटिक्स ऑटोमेशन इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आने वाले सालों में कई जॉब्स चेंज हो सकती हैं और नई जॉब्स पैदा होंगी इसीलिए फ्यूचर जनरेशन को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि मॉडर्न स्किल्स की भी जरूरत है और ये क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन डिजिटल लिटरेसी फ्यूचर की की स्किल्स हैं ये सब एजुकेशन के जरिए ही हासिल हो सकती है तो अगर यूथ को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो वो चेंजिंग वर्ल्ड के लिए तैयार होगा आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को जो है बड़ा कंसर्न समझती है मुझे लगता है एजुकेशन से क्लाइमेट चेंज का सलूशन मिलता है एनवायरमेंट को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी तो काफी नहीं है ना लोगों को अवेयरनेस भी चाहिए एजुकेशन हमें सिखाती है कि पानी बचाना क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने से क्या नुकसान हो सकता है रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की अहमियत है क्या जब लोग एनवायरमेंटल इश्यूज को समझते हैं तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेते हैं यानी क्लाइमेट एक्शन की बुनियाद भी एजुकेशन ही है सो एक एजुकेटेड इंसान जो है वो अपने हेल्थ का भी ज्यादा ख्याल रखता है वो अपने न्यूट्रिशन एक्सरसाइज और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की इम्पोर्टेंस को समझ सकता है एजुकेशन पेरेंट्स को भी अवेयर बनाती है एजुकेटेड पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को हेल्थ और एजुकेशन दोनों पर ज्यादा फोकस कराते हैं और इसीलिए एजुकेशन का एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट जनरेशन तक जाता है वहीं पर विमेन एम्पावरमेंट में भी एजुकेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जब लड़कियों को एजुकेशन मिलती है तो पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियरी बन जाती हैं। एजुकेटेड विमेन ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। वो बेहतर करियर ऑप्शंस हासिल कर सकती हैं। उनकी पार्टिसिपेशन इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों में बढ़ जाती है वहीं पर टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं एजुकेशन का ही हिस्सा है तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किताबी इल्म नहीं है कई लोग समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब एग्जाम्स पास कर लेना असल एजुकेशन इंसान को सोचना समझना और रिएक्ट करने की जो एक स्किल है वो उनके अंदर डेवलप करती है ये हमें टॉलरेंस रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है एजुकेशन हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी सिखाती है एक एजुकेटेड सोसाइटी ज्यादा पावरफुल और इंक्लूसिव होती है अगर हम फ्यूचर की दुनिया को देखें तो हमें क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी हेल्थ और इकोनॉमिक चैलेंजेस नजर आते हैं लेकिन इन तमाम चैलेंजेस का एक कॉमन सोल्यूशन है एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन आइडियाज पैदा करती है एजुकेशन इनोवेशन पैदा करती है एजुकेशन लीडर्स पैदा करती है एजुकेशन साइंटिस्ट डॉक्टर्स और चेंज मेकर्स पैदा करती है और हो सकता है कि क्लीन एनर्जी फ्यूचर को पावर करे हो सकता है कि AI इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करे हो सकता है स्मार्ट सिटीज हमारी जिंदगी को आसान बना दे लेकिन इन सब चीजों को क्रिएट और मैनेज करने वाले होंगे लोग और उन लोगों को तैयार करने का काम एजुकेशन करती है इसलिए हमें सिर्फ एक SDG को फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट गोल नहीं चुनना है और अगर चुनना ही पड़े तो मेरे हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन सबसे पावरफुल चॉइस है क्योंकि जब एजुकेशन मजबूत होती है तो बाकी गोल्स हासिल करना भी

0: genocide against the Tutsi in Rwanda that we know have elected the eastern part of the Democratic Republic of Congo as their base, who currently are receiving the support of the government of the Democratic Republic of Congo. And really, it's an issue that we believe could be resolved very easily by uprooting this group from there and stopping the massacres that they have been carrying out in that area. It is an issue in which the government of Rwanda has played its role by joining the different initiatives that were meant to provide a solution to that conflict, and we will continue to do so.
1: Great. Now coming to the personal question, what actually inspired you to join diplomacy?
0: Well, I'd say that I'm a diplomat by accident.
1: Mm-hmm.
0: I joined our service because I had decided to receive to acquire a diplomat government public service experience before I continue my education. And by a happenstance, really, I found myself in the Foreign Service. And since then, as I have to say that it's been an honor to serve in the different positions that I've been assigned to. And it continues to be, I'd say, an area that gives you an opportunity to understand your country, your people, in a way that allows you to present it to the world. It's a privileged place, I think.
1: Nice. So what achievement makes you feel proud as you represent your country outside the country?
0: I must say that the most important one is belonging to a country that has managed to unify its people around a goal or an objective to transform itself with honor. That is really something that gives me not only pleasure, but also fuels my resolve to continue to serve.
1: Excellent. Beautiful. Now, coming to the closing question, how would you like to see the relationship of the two countries in the coming years?
0: I wish to see the achievements that we've made today continue to expand in other sectors, and I'm working towards that, and I hope my colleagues or my future replacers would do exactly the same. It is a country that with which we share a lot, being like-minded, being focused on the future, being respectful of whichever country that they're dealing with. That gives me a conviction that growing this relationship is possible.
1: Thank you so much, Your Excellency, for taking out your valuable time and sharing your experience, your stories, your journey, and amazing insights with us. Thank you so much once again.
0: Thank you. It's been a real pleasure.
1: Well, दोस्तों, आज हम जो थे मौजूद थे एम्बेसी ऑफ रवांडा, एंड यहाँ हमारे पास एक भरपूर मौका था कि हम एम्बेसडर से बात करें. आज हमारी जो खास बातचीत हुई एम्बेसडर से, उन्होंने कंट्री के डेवलपमेंट जर्नी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमसे बात की. एम्बेसडर ने बताया कि रवांडा ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत प्रोग्रेस की है. आपने कतर और रवांडा के स्ट्रॉन्ग बायलेटरल रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस पर भी रोशनी डाली. इंटरव्यू के दौरान कल्चरल एक्सचेंज, टूरिज्म प्रमोशन और यूथ एम्पावरमेंट के टॉपिक्स भी डिस्कस हुए. एम्बेसडर का पैगाम था कि एक कोऑपरेशन, इनोवेशन और एजुकेशन किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है. ये इंटरव्यू इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग रहा. रवांडा की सक्सेस स्टोरी को हमें समझने का मौका मिला. दोस्तों, हमने और आपने जाना कि रवांडा आज अफ्रीका की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली कंट्रीज में से एक है. एम्बेसडर ने बताया कि मुल्क में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अच्छी गवर्नेंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से बहुत प्रोग्रेस की है. जी हाँ, रवांडा का गोल है कि वो फ्यूचर में हाई इकोनॉमी इनकम वाला मुल्क बने और अपने लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें. रवांडा का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस पर पर हिज एक्सेंसी ने बात की, बताया कि किस तरह से प्रोजेक्ट जो है रवांडा को अफ्रीका के और एक मेजर एविएशन और बिजनेस हब बनाने में किस तरह से मदद करेगा। वहीं एयरपोर्ट से टूरिज्म भी, ट्रेड हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें भी इजाफा होगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से जो कनेक्टिविटी है वो भी कितनी आसान हो जाएगी। वहीं टूरिज्म जो है वो रवांडा की इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस कंट्री को लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, रवांडा अपने खूबसूरत माउंटेन्स, ग्रीन लैंडस्केप और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट खास तौर पर वॉल्केनोस नेशनल पार्क में आ सकते हैं, गोरिल्लास देखने के लिए जगह बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा नेशनल पार्क्स और भी हैं जहाँ सफारी इंजॉय की जा सकती है। कुछ फॉरेस्ट हैं जो नेचुरली इतने ब्यूटीफुल हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ही सभी के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं पर कुछ सिटी ऐसी हैं जो अपनी सिक्योरिटी, अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से योर एक्सेंसी ने बताया कि काफ़ी मशहूर हैं। वहीं अम्बेसडर से मैंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी बात की, जहां पर अम्बेसडर ने बताया कि रवांडा दुनिया की उन कंट्रीज में जो है उसका शुमार होता है जहां देखा जाए तो वुमेन लीडरशिप और डिसीशन मेकिंग के रोल में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उन्हें पॉलिटिक्स, बिजनेस, मिलिट्री, सोसाइटी में, हर फील्ड में बराबरी के मौके दिए जाते हैं और जो मुल्क के डेवलपमेंट और उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी रवांडा के फ्यूचर विजन का एक बहुत ही सेंट्रल हिस्सा है। गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूथ एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर फोकस कर रही है। अम्बेसडर का पैगाम था कि आज का रवांडा एक पीसफुल, मॉडर्न और फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री है जो अपने पास से निकलकर प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ प्रोग्रेस, इनोवेशन और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने सभी को दावत दी कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और अगर आप जो है वो नेशनल पार्क्स या फिर गोरिल्लास या फिर फॉरेस्ट या फिर और नेचुरल ब्यूटी को, माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हिल्स को देखना चाहते हैं, ग्रीन लैंडस्केप आपको जो है वो एक्साइट करती है, तो आपको डेफिनेटली रवांडा विजिट करना चाहिए। बहुत सारी सिटीज़ के नाम लिए, यहाँ पर किलगिली सिटी का भी नाम लिया और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनका नाम लिया गया। तो मतलब हर सिटी, हर जगह अपनी सिक्योरिटी, अपने लाइफस्टाइल की वजह से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। तो ऑल टुगेदर हमने यहाँ इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा और सबसे अच्छी और बड़ी बात ये कि एम्बेसडर ने कहा कि रवांडा जो है वो अपने पास से निकल आया है। जिस तरह से लोग उसे पास्ट में देखते थे वो आज उसकी पिक्चर नहीं है। रवांडा आज के टाइम में एक पीसफुल, एक मॉडर्न, इनोवेटिव और फास्ट डेवलपिंग मुल्क है जो दुनिया के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल बन चुका है। तो मैं इस इंटरव्यू से यही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमें और आपको सीखने को मिलती हैं और अगर मौका मिलता है तो इस कंट्री को विज़िट करना भी चाहिए। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली विज़िट कीजिए। फिलहाल यहाँ मैं इस इंटरव्यू से आपसे इजाज़त लूँगी, इस वादे के साथ कि एक नए मंथ में एक नए एम्बेसडर, उनसे हम मुलाकात करेंगे, कंट्री के बारे में जानेंगे और यहाँ किस तरह से वो अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं इस पर भी जो है वो रोशनी डालेंगे। फिलहाल के लिए मुझे नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट एफएम 107 कतर, दिल से देसी।
3: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
4: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
3: गेम ऑन,
4: वॉल्यूम अप,
3: एवरी संडे और ट्यूजडे दोपहर 1 बजे से
4: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
5: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: क्रिकेट हो,
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
1: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
5: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

0: के नाम मोहम्मद
1: जी जी
0: तो इसको थोड़ा सा आप तशरीह करें, क्या हम लोग इज्जत एहतराम से रखते हैं मोहम्मद, लेकिन मोहम्मद एज ए कंप्लीट नाम रखें जिससे बाप दादा कभी हो तो वो भी घूम फिर के लग जाए तो हमें मोहम्मद मिल जाएगा
1: जी। जुल्करन भाई, यहाँ का जो कल्चर है ना, यानी कतर वगैरह का, अरब का, तो ये लोग मुफरद नाम रखते हैं, यानी एक ही नाम रहता है, जैसे हमद हमद, या किसी का नाम अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला, इस तरह। लेकिन जो हमारे बड़े सगीर का जो कल्चर है, वहाँ पर लोग मुरक्कब नाम रखते हैं, जैसे मोहम्मद बशीर, और इसी तरह, यानी हम बरकतन मोहम्मद लगाते हैं। तो इस पर अगर ये गुफ्तगू है, यानी कि इस तरह, एक तो मोहम्मद नज़ीर नाम रखना कैसा है, नज़ीर उसका माना डराने वाला है, दूसरा मुरक्कब नाम रखने का क्या हुक्म है, इस पर भी
0: हाँ उसके डॉक्यूमेंटेशन में बड़े पड़ते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि और जगहों पर भी ना, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल लोग ट्रेवल करते हैं यूरोप अमेरिका या उस जगहों पर भी, तो वहाँ बड़े मामलात हो जाते हैं और इसके अंदर लोग फ्रॉड भी बड़े करते हैं। अब मोहम्मद बशीर या बशीर मोहम्मद कर लें नाम कहने को, वो आगे पीछे हो जाए तो वो उनके हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से दो मुख्तलिफ बंदे।
1: जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पर बात करते
0: तो
1: हैं
0: जरा। हाँ तो नामों को किस तरह, हाँ नामों के ताल्लुक से किस तरह उनके मतालिब के ऊपर, और एक चीज और भी ऐड कर लीजिएगा, कुछ लोग हमारे ये इन प्यारे नामों के बजाय ना नाम नए ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नए नाम, यार अब्दुल्ला इब्राहिम मोहम्मद या ये जो पैगम्बरों के नाम है ये कभी पुराने नहीं हो सकते।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो इसके ऊपर थोड़ा सही रोशनी डालिएगा।
1: इंशाल्लाह बहुत अहम सवाल था, इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगु करेंगे शेख साहब से। तो बहरहाल सिला रहमी की बात चल रही थी, तो हम शेख साहब की तरफ जाते हैं। शेख साहब, बहुत देर से रहम पर बात चल रही है, एक तो अल्लाह ताला की सिफत रहमत पर तस्करा हुआ, फिर आप अलैहिस्सलाम की सिफत पर तस्करा हुआ जो उनकी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, इसी के ज़िम्न एक बाब है सिला रहमी का, तो सिला रहमी ये क्या चीज़ है, इसका तरीक़े कार क्या है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन अम्मा बाद। अभी हमारे शेख मोहतरम फरकान भाई बहुत ही मुदल्लल, बहुत ही मुफीद गुफ्तगु फरमा रहे थे रहम के ताल्लुक से। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने 100 रहमत नाजिल फरमाया, 100 रहमत है अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक, उसमें से एक रहमत दुनिया में नाजिल फरमाया है, और उस रहमत को इंसान और हैवान तमाम में तकसीम किया है, और 99 अल्लाह तबारक ताला ने अपने पास रखा है। तो अल्लाह तबारक ताला की रहमत पर गौर करें, और अभी इस वक्त ज़रूरत है कि हम अल्लाह तबारक ताला की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला की रहमत उसके अज़ाब पर ग़ालिब है। तो हमारे शेख मोहतरम अभी हमसे सवाल किया, उन्होंने सिला रहमी क्या है और उसका तरीक़ा क्या है। तो मौज़ सामेईन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है, वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान को सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला के हुकूक़ अदा करने की तालीम नहीं देता, बल्कि बंदों के हकूक़ की अदायगी पर भी ख़ास ज़ोर देता है। इन्हीं हकूक़ में एक नहायत अहम हक सिला रहमी का है, और सिला रहमी के ताल्लुक़ से उसके लुग़वी और इस्तिलाही माना हमारे शेख मोहतरम ने आपके सामने पेश किया है, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, महब्बत, खैरख्वाही और ताल्लुक़ को कायम रखना। मौज़ सामीन, रिश्ते अल्लाह ताला की अता करदन नेमत हैं, और उनकी हिफाजत ईमान की अलामत है। जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उनसे ताल्लुक़ जोड़े रखता है, वो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत, बरकत और रज़ा का मुस्तहिक बनता है। इसके बरक्स रिश्तेदारी तोड़ना, अता रहमी इस्लाम में सख्त नापसंदीदा और गुनाह कबीरा करार दिया गया है। तो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना, यानी उनके साथ हुस्न सलूक करना,

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

80% सी रूट्स के थ्रू होता है। ओशंस पे मिलियंस स्पीशीज रहते हैं, फ्रॉम टाइनीस्ट प्लैंकटन टू लार्जेस्ट व्हेल। ये सब देखकर लगता है कि ओशंस ट्रूली हमारे प्लैनेट का ब्लू हार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हार्ट अब क्राइसिस में है। क्राइसिस नंबर वन की अगर हम बात करें तो ये है ओवर फिशिंग। फिशिंग एक नेचुरल प्रैक्टिस है, लेकिन जब वो अनसस्टेनेबल हो जाए तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। क्या हो रहा है? हर साल मिलियंस टन फिश ओशन से निकाल ली जाती हैं। लार्ज इंडस्ट्रियल ट्रॉलर्स पूरी पूरी फिश पॉपुलेशन को खत्म कर देते हैं। जोविनाइल फिश जो अभी ब्रीड भी नहीं कर पाई होती भी कैच हो जाती है, जिससे स्पीशीज रिकवर नहीं कर पाती। इम्पैक्ट, मैरीन फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है। लोकल फिशरमैन जो ट्रेडिशनल तरीके से फिशिंग करते हैं उनकी लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो जाती है। पॉपुलर स्पीशीज जैसे ट्यूना और कॉड अब इनडेंजर्ड लिस्ट में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, एटलांटिक कॉड कॉलैप्स 1990s में कनाडा के कॉड फिशरीज इतनी ओवरफिश्ड हुई कि पूरी इंडस्ट्री कॉलैप्स्ड हो गई। रिकवरी में डेकेड्स लगेंगे। पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के फिशरमैन भी अब कंप्लेन करते हैं कि पहले जैसी कैच नहीं मिलती। ये क्लियर साइन है ओवर फिशिंग का। क्राइसिस नंबर टू, कोरल ब्लीचिंग। कोरल रीफ्स ओशंस के रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अब ब्लीचिंग की वजह से मर रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या है? कोरल्स एक सिम्बायोटिक एल्गे के साथ रहते हैं, जो उन्हें फूड और कलर देती है। जब समंदर का टेम्परेचर बढ़ता है या पोल्यूशन ज्यादा होती है तो कोरल्स स्ट्रेस में आकर अपना एल्गे लूज कर देती हैं। रिजल्ट, वो सफेद ब्लीच्ड और वीक हो जाती हैं। इम्पैक्ट, मैरीन स्पीशीज जो कोरल्स पे डिपेंड करती हैं उनके घर खत्म हो रहे हैं। टूरिज्म और फिशिंग इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट होती हैं। ओशंस की रेजिलियंस कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम रिपीटेड ब्लीचिंग इवेंट की वजह से 50% से ज्यादा डैमेज हो चुका है। मालदीव्स, कोरल ब्लीचिंग ने उनकी टूरिज्म और फिशरीज दोनों को थ्रेटन किया है। क्राइसिस नंबर थ्री, पोल्यूशन। ओशंस दुनिया का डस्टबिन बन गए हैं। प्लास्टिक, केमिकल और ऑयल स्पिल्स ने उनकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हर साल 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक ओशंस में डंप होता है। मैरीन एनिमल्स प्लास्टिक बैग्स को जेली फिश समझकर खा लेते हैं और मर जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स फूड चेन में घुस गए हैं और अब ह्यूमन के बॉडीज में भी डिटेक्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चरल रन ऑफ ओशंस में चले जाते हैं। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एल्जी ब्लूम्स क्रिएट करते हैं जो ऑक्सीजन डिप्लीट कर देते हैं। डेड ज़ोन्स जहां कोई एक्वाटिक लाइफ सरवाइव नहीं करती। टैंकर्स के एक्सीडेंट्स या ड्रिलिंग रिग से निकला ऑयल ओशंस को कवर कर देता है। बर्ड्स और फिश ऑयल में लिपट जाते हैं और मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। पैसिफिक ओशन में प्लास्टिक का एक फ्लोटिंग आइलैंड जैसा मास बना हुआ है, जो फ्रांस के साइज के बराबर है। कराची के पास ऑयल स्पिल्स और अनट्रीटेड सेवेज डंपिंग ने लोकल फिशरीज और बीचेस को हैवीली पोल्यूट किया है। क्राइसिस नंबर फोर, क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग ओशंस। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा विक्टिम ओशंस बन गए हैं। इम्पैक्ट, राइजिंग टेम्परेचर्स वार्म वाटर मैरीन लाइफ के लिए अनबियरेबल होता है। कोरल्स ब्लीच होते हैं, फिश माइग्रेशन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर्स और एक्सपैंडिंग वार्म वाटर कोस्ट लाइन्स को डाउन कर रही हैं। ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एसिडिक बना रहा है, जिससे शेल्स और कोरल डिसॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसिफिक आइलैंड्स जैसे क्रीबाती और तुवालु ड्रॉनिंग के खतरे में हैं। उनके लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन रहे हैं। आर्कटिक ओशन में आइस लॉस से पोलर बियर्स और सील्स के हैबिटेट्स वैनिश हो रहे हैं। क्राइसिस नंबर फाइव, लॉस ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी। सब प्रॉब्लम्स का कंबाइन इफेक्ट

है कि ओशंस की बायोडायवर्सिटी फास्ट डिक्लाइन कर रही है। व्हेल्स और शार्क्स जैसी आइकॉनिक स्पीशीज इंडेंजर्ड हैं। स्मॉल स्पीशीज जैसे प्लैंकटन एंड क्रिल भी क्लाइमेट और पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहे हैं। अगर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल एफर्ट्स की जो कि ओशंस को सेव करने के लिए किया जा रहा है। थैंकफुली दुनिया भर में एफर्ट्स हो रही हैं। जैसे लैंड पे नेशनल पार्क्स होते हैं, वैसे ओशंस में एमपीएस बनाए गए हैं। फिशिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होती है ताकि मैरीन लाइफ रिकवर करे। फॉर एग्जाम्पल, मैरीन नेशनल मोनूमेंट हवाई दुनिया के सबसे बड़े एमपीएस में से है। इसके साथ ही फिशिंग रेगुलेशंस जैसे सीजनल बैंस और साइज लिमिट्स इम्पोज किए जा रहे हैं ताकि स्पीशीज रीजनरेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन में स्ट्रिक्ट फिशिंग कोटास अप्लाई होते हैं। प्लास्टिक बैन इनिशिएटिव्स, कीनिया और रवांडा में प्लास्टिक बैग्स बैंड हैं। ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट्स फ्लोटिंग डिवाइसेस से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही कोरल रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, साइंटिस्ट कोरल्स को नर्सरीज में ग्रो करके ओशंस में रीप्लांट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मालदीव्स और फ्लोरिडा रीफ रीस्टोरेशन प्रोग्राम्स। इसके साथ ही ग्लोबल एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जो सस्टेनेबल ओशन गोल्स सेट करता है। पाकिस्तान का कोस्टलाइन 1000 किलोमीटर से ज्यादा और अरेबियन सी हमारे लिए फूड और ट्रेड दोनों का सोर्स है, लेकिन इश्यूज बहुत हैं। कराची से अनट्रीटेड सेवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट समंदर में जाता है। ओवरफिशिंग लोकल फिशरमैन के लाइवलीहुड्स को खतरे में डाल रही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, उनकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि एनजीओस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मैंग्रोव प्लांटेशन और मैरीन कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं। समुंदर हमारे प्लैनेट का ब्लू हार्ट है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्लाइमेट को बैलेंस करते हैं, फूड और ट्रेड प्रोवाइड करते हैं और मिलियंस स्पीशीज का घर है। लेकिन ये हाथ अब क्राइसिस में है। ओवरफिशिंग, कोरल ब्लीचिंग, पोल्यूटिंग और क्लाइमेट चेंज ने इसकी हेल्थ खराब कर दी है। अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो ओशंस का डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट्स, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स मिलकर एक्ट करें तो ओशंस रिकवर भी कर सकती हैं। समंदर हमें सिर्फ रिसोर्सेज नहीं देते, ये हमारी जिंदगी की फाउंडेशन है। उन्हें बचाना सिर्फ एक चॉइस नहीं, एक ड्यूटी है। आर ओशियंस आर ब्लू हार्ट, लेट्स सेव देम बिफोर इट्स टू लेट। सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि ओशंस के बगैर हमारी फूड चेन, क्लाइमेट रेगुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई सब खतरे में है। टू कंट्रीब्यूट फॉर अ बेटर फ्यूचर हमें कलेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। छोटी छोटी चीजें जैसे प्लास्टिक यूज कम करना या सस्टेनेबल सी फूड खरीदना बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेट्स मेक आवर ओशियंस थ्राइव फॉर फ्यूचर जनरेशंस। लिस्टर्स, यहाँ पे वक्त हुआ है हमारे एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: जलिस्टर्स वेलकम बैक आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे भवश खान और अब वक्त है ग्रीन फ्लैश का
0: ग्रीन फ्लैश
1: अब सुनिए दुनिया भर से सस्टेनेबिलिटी की तेजी से तारुफ कराने वाली खबरें हमारे ग्रीन फ्लैश सेगमेंट में पहली खबर ऑस्ट्रेलिया ने अपने ग्रेट बैरियर रीफ के लिए न्यू मैरीन सेंचुरीज बनाए हैं जहां फिशिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज पर सख्त पाबंदी है दूसरी खबर सी शेल्स ने अपने वाटर्स का 30% प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है जो मैरीन लाइफ के लिए सेफ हेवन बनेगा तीसरी खबर जापान में एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो माइक्रोप्लास्टिक्स को समंदर से फिल्टर करती है ये तीनों स्टोरीज हमें उम्मीद देती हैं कि दुनिया समंदरों को बचाने के लिए काम कर रही है अब वक्त है ग्रीन इनोवेशंस स्पॉटलाइट का
0: ग्रीन इनोवेशन
1: साइंटिस्ट ने एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डेवलप किया है जो प्लास्टिक फिशिंग नेट्स की जगह यूज हो सकता है ये नेट समंदर में डिसॉल्व हो जाती हैं, जिससे मैरीन लाइफ को नुकसान नहीं होता ये छोटी सी इनोवेशन ओवर फिशिंग और पोल्यूशन दोनों से लड़ने में मदद करेगी Isn't that amazing? अब वक्त है कुछ इको लिविंग टिप्स का
0: इको लिविंग टिप्स
1: अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल सी फूड खरीदें लोकल मार्केट्स में हामोर या ओवर फिश स्पीशीज के बजाय सस्टेनेबली सोर्स्ड फिश चुनें। जॉइन बीच क्लीनअप्स कतर में कई एनजीओस बीच क्लीनअप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करती हैं। ज्वाइन करें और प्लास्टिक पोल्यूशन कम करें प्लास्टिक स्ट्रॉज और सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स का यूज बंद करें रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स अपनाएं ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके और हमारे ओशंस के लिए बड़ा फर्क ला सकते हैं अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का
0: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट
1: आज सुनेंगे एक यंग खतरी मैरीन बायोलॉजिस्ट शेयर करेंगे अपना पैशन सेविंग कोरल रीफ्स के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे कि लोकल यूथ किस तरह से ज्वाइन कर सकती है रीफ रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स
2: With the next century, we are expecting 2 billion more people on the planet. And with the increase in the consumer behavior towards the seafood, this is a big challenge in terms of how we can increase the production in terms of not affecting or harming the environment.
3: While initiatives like this may seem like a drop in the ocean on a global scale, here in the Gulf, it's providing a positive step toward addressing one of the most pressing issues of our time.
1: जी लिस्टनर्स आपने सुनी अब एक इंस्पायरिंग वॉइस जो हमें बताती है कि हर छोटा कदम काउंट करता है आप भी इन एफर्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं वॉलंटियर करें और अपने समंदर को बचाएं
0: वीकली चैलेंज
1: आज का चैलेंज है इस हफ्ते अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स पूरी तरह से नो प्लास्टिक बैग्स नो स्ट्रॉस नो डिस्पोजेबल बॉटल्स नेक्स्ट वीक हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट किया व्हाट्सएप करें @666-22107 या सोशल मीडिया पर @FM107 कतर लेट्स डू दिस फॉर आवर ओशंस शुक्रिया आप सबका सस्टेन द फ्यूचर के साथ वक्त गुजारने के लिए अगले हफ्ते हम बात करेंगे ई वेस्ट के हिडन टॉक्सिक प्रॉब्लम के बारे में व्हाट हैपेंस जब हम अपने पुराने फोन्स और अप्लायंसेस फेंक देते हैं Stay tuned, follow us at FM 107 Qatar, WhatsApp pe message kare at 666-22107. Isi ke saath mujhe dijiye ijazat, apna aur apne samandar ka khyal rakhiye. Meri taraf se, Allah Hafiz and bye-bye.
0: Sustain the future.
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
6: FM 107.
4: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
7: FM 107 par apna business advertise karne ke liye, aaj hi raabta karein.
8: Aaj hi raabta karein.
7: Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
6: दोस्तों गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस एम्बुलेंसेस फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है
5: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है, तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती हैं कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं RJ कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
4: टॉप 10 काउंटडाउन।
3: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है। और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
2: आज ही राबता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दुआ कतर में शाम के 7 बजे हैं, आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107। फुरकान शाहिद से समाअत कीजिए आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। कतर ने बरादर मुल्क सऊदी अरब के शहर नजरान पर और दोस्त मुल्क शाम के शहर जर्माना में मुसाफिर बस पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दोहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरफेथ डायलॉग बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए अमन बैन अल-मज़ाहिब 2026 में शिरकत कर रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने आज एक मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियाँ। अब समाअत कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। हला हला, अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, फजील के साथ हैं और शो में आपका है स्वागत। जिस शो का इंतजार 11 लोग नहीं, 11,000 नहीं, 11,00,000 नहीं, 11 करोड़ लोग करते, इतने तो लोग हैं नहीं यहाँ पे। क्यों मैं 11 करोड़ इसलिए बोला, क्योंकि मैं यार इस शो को FM 107 को आप एप्लीकेशन के थ्रू भी सुन सकते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू सुन सकते हैं, तो इससे क्या लिसनर बढ़ जाते हैं ना, तो वो वाला तो एंगल आपने सोचा नहीं होगा। खैर, रिव्यू ऑफ द वीक इस शो का नाम है, जहां पर हम सब एक मूवी के बारे में बात करते हैं और जो मूवी लवर्स हैं खास तौर पे इस शो का इंतजार करते हैं कि क्या इस हफ्ते की मूवी देखने उन्हें जाना है या नहीं जाना है, या घर में बैठे रहना है, क्योंकि ऐसी मूवी आई है कि खर्चा हो जाएगा। और फिर वैसे भी यार अभी तो अगस्त महीने का शुरुआती वक्त है, तो पैसे तो होंगे जेब में, लेकिन आखिरी वक्त भी अच्छा होता है कि अरे यार अगले महीने तो आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा बचा है तो कोई मसला नहीं है, खर्च कर लेते, बस दो चार छह दिन में आ जाएगा, तो आखिर में ये भी होता है। लेकिन रिव्यू ऑफ द वीक ये शो जहां पर हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करते हैं जो हिंदी मूवी है या इंग्लिश मूवी है और शायद आपको देखनी चाहिए या फिर आपको रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि आप अपना पैसा बर्बाद करें या फिर इन्वेस्ट करें। कई बार आप एक्चुअली में पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी मूवी को देखने पर। वेल, आज जो मूवी है उस मूवी का नाम है भाई तेरा स्टार है।

वेल ये मूवी है तो हिंदी और ये भाई तेरा स्टार है, इसमें कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है, बहुत बड़े कोई स्टार नहीं है, लेकिन सच में उभरते हुए स्टार जरूर है। नाम है राघव जोय। तो ये मूवी के बारे में हमसे पहले बात करेंगे कि इस मूवी का मूड क्या चल रहा है, इस मूवी का हाइप या स्टार रेटिंग कैसा रहा, फन फैक्ट क्या है इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी को जब बनाया जा रहा था तो डायरेक्टर का असल विजन क्या था कि यू नो कॉमेडी करनी है या फिर कुछ मैसेज होना चाहिए या फिर एक्शन मूवी है, तो डायरेक्टर के विजन को भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन इस मूवी को बनाने के लिए कौन कौन सी लोकेशन का इस्तेमाल किया गया, फिल्मिंग की खास तौर पे लोकेशन क्या रही, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन यू नो इस मूवी को लेकर क्या जरूरी था,

0: फिर इंपॉर्टेंट चीज सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड पर भी हम बात करेंगे, फिर एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में छोटा सा हम वो भी बात कर लेंगे, ताकि आपको ओवरऑल ऐसा मोटा मोटा पता चल जाए कि मूवी असल में है किस बारे में यार, ऐसा तो नहीं है हवा हवाई चल रहा है कुछ भी है ना। वैसे ट्रेलर तो बड़ा प्रॉमिसिंग है भाई, ट्रेलर कहीं पर भी आपको हल्का होता हुआ नहीं दिखेगा भाई, तेरा स्टार है ये, इसका जब आप ट्रेलर देखेंगे सोशल मीडिया पे तो बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है और अच्छे खासे व्यूज भी आ गए हैं। एक तो राघव जुएल है, उनकी जो टाइमिंग है ना वो टाइमिंग बढ़िया है भाई, आप उनके टाइमिंग पर तो शक बिल्कुल नहीं कर सकते।
1: मैं पागल एक्टर हूं, मैं डैनियल डेल्यूस बन जाऊंगा, मेथड एक्टिंग कर लूंगा, सिचुएशन हैंडल कैसे करूं यार, मैंने उसे अपने गोद में पाला यार, इसी चीज मैंने गोद में पाला अपनी बहन को यार,
2: बड़ी बहन है ना।
0: उसके अलावा कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ कुछ दिन पहले उनका जो ये कह सकते हैं जो ऑरा था वो थोड़ा नेगेटिव था, अभी तक 3 हफ्ते हो गए, कुछ 3.5 मिलियन व्यूज है जो अच्छा माना जाता है। वेल जल्द बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में डिटेल में, बाकी आगे हम परफॉर्मेंस पर भी डिस्कस करेंगे, क्रिटिक्स का क्या कहना है और फाइनली यानी वर्डिक्ट क्या है इस मूवी को लेकर। शुरू करते हैं सबसे पहले इस मूवी के मूड को लेकर दोस्तों, इस मूवी का जो मूड है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फन और फुल ऑन पागलपन से भरा हुआ है। जैसे ही आप ट्रेलर देखते हैं आपको कहीं पर भी ना स्लो होता हुआ ट्रेलर दिखेगा नहीं, बहुत तेज भागता हुआ ट्रेलर है जिसमें पंच लाइन है, कॉमेडी है, सिनेमाटोग्राफी और साउंड के साथ अच्छा टच है, इसमें कॉमिक बहुत अच्छा रोल निभाता कि मतलब कॉमिक टाइमिंग तो अच्छी होनी चाहिए। स्टोरी एक ही रात में अगर देखी जाए तो वो लंदन में सेट है, तो पहले मिनट से ही एक मजेदार भागदौड़ और सस्पेंस जो है ना वो इस मूवी में

क्लासिक स्लैपस्टिक कॉमेडी जैसी लगती है, जहां हर कैरेक्टर एक अलग ही लेवल के पैनिक और कंफ्यूजन में रहता है। मूड नॉनस्टॉप जोक्स का है, क्रेजी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्योर कार्टूनिश ड्रामे के बीच में घूमता रहता है। इसमें सीरियस टेंशन की जगह लाइट हार्टेड मजा और फिजिकल कॉमेडी को प्रायोरिटी दी है। अगर आप अपना दिमाग साइड में रखकर एक फास्ट, हाइपर एक्टिव और लाउड कॉमेडी राइड एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये मूवी आपको पूरी तरह से एंटरटेनिंग और टाइम पास लगने वाली है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की बात कि आप यार ऑफिस में रहते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 घंटा काम करने वाले लोग हैं, तो यार दिमाग ऑलरेडी हम ऑफिस में लगा रहे हैं, मेरे को बगैर दिमाग वाली फनी कोई मूवी दिखाओ जिसमें टाइम पास भी हो जाए, थोड़ा कुमार भी चढ़ा रहे सर पे, रात में थोड़ा थोड़ा सपना भी आ जाए, अगले दिन थोड़ी बात भी हो जाए ऑफिस में कि यार फला मूवी देख कर आए, मूवी बहुत अच्छी है भाई, देखना चाहिए, ये सब हो ना, तो अपने को दिमाग लगाना नहीं है, ये उसी तरह की कुछ मूवी है। लेट्स टॉक अबाउट द हाइप एंड स्टार रेटिंग, कितने हाइप है, क्या स्टार मिले हैं इसे। मूवी को लेकर रिलीज से पहले काफी अच्छी हाइप थी। किल मूवी में ब्रुटल विलन बनकर लोगों का दिल जीतने वाले राघव ये मूवी में बहुत ही जबरदस्त काम करके आ रहे हैं, और इस मूवी में बिल्कुल उलट है, सोलो कॉमेडी मूवी है इनकी, तो फैंस उनका कॉमिक जो टाइमिंग है ना वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उनके साथ सोशल मीडिया स्टार भी आ रही है, निहारिका एनएम। अगर निहारिका को आप जानते हैं तो इसका मतलब आप सोशल मीडिया कम से कम नहीं तो 8-9 साल से लगातार चला रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव रहे हैं, क्योंकि निहारिका अब इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट निहारिका की जो कॉमिक

निहारिका की जो पंच लाइन्स थे, ऑब्वियसली निहारिका बाहर देश में कहीं रहती थी, है इंडियन लेकिन बाहर देश में रहती थी। इन्होंने सोशल मीडिया उस दौर में शुरू करा या वायरल तब हुई जब कोविड वगैरह चल रहा था, तब से लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा देखा, मिलियन में व्यूज जाता था, सामने कैमरा रख के मेकअप करके अच्छी ज़बरदस्त लाइन बोलती थी, अंग्रेजी में अच्छी इन्होंने कॉमेडी करी है और उस अंग्रेजी में कहीं कहीं हिंदी वर्ड डालती थी, तो लोगों ने बहुत इन्हें पसंद किया और अब बॉलीवुड में मौका मिला इनको। तो निहारिका का बॉलीवुड डेब्यू भी है। मिमिक्री के किंग जो विकल्प है वो भी इसमें है, विकल्प मेहता, और सीनियर एक्टर संजय कपूर का मजेदार रोल भी है इसमें। ट्रेलर में लंदन की ग्लॉसी लोकेशंस हैं, कैची म्यूजिक और सलमान खान की मूवीज पे बने मेटा जोक्स ने ऑडियंस का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बदल दिया और हाइप बेहतरीन है। रिलीज के बाद मूवी ने एक डिसेंट और लाइट हार्टेड एंटरटेनर का प्रॉमिस पूरा किया। माना कि राइटिंग में यार थोड़ा लूप होल है, अब यार आजकल की राइटिंग कौन सा गुलजार साहब कर रहे हैं कौन सा जावेद अख्तर कर रहे हैं कि लूप होल नहीं मिलेंगे आपको, और उनके भी राइटिंग में लूप होल हुआ ही करता था, खैर वो अलग एक खेल है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। और कुछ जगह भी इस मूवी में शोर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इवन जब आप ट्रेलर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार बीच बीच में कहीं थोड़ा सुकून तो डाल देते यार, तुमने बहुत तेज ट्रेलर निकाल दिया, 2 मिनट का ट्रेलर है, थोड़ा हले हले हल्लू हल्लू भाई, कॉमेडी कर रहे हैं ठीक है लेकिन कुछ तो शांति डालते। तो ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा पंच लाइन इन्होंने डाल दिया है ट्रेलर में कि कहीं पर रुक कर उस पंच लाइन को सोचें और उस पर हंसने का मौका नहीं। तो ये एक डायरेक्टर की खूबी होती है, एडिटर की खूबी होती है, पंच लाइन बोलने के बाद थोड़ा आपको रुकना पड़ता है कि पब्लिक हंस तो ले भाई, समझ तो ले, लेकिन दबा दब लाइन है, लेकिन ऑब्वियसली जो फास्ट थिंकर है उनको मजा आएगा ये सुनकर। एक्टर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस है, नॉन स्टॉप एनर्जी है इस मूवी में, बोर नहीं होने देगी आपको। अगर आप एक टाइम पास डायन और कॉमेडिक सेंट्रिक मूवी ढूंढ रहे हैं तो भाई तेरा स्टार है एक अच्छा वीकेंड वॉच साबित हो सकता है। इसके लिए इसको सॉलिड 5 में से 3 स्टार मिलते हैं और अगेन राघव ने अपना काम करके दिखाया, राघव ने ये बता दिया है, ये साबित कर दिया है कि बाबा वो कच्चा चावल नहीं है, पका हुआ चावल है और बहुत पुराना चावल क्या होता है ना, तो बहुत पुराना चावल है वो आदमी और काफ़ी लंबे वक्त से हैं भी वो। अभी किसी यू नो शो में आए थे जो कि सोशल मीडिया पर रिलीज़ होता है और आजकल तो OTT पर भी रिलीज़ हो रहा है, उसमें वो आए थे और पता ये चला है कि भाई वो आज से नहीं है, वो तो DID में जब आए थे स्लो मोशन करने वाले बहुत ज़माने पहले के स्टार रहे हैं और 10 साल तो हो ही गया, तो आजकल के जो लड़के 10-12 साल के हो गए वो भी ज्वेल को जानते हैं, राघव ज्वेल को। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फन फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले थोड़ा ट्रेलर देख लेते हैं। रेडी पे नहीं

0: प्रॉब्लम है थोड़ा सा,
1: बॉडी बिल्डर प्रोटीन शेक।
0: आज एक ऑडिशन दिया है।
2: तो दोस्तों, आपको हल्ले के बीच, इतने शोर के बीच थोड़ा बहुत हल्लू हल्लू समझ में आ गया होगा कि ये मूवी आपको क्या देना चाह रही है। लेकिन अब इस मूवी के फन फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी प्रोडक्शन को लेकर क्या कुछ बातें रही। मूवी के बिहाइंड द सीन से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। पहला फन फैक्ट ये है कि मूवी में राघव के कैरेक्टर की फिक्शनल फिल्म का नाम किसी की भाई किसी की बहन होता है, जो सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान पर एक फनी स्पूफ है एक तरह से। प्रोमोज के वक्त राघव ने बताया कि ट्रेलर देखने के बाद खुद सलमान खान ने उन्हें कॉल किया था और इस जोक पर बहुत हंसे भी थे और उन्होंने फुल सपोर्ट भी दिया है। तो अब जिस मूवी को सलमान भाई का सपोर्ट है तो वो मूवी आपको देखने जानी पड़ेगी। भाई सलमान खान बैकिंग में है यार, देख लो भाई यार। अगर नहीं आपने इस मूवी को देखा तो सलमान भाई नाराज हो जाएंगे, फिर अगर सलमान नाराज हो जाते हैं तो आपको पता है वो क्या करते हैं। वो कह रहे थे अगर किसी ने इस मूवी को नहीं देखा तो वो ड्राइविंग फिर से शुरू कर देंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्ट भी है इस मूवी को लेकर, और वो ये है कि मेकर्स ने सोशल मीडिया सेंसेशन निहारिका और मिमिक्री आर्टिस्ट विकल्प मेहता को स्क्रीन पर लाकर इंटरनेट क्रिएटर्स और मेनस्ट्रीम बॉलीवुड का एक मस्त कॉम्बिनेशन बनाया। देखिए आजकल

0: कि ये चाल भी है। कई बार क्या होता है ना कि आजकल की जो जेंजी हैं, मिलेनियल्स हैं, जो नए जमाने के लड़के हैं ना, जो सोशल मीडिया पे फंस गए, उनको कैसे लेकर आया जाए यार मूवी थिएटर्स में, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया ही देख रहे हैं। मूवी थिएटर्स में कैसे लाया जाए, तो सोशल मीडिया के स्टार्स को ले आओ। और निहारिका मतलब ओवरऑल वो अच्छी लगती भी है, सोशल स्टार भी रही हैं, सेलिब्रिटी बन गई हैं, और फिर अब बॉलीवुड में मौका मिल रहा है, तो जो नए लड़के हैं जो सोशल मीडिया पे फंसे हैं वो थिएटर तक पहुंच जाएंगे। ये एक तरीका भी रहा है काफ़ी लंबे वक्त से जो डायरेक्टर्स रहे, वैसे कॉम्बिनेशन अच्छा है। तीसरी बात एक और है, वो ये कि कैमरा टीम ने कंटिन्यूस ट्रैकिंग शॉट्स यूज किए ताकि पूरे लंदन को चेज करते हुए कंटिन्यूस रियल टाइम नाइट जैसा लुक दिया जा सके। और सबसे मजेदार बात एक और है, और वो ये है कि मूवी खत्म होने के बाद क्रेडिट्स में कंपोजर अमित त्रिवेदी के 3 पूरे म्यूजिक वीडियोस एक के बाद एक अटैच किए गए थे, तो ये भी एक अलग और अनोखी बात है। आमतौर पे ये देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये कोई बात है कि मूवी खत्म होने के बाद बैक टू बैक भी अमित त्रिवेदी को यार इतनी देर में आप लेकर आ रहे हैं। खैर कोई नहीं, हम सह लेंगे, मूवी अच्छी होनी चाहिए बस, है ना। तो सुनते जाइए क्या कुछ है इस मूवी में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेव आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी सलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें।
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट,
6: हदीस टू हैबिट,
5: दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डायरेक्टर के विजन के बारे में कि इस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर विवेक अग्रवाल का विजन क्या था। डायरेक्टर पता चल गया है कि विवेक अग्रवाल है। विजन था कि 90s की क्लासिक गोविंदा स्टाइल एक रात की कन्फ्यूजन कॉमेडी को आज के मॉडर्न ट्रेंडी स्टाइल में दोबारा बनाया जाए, उनका प्लान एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करना था जहां हीरो का एक छोटा सा झूठ पूरे लंदन में क्रेजी हंगामा खड़ा कर देता है, जिसमें गुंडे, पुलिस, डॉक्टर, ये सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, फैमिली सब एक साथ फंस जाते हैं। एक्चुअली इसको विजुअली कूल बनाने के लिए डायरेक्टर ने मूवी में कॉमिक बुक ग्राफिक्स, स्क्रीन पर फ्लोटिंग टेक्स्ट और पॉपअप साउंड इफेक्ट्स इंक्लूड किए। वो चाहते थे कि मूवी एक फास्ट पेस्ड मॉडर्न वीडियो गेम या रील जैसी वाइब्रेंट लगी रहे, मतलब ऐसा रुकाव नहीं होना चाहिए। उनका विजन डायनेमिक और एनर्जेटिक था और उन्होंने स्क्रीन पर कंटिन्यूस स्पीड मेंटेन भी रखी ताकि ऑडियंस एंड तक हुक्ड रहे। स्टाइल और एक्शन कॉमेडी का ये मिक्सचर काफी फ्रेश भी फील होता है। इवन जब आप अभी आपने सुना भी होगा या जब आप पूरा ट्रेलर देखेंगे तो आपको कहीं पर भी रुकता हुआ ट्रेलर नहीं दिखेगा, एकदम आखिरी में बगैर म्यूजिक के छोटा सा डायलॉग है और वो भी पंचलाइन है। तो पूरा ट्रेलर ना ऐसा लगता है अटैक ही कर रहा है और अच्छी लाइंस भी हैं, जो बात है। बस मसला ये है कि आजकल के जो ट्रेलर होते हैं उसमें सारा मसाला भर दिया जाता है, मूवी देखो तो यार पूरा मजा खत्म हो जाता है। ट्रेलर तो ऐसा बड़ा बड़ा दिखा देंगे कि वो जो रियल स्टेट वाले नहीं होते हैं, बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं कि सर ये देखिए ये बिल्डिंग एकदम नए पॉश इलाके में बन रही है, बगल में मार्केट है, दो कदम पे आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा, बगल में सर एक कदम डालिए तो आपको मॉल आ जाएगा, ग्रोसरी खरीद ग्रोसरी के लिए सर देखिए आप कुछ नहीं, आप घर पे बैठे ऑर्डर कर दें आ जाएगा। सर वो जो डिलीवरी राइडर तो यही रहता है सर बगल में। ये रियल स्टेट की तरह हो गया यार आजकल का ट्रेलर। जब आपको एजेंट बताता है ना, यानी कि जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको लगता है मजा आ जाएगा भाई, दिल खुश कर देगी मूवी, लेकिन जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी पलट जाती है। तो ट्रेलर और मूवी में फर्क जो है वो नजर आता है साफ, और यही वजह है मुझे लग रहा था जब मैंने ट्रेलर देखा कि 5 में से 3.5-4 तो मैं दूंगा। मूवी देखने के बाद 2.5-3 पर रुका, लेकिन 3 पर इसलिए क्योंकि एक्टिंग भी अच्छी है, राघव से जिस तरह की आप उम्मीद करते हो उससे कहीं ज्यादा उन्होंने दिया है इस मूवी को, और निहारिका ने भी अच्छा काम किया है, तो ओवरऑल ये मूवी अच्छी है। बाकी ट्रेलर और मूवी में थोड़ा फर्क आपको जरूर देखने को मिलेगा। फन लविंग और जबरदस्त विजुअल के साथ इस मूवी को आप बहुत एंजॉय करने वाले ओवरऑल। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिल्मिंग की, लोकेशन क्या रही इस मूवी को बनाने के लिए, किस लोकेशन का इस्तेमाल किया गया है। जो अब तक आपको पता चल गया होगा ऑब्वियसली लंदन में शूट हुई है। भाई देर स्टार जो मूवी है सबसे बड़ी जो विजुअल स्ट्रेंथ है इसकी वो रियल लंदन की लोकेशंस हैं। मुंबई के सेट पर शूट करने के बजाय मेकर्स ने पूरी मूवी लंदन की ठंड और असली रातों में शूट किया है। तो इस मूवी में जब आप सीन देख रहे होंगे तो आप लंदन में एक्चुअली में बैठ कर देख रहे होंगे। इस मूवी में जो रात है वो लंदन फिल्म का एक मेन कैरेक्टर लगता है। लंदन की पतली डार्क एलीज और पुरानी रोड्स सब कुछ दिखाए गए हैं। रात को शूट करना पूरी टीम के लिए काफी चैलेंजिंग था क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। एक्टर्स को कंटिन्यूस रनिंग और फिजिकल कॉमेडी सीन्स करने पड़ते थे ताकि उनकी बॉडी गर्म रहे, और फिर लंदन की ठंड आए हाय जानलेवा। उसके अलावा मूवी के क्लाइमेक्स सीन को एक स्टाइल्ड लंदन पुलिस स्टेशन के सेट पर शूट किया गया, जहां सारे कैरेक्टर्स एक साथ आकर एक बड़ा कैओटिक फाइनल या फिनाले क्रिएट करते हैं। लंदन की वेट रोड्स, नियॉन लाइट्स और डार्क विजुअल्स मूवी को एक स्टाइलिश और इंटरनेशनल लुक देते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टर ने रिस्क लिया। और इस रिस्क में यानी कि फिल्मिंग की लोकेशन, फिल्म किस वक्त शूट होगी, रात में शूट होगी, डार्क रहेगी, बहुत लाइट नहीं है चाहिए इसके लिए, ओवरऑल इस चीज़ पर काम करना, और डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल नहीं किया, दिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो ये एक रिस्क था जिस रिस्क में पास हुए हैं डायरेक्टर, और इसके लिए भी 5 में से 4 रेटिंग ज़रूर मिलनी चाहिए। फिर आते हैं हम एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कि एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कुछ ऐसा रहा कि इस मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले। इस मूवी में दोस्तों सारे एक्टर्स ने अपने यूजुअल इमेज से हट के बहुत ही एनर्जेटिक रोल्स प्ले किए हैं। राघव जुएल जिन्होंने किल में एक सीरियस किलर का रोल किया था, यहाँ एक बिल्कुल हाइपर एक्टिव और ड्रामेबाज एस्पायरिंग एक्टर अजय बने हैं वो। उनका डांस बैकग्राउंड, उनकी फिजिकल कॉमेडी और रनिंग सीन्स में साफ नजर आता है। संजय कपूर ने फैटी नाम का एक धड़ल्लेदार रोल निभाया जो लाउड और कार्टूनिश विलनी करते हैं, मतलब थोड़े विलन टाइप के। सोशल मीडिया स्टार निहारिका ने इंटरनेट की कॉमिक एनर्जी को सिनेमेटिक स्क्रीन पर नेचुरली डिलीवर किया। मिमिक्री आर्टिस्ट विकल्प मेहता ने जेडी के रोल में अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन और

को बहुत एंटरटेन किया, जबकि चंदन रॉय सान्याल ने भी एक क्रेजी कैरेक्टर से पूरे स्लैपस्टिक मूड को एम्प्लीफाई किया। तो ओवरऑल एक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, कोई बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी नहीं, लेकिन जिस तरह की नीड थी एक्टर्स को एक्टिंग करने के लिए, जिस कैरेक्टर में ढल कर एक्टिंग करने की जरूरत थी, उसमें एक्टर ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म जरूर किया, चाहे निहारिका हो, राघव हो या फिर कपूर साहब हो, है संजय कपूर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड। और हर बार मैं कहता हूँ किसी भी मूवी का जो दिल है वो सिनेमाटोग्राफी और साउंड है। मूवी के टेक्निकल जो साइड है वो बहुत ही हाई एनर्जी वाले हैं, लाजवाब हैं, कलरफुल हैं और वाइब्रेंट भी हैं। सिनेमाटोग्राफी में हैंड हेल्ड कैमरा और लंबे ट्रैकिंग शॉट्स यूज किए गए हैं, वो साफ दिखता भी है, ताकि ऐसा लगे कि कैमरा हमेशा एक्टर्स के पीछे भाग रहा है और आप भी उस रात का हिस्सा हैं। जब आप मूवी देखेंगे ना, मोस्टली मूवी जो है वो ऑब्वियसली रात में ही शूट की गई है, और ये एक बहुत बड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, डायरेक्टर ने रिस्क लिया और रिस्क में पास हुए। रेड ब्लू और नियॉन कलर लाइट

एडिक्टेड कॉमिक ग्राफिक्स और टेक्स्ट ओवरलेज डाले गए हैं जो यंग ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आने वाले। साउंड डिजाइन भी बिल्कुल डल नहीं होता, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, कैची म्यूजिक है इसमें और कार्टूनिश साउंड इफेक्ट पूरी मूवी में एक फास्ट पेस बनाए रखते हैं। ओवरऑल टेक्निकल वर्क फिल्म की कॉमेडी वाइब को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। सुन रहे हैं रिव्यू ऑफ द वीक और इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो हिंदी मूवी है जिसमें स्टार बहुत बड़े नहीं है, लेकिन राघव जुयाल किल मूवी के बाद से बड़े स्टार बन गए। बड़े यहाँ पर प्रॉब्लम है, किल मूवी में उनका रोल बहुत ही ज्यादा इंटेंस वाला नेगेटिव रोल या खूंखार वाला रोल था, लेकिन इस मूवी में राघव का कॉमिक रोल है, कॉमेडी वाला रोल है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो उनके फैन हैं। अगर आप किलर्स उनके फैन बने हैं और आप यहाँ पर उनको देख रहे हैं तो एकदम से चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप राघव के 10 साल पुराने वाले फैन हैं तो इस मूवी को आप पसंद करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है भाई तेरा स्टार है, जिसमें राघव ने काम किया है और निहारिका जो कि सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी रही है ये भी 10-12 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रही और इस मूवी में उन्होंने डेब्यू किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी भाई तेरा स्टार है का एक स्पॉइलर फ्री प्लॉट। सो भाई तेरा स्टार है एक फास्ट पेस्ड सिंगल नाइट सिचुएशनल कॉमेडी बिल्कुल है जो पूरी तरह से लंदन के बैकड्रॉप में सेट है, तो लंदन के असली व्यूज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टोरी अजय की है जो कि राघव जुयाल है इसमें। अजय के अराउंड पूरी घूमती है ये मूवी, जो एक स्ट्रगलिंग और हाइपर एक्टिव एक्टर है और बॉलीवुड में बड़ा स्टार बनने का सपना देख रहे हैं। प्लॉट तब एक क्रेजी टर्न लेता है जब अजय एक बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाता है। उसे फैटी यानी कि संजय कपूर जो इस मूवी में है उनका नाम है संजय कपूर का फैटी नाम के एक लाउड लंदन पब ओनर और क्रिकेट बेटिंग सिंडिकेट चलाने वाला गुंडा है जो 10,000 यूरो देने होते हैं उसको फैटी को। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अजय एक छोटा सा झूठ बोलता है, लेकिन वो एक झूठ एक बड़ा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर देता है और मिसअंडरस्टैंडिंग की एक ऐसी चेन शुरू होती है जो कंट्रोल से बाहर चली जाती है। अगेन ये पुरानी स्क्रिप्ट है, अब इस स्क्रिप्ट को कुछ ऐसा बनाओ कि मजा आए। आगे देखिए, जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है लंदन के नए या कई एसेंट्रिक कैरेक्टर्स इस हंगामे में शामिल हो जाते हैं। अजय का क्लोज फ्रेंड जेडी जो कि विकल्प मेहता है इसमें, जेडी उसकी लव इंटरेस्ट रोशनी जो कि निहारिका है, फिर ये क्वर्की पैराडमिक्स जो है वो बन जाता है और एक्टर से नफरत करने वाला एक एसेंट्रिक कॉप यानी कि चंदन रॉय सान्याल भी इस मूवी में एंटर हो जाता है। एक ही रात के अंदर अजय और उसके दोस्तों को लंदन के पब्स, डार्क एलीज और बिजी रोड्स पर भाग दौड़ करके कैश अरेंज करना होता है, जबकि वो पुलिस गुंडे और फैमिली ड्रामा से बचने की कोशिश करते हैं। ये पूरा पागलपन आखिर में एक लंदन पुलिस स्टेशन के अंदर एक लाउड और कैओटिक फाइनल में खत्म होता है, वो फिनाले है पूरा, जहां सारे झूठ और मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ ओपन होते हैं। ओवरऑल स्टोरी एक फुल टाइम पास एनर्जेटिक चेज कॉमेडी है जो आखिर तक पेस मेंटेन रखती है। फिल्म की कास्ट ने अपनी जोरदार एनर्जी और डेडिकेशन से स्टोरी को लिफ्ट करने की भाई पूरी कोशिश करी है। लीड रोल में राघव ने अपनी फिजिकल एजिलिटी, क्विक बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव कॉमेडी टाइमिंग का कमाल का यूज किया है, जबरदस्त। उनका डांस

0: खैर फिर भी परफॉर्मेंस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है, हाईलाइटिंग फैक्टर रहा है. और इस लेकिन अगर आप इस नज़र से भी देखें कि मूवी में एक्टिंग अच्छी हुई है, ओवरऑल फनी होनी चाहिए तो वो फनी है, एक्टर की एक्टिंग अच्छी है, कॉमेडी रीजन बहुत सारे दिए हैं तो कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ कॉमेडी भी इस मूवी में ज़रूर आपको मिलेगी. क्रिटिक्स के बारे में बात कर लें कि इस मूवी को देखने के बाद असल में क्रिटिक्स का क्या कहना है. दोस्तों क्रिटिक्स ने भाई तेरा स्टार है को एक मिक्स्ड टू डिसेंट रेटिंग दी है और इसको एक एनर्जेटिक हाइपर एक्टिव स्लैपस्टिक कॉमेडी बताया है. फिल्म क्रिटिक्स ने राघव जुयाल की सिंसियर परफॉर्मेंस, उनकी फिजिकल कॉमेडी स्किल्स और मूवी की टेक्निकल अटेम्प्ट यानी कि कंटिन्यूअस लॉन्ग ट्रैकिंग शॉट्स की काफ़ी तारीफ की है. तो यहाँ सिनेमाटोग्राफी की भी तारीफ है, एक्टिंग की भी तारीफ है, राघव की भी तारीफ है, जो एक्टर्स हैं उनकी भी तारीफ है, फिजिकल कॉमेडी स्किल्स की भी तारीफ है और मूवी की टेक्निकल अटेम्प्ट की भी तारीफ है. अटेम्प्ट्स ऑब्वियसली यार देखो मेहनत तो सारे लोग करते हैं, एक्टर्स के बाद सिनेमाटोग्राफी साउंड वालों का नाम नहीं आता लेकिन उनकी तो मेहनत बहुत होती है. ओवरऑल क्रिटिक्स का मानना है कि लंदन की लोकेशन और फास्ट टेम्पो फिल्म को डायनेमिक बनाते हैं जो टाइम पास मूवी सीकर्स को पसंद भी आएगा. सिंगल नाइट चेज कॉन्सेप्ट जो है ऑडियंस को स्टार्टिंग से इंगेज भी रखता है और डल मोमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं. लेकिन क्रिटिक्स का काम है बुराई भी करना कि क्या इस मूवी में प्रॉब्लम रही है. दूसरी तरफ ज्यादातर रिव्यूअर्स का कहना है कि स्क्रिप्ट थोड़ी वीक है और फिल्म में जरूरत से ज्यादा शोर, शाउटिंग और ओवर द टॉप एडिट ग्राफिक्स भी हैं. मूवी कंटिन्यूस हाई एनर्जी पर चलती है लेकिन कहीं कहीं इमोशनल कनेक्ट या साइलेंट फनी बीट्स की कमी महसूस होती है जो मुझे शुरुआत से ही इस मूवी में लगा और जो मैं लगातार आपको बता भी रहा हूं. खैर सेकेंड हाफ के बारे में बात हो गई. क्लाइमैक्स तक आते आते जोक्स जो है कई बार रिपेटेटिव भी होने लगते हैं. क्रिटिक्स का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि भाई तेरा स्टार है एक वेल इंटेंशन्ड लाइट हर्टेड टाइम पास कॉमेडी फिल्म है. अगर आप अपना दिमाग साइड में रख कर एक फास्ट स्टाइलिश और फन फिल्ड बॉलीवुड मसाला नाइट राइड इंजॉय करना चाहते हैं तो ये फिल्म एक बार देखने के लिए बहुत अच्छी है. तो ओवरऑल वर्डिक्ट इस मूवी का क्या है इस पर भी बात करें तो सिंपल सा ये है कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए. 35-40 रियाल का जो खर्चा है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. उसका रीज़न ये है कि राघव की जो टाइमिंग है वो ज़बरदस्त है, निहारिका नई लड़की है उसको भी बॉलीवुड में काम मिलना चाहिए, उसने भी काम अच्छा किया है. फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. इस खास मूवी में हमने बहुत सी बातें कर ली अभी तक कि फिल्म का मूड कैसा रहा है, हाइप इसकी बहुत ज्यादा अच्छी थी, लोग इंतजार कर रहे थे राघव की इस फिल्म का. 5 में से 3 स्टार रेटिंग है इस मूवी को. फन फैक्ट्स इस प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी. डायरेक्टर का विजन, डायरेक्टर ने हिम्मत दिखाई और बहुत से कम लोगों में मैंने ये देखा है. फिर एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी के बारे में हमने बात करी और अगर आपने सुन लिया हो तो बहुत ही अच्छा है. स्पॉइलर फ्री प्लॉट पर भी हमने डिस्कस किया, बात किया. अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा. डिस्कशन ऑफ द परफॉर्मेंस, हमने परफॉर्मेंस पर भी डिस्कस किया एंड देन फाइनली क्रिटिक्स का क्या कहना है उस पर भी आपने आखिर में सुन लिया होगा. इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए शो पर, बात करते हुए, बहस करते हुए, सिनेमाटोग्राफी से लेकर वर्डिक्ट तक सब कुछ आपको एक नई मूवी के बारे में पता चलेगा अगले हफ्ते इसी शो में. तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी.
1: एब्सोल्यूट सिनेमा.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: Well, salam adab, a very very good morning and welcome to the show called Qatar Business 360. Main hoon aapki dost, aapki host Nazia. Dosto, ye show Qatar ki business community ki successful leaders, entrepreneurs, industry experts ki inspiring story aur unke businesses aap tak pahunchata hai. हम यहाँ उन लोगों से मिलते हैं जो अपने विजन, लीडरशिप और इनोवेशन के जरिए कतर की इकोनॉमी और बिजनेस लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो हर बिजनेस की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। इट्स ICT, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशंस इंडस्ट्री।

0: वेल, आज के इस डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन नहीं रही, बल्कि हर बिजनेस की ग्रोथ का इंजन बन चुकी है। चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, रिटेल हो या गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह टेक्नोलॉजी का रोल दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। कंपनीज को एफिशिएंट बनाने, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने और ऑपरेशंस को स्मार्ट बनाने के लिए एडवांस्ड आईसीटी सॉल्यूशंस की जरूरत है, और इसीलिए आईसीटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज आज बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये कंपनीज बिजनेसेस को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी, कस्टमर कॉन्टैक्ट सर्विसेज और मैनेज सर्विसेज और साथ ही डिजिटल इनोवेशन के जरिए फ्यूचर रेडी बनाती हैं। अगर मैं बात करूं कतर की, तो कतर में जब टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है स्टारलिंक कतर का। ये नाम एक अहम नाम के तौर पर जाना जाता है। रिया स्टारलिंक कतर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी सॉल्यूशंस, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए कई ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आज हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर रही है, इनोवेशन का फ्यूचर क्या है और लीडरशिप क्या रोल है, किस तरह का रोल प्ले करती है आज की इस रैपिडली चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड में। आज इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक डायनेमिक लीडर, स्ट्रेटेजिक थिंकर और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। वेल दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सिरिल आनंद, जो कि सीईओ हैं स्टारलिंक कतर के। मैं कह सकती हूँ मिस्टर सिरिल आनंद के पास टेलीकॉम और आईसीटी इंडस्ट्री में 24 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आपने अपने करियर के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट और लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली लीड किया है। आपकी लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक विजन ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रोथ और इनोवेशन के नए मकाम तक पहुंचाया है। वेल, देखा जाए तो सीईओ के तौर पर उनका फोकस इनोवेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस, एआई एडॉप्शन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए स्टारलिंक को टेक्नोलॉजी सेक्टर में मजबूत मकाम दिलाना है। यहाँ मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हार्वर्ड एलमनस होने के साथ साथ वो एक कमाल के लीडर और एक बहुत ही हम्बल पर्सन है। बिजनेस की ग्रोथ और बिजनेस को समझने की जो सलाहियत है वो आप में बहुत ही एक्सेप्शनल है। सीईओ के तौर पे आपका काम रियली अप्रिशिएटेबल है।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: Today we are at the Starlink company and it's an honor and privilege for me to connect with the CEO of Starlink company, Mr. Cyril Anand. We welcome you to Qatar Business 360.
2: Thank you, Nadia, for giving me this opportunity to connect with your audience and share whatever I've learned through these years of reaching here.
0: Pleasure to have you on this show. Well, we believe that, you know, every company starts with a vision. So what was the vision of yours behind this company and how has that vision evolved as the company has grown into what it is today?
2: So not many people know this, but Starlink is a 20-year-old organization, and I've been at the helm only for the last 2 years. So there's a lot that kind of went in 20 years back when the founders of Starlink thought about bringing organized retail in consumer electronics market. Oh. So 20 years back, mobile phones were just getting started. Either you could go to a service provider to buy a mobile phone, the range of phones were limited, or you had to kind of go to a hypermarket or a supermarket. So there was no specialized store which only retailed mobile phones. So that was the founder's vision initially. And eventually we expanded from just being a retail outlet for consumer tech to being a BPO service provider to becoming an ICT distributor. So today we have a portfolio of services, not just retail, which we are known for, but a whole host of other services which we provide to our B2B customers.
0: Oh, great. Fantastic. That was a very clear cut mission. Okay, leaders like you, we believe that you know the art of translating, you know, setbacks into opportunities.

0: से बने हैं, अपने स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजंस लेने की सलाहियत से बने हैं। मिस्टर सिरिल ने इंटरव्यू में हमें बताया कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर बिजनेस की ग्रोथ का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है। आपके मुताबिक इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। आपने लीडरशिप के हवाले से कहा कि स्ट्रॉन्ग टीम्स और क्लियर विजन और कंटीन्यूअस लर्निंग बिजनेसेस की जो स्ट्रेटजीज हैं, वो कहीं ना कहीं कंटीन्यूअस ग्रोथ का हिस्सा बनती हैं। पर मिस्टर सिरिल ने यहाँ ये भी हाईलाइट किया कि जिंदगी में फेलियर्स तो आते हैं, चैलेंजेस तो आते हैं। फिर उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरह से वो ग्रेड 9 में एक बार फेल हुए, लेकिन क्या उस फेलियर ने उनकी कामयाबी की जर्नी में किसी तरह की कोई रुकावट खड़ी की? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, डेडिकेशन और एक फोकस्ड और पॉजिटिव स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो है वो इंसान को आगे बढ़ाती है। आपका सभी यूथ को यही पैगाम है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कामयाबी जो है वो किसी ये तरह से शॉर्टकट से आपको नहीं मिलती, और अगर शॉर्टकट से मिल भी जाए तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। यहाँ पर एक लाइन जो मैं कह सकती हूँ इस इंटरव्यू की बेस्ट टेक अवे थी, वो ये जहाँ पे हमारे CEO ने हमसे कहा कि आई रियली डोंट लिसन टू रिस्पॉन्ड, आई लिसन टू अंडरस्टैंड। और ये किसी भी शख्स को लीडर बनाता है। ये अप्रोच जो है ना, अपने आप में एक लीडरशिप अप्रोच है। अपनी टीम को समझना, उनकी बात को समझना, क्लियर विजन होना, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस लर्निंग का एक मजबूत पिलर है। आपका फोकस स्टारलिंक कतर को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और AI के जरिए और ज्यादा इफिशिएंट और फ्यूचर रेडी बनाना है। आपका पैगाम भी ये था कि बिजनेसेस को हमेशा कस्टमर की नीड समझ के उसे तैयार करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि ग्रोथ और इनोवेशन के इनेबलर के तौर पर देखा जाना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइज करके बताऊं तो ये इंटरव्यू लीडरशिप, मोटिवेशन, इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही किस तरह से पर्सनल अपने लाइफ के हर्डल्स और चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ने के लिए हमें और आपको बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फ्यूचर पर हमारे गेस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से बात की। आपने बताया कि ये दुनिया ऐसी है जहाँ टेक्नोलॉजी के चलते बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और बहुत सारे चेंजेस भी हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इन चीज़ों को किस तरह से अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं कह सकती हूँ आज मिस्टर सिरिल से बात करके मैंने तो बहुत कुछ सीखा। उन्होंने दिल से बात की और हम भी उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी उन्होंने वक्त निकाला और अपने कीमती एक्सपीरियंसेस और अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, और ऐसे लीडर्स हमें दिखाते हैं कि इनोवेशन और विजन के जरिए किस तरह नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। यहाँ मैं तमाम व्यूअर्स को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी जो आप हमारे साथ जुड़े। वेल, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए बिजनेस, एक नए लीडर और एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया से कनेक्टेड रहिए एंड स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी।
1: प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
4: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइकिलिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास

0: के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
3: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी।

0: यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन।
1: आज ही हमारी लिस्ट हम लीक नहीं होने देते हैं। वेलकम टू टॉप 10 दिस वीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड यस वेलकम टू टॉप 10। ये लिस्ट बहुत मुश्किल है भाई, हम लीक कैसे करेंगे? हम शो बनाते बनाते भी इसमें हजारों चेंजेस कर चुके होते हैं, क्योंकि आपके मैसेजेस, फिर हमारा ऑफिस का डिस्कशन, हम भी तो भाई, हमें भी तो गॉसिप चाहिए, तो हम इन गानों को लेके बैठते हैं अपने साथ इस लिस्ट को और तैयार करते रहते हैं। कोई गाना लिस्ट से बाहर निकालते हैं, कोई गाना लिस्ट में ले आते हैं, कुछ गाने ऐसे थे जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, कुछ गाने ऐसे जो आप बोलते हैं ना जी ना वो गाना तो नहीं चलाया आपने, तो फिर ये तमाम जोड़ भाग लगा के हम आज के लिए तैयार करके लेके आए, मैंने जोड़ा घटाया गुणा भाग किया और अब मैं लेके आया हूँ। कमाल की लिस्ट है और पूरी रिफ्रेश हो गई भाई, पूरी लिस्ट चेंज हो चुकी है, बस कुछ ही गाने हैं जो लिस्ट में पहले से बने हुए, बिकॉज तूफान आया है गानों का इस हफ्ते, तूफान। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद है। प्लीज गेट इन टच विद अस, आपका कोई भी गाना हो जो लिस्ट में नहीं शामिल हुआ है या आपकी पोजीशन, आपको लगता है कि उसकी पोजीशन बदल सकती है, तो हमें जरूर जरूर बताएगा। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, एक से बढ़कर एक गाना मौज आ जाएगी भाई। आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आज का एपिसोड शुरू करेगा 10, 9 और 8 जैसे हम करते हैं, उसके बाद 7, 6, 5 फिर 4, 3, 2 और लास्ट में टॉप गाना ऑफ दिस वीक। ठीक है, तो शुरू करें 10वें नंबर से। चलो जी, 10वें नंबर पे जो गाना है ये है मुसाफिर कैफे से तेरा हुआ साहिबा, विक्रांत मैसी, वेदिका, महिमा, गर्वित, प्रियांश, हंसिका और अनिकी। देखिए विक्रांत मैसी है इस पिक्चर में, एक रीजन मिल गया इस मूवी को देखने का, हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस रिसेंटली थोड़ी सी पर इसमें हो सकता है कि अच्छी जाए। ये तेरा हुआ साहिबा जो गाना है, मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूँ। असल में मुझे

0: जो पॉप गाने होते हैं, स्लो गाने होते हैं, मैं नहीं सुनता, मेरा टेस्ट नहीं है उस तरीके का. ज्यादा मीठे गाने बर्दाश्त नहीं होते हैं, लेकिन ये वाला गाना यार अच्छा है. अच्छा, आई हैव टू से, कुछ गाने होते हैं ना, हो सकता है आपके टेस्ट के ना हो, बट यू स्टिल से ये बढ़िया तो है. तेरा हुआ साहिबा जो हुक है इस गाने का वो कमाल का है, और जब आप वीडियो देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि उन्होंने जो जो लिरिक्स में है वैसा वैसा उन्होंने पूरा सीन बाय सीन दिखाया भी. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, ये गाना ओरिजिनल है. थैंक यू सो मच बॉलीवुड कि आपने गाना इस बारी 2.0, 3.0, रीमेक, रीडक्स कुछ नहीं दिया. ये गाना एब्सोल्यूट ओरिजिनल गाना तेरा हुआ साहिबा, विक्रांत, मेसी, वेदिका और महिमा इसमें फीचर करें. एंड इट इज अ माइंड ब्लोइंग ट्रैक, एटलीस्ट उनके लिए जिनको प्यार मोहब्बत के गाने सुन रहे हैं. इसकी जो हुक लाइन है वो आप गुनगुनाते रह जाएंगे, क्योंकि बाकी लिरिक्स पर ध्यान देने के लिए पहले गाना आपको हुक तो करे, और गाना आपको रोकेगा कैसे, अपनी हुक लाइन से. तो तेरा हुआ साहिबा जिस तरीके से गाया गया है, ओरे रे रे रे, दम मक्खन. और उसके बाद लिरिक्स पे आपका ध्यान जाना शुरू होगा, एंड यू विल स्लोली स्लोली फेल इन लव विद द ट्रैक. सो ये है मुसाफिर कैफे से तेरा हुआ साहिबा, गाना नंबर 10. ओके, गाना नंबर 9 पे जाते हैं. ये गाना जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे खेले जा रहा है, हर रील में नजर आ रहा है. हर रील में भाई कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई ऐसा फ्लेक्स वाली रील बना रहा हो, कोई कुछ ऑरा फार्मिंग कर रहा हो, कुछ भी रील हो, उसमें ये गाना जरूर नजर आ रहा है, जरूर नजर आ रहा है. ये गाना लिस्ट नहीं छोड़ने वाला है. अभी गाना है बूम शाकलाका और के आर डोर साइन कृष्णा, और साथ में डांडा भाई हमारे, डांडा नियोली, और इन दोनों ने इस गाने में क्या परफॉर्मेंस दी है भाई साहब. मुझे लगा था शायद आने वाले हफ्तों में ये गाना लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन नहीं. पहले ही मेरा पर्सनल फेवरेट था, बट नाउ एवरीबॉडी लाइक्स इट अपेरेंटली. अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि ये गाना तो भाई बढ़िया है, ये गाना चलना चाहिए, डंडा भाई गाना. कृष्णा ने इसमें बहुत जबरदस्त रैप किया है, काफी इंटरक्रेट राइमिंग्स करी हैं. जो हिप हॉप को समझते हैं वो कहेंगे कि समझ तो नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है. असल में यही कॉम्प्लीमेंट इस गाने को मिलता है कि समझ तो नहीं आ रहा लेकिन अच्छा लग रहा है. मगर इस बार बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि दो रैपर्स एक ही ट्रैक पर रैप कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं. भाई क्या रैप किया है ढांडा ने, क्या रैप किया कृष्णा भाई ने, दोनों भाइयों ने, भाई दोनों भाई दोनों, तो भाई जबरदस्त ट्रैक बूम शाकलाका विद फास्ट पेस रैप एंड अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग बैकड्रॉप, हरियाणा की वाइब्स. और इसमें जो है कृष्णा भाई ने भी थोड़ी सी हैरानी बोल दी है, हालांकि गुड़गांव के बोलते ही होंगे, ब्रिटिश और सेमी कड़ाऊ के पार्ट लगा तो बोल बूम शाकलाका, बड़ा मजा आ गया. फिर ढांडा भाई ने जो रैप किया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू रैप फास्ट. मुझे लगा नहीं था कि ढांडा भाई, क्योंकि वो ढांडा न्योली वाला यूजली वो मेलोडिक रैप बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो बड़ी जबरदस्त वाइब आती है जब वो हार्ड हिटिंग रैप बनाते हैं. एंड पीपल कॉल हिम सिद्धू मूसेवाला फ्रॉम हरियाणा बिकॉज ही हैज दैट ऑरा, एंड इट इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम. तो बूम शाकलाका इज एट नंबर 9. अगर आप रील वील बना रहे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड दिखाने का है क्या, तो बाबा ये गाना लगाने का एक नंबर है गाना, क्या बूम शाकलाका एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट. अब जरा गाना नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं. आई एम सुप्रीमली इम्प्रेस्ड बाय दिस ट्रैक. 8वें नंबर पे वो गाना है जो हमारे पड़ोसी मुल्क से, हमारे एज इन ऑल द इंडियंस, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है ये गाना. बहुत खूबसूरत गाना है, एंड द अमाउंट ऑफ लव पीपल आर गिविंग टू दिस ट्रैक इज अनरियल. और ऊपर से लिरिक्स इतने खूबसूरत हैं, गाया बहुत खूबसूरत है, मतलब मखमल आवाज में. जोहा वसीम और अर्शमान नईम हैं इसमें. गाने का नाम है दूर वे. तो दूर की जो स्पेलिंग है इसमें DWR है rather than DOOR. I don't know, for some reason they have kept it. So दूर वे ये जो गाना है, नाम से लग रहा होगा आपको बड़ा ही सैड गाना होगा, ये होगा वो होगा. अब सुन के देखिए, अभी सुनाएंगे ना आपको, क्या बीट है, क्या गाना है. एंड जब भी पाकिस्तानी सिंगर्स अपनी पे आते हैं भाई, दिखा देते हैं दुनिया को हमारे पास है बढ़िया करके टैलेंट. मौज आ गई भाई. तो तमाम पाकिस्तानी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज दिस सॉन्ग हैज मेड इट टू द लिस्ट 8वें नंबर पे, और बहुत खूबसूरत गाया है. अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक. ये मैं सोचिएगा कि लिस्ट में अभी आसिम अज़हर नहीं है तो उनका गाना अच्छा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है. हम उन दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो अभी लेटेस्ट गाना लॉन्च कर चुके हैं, एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब. एंड दैट्स वाई दिस सॉन्ग दूर वे इस लिस्ट में मौजूद है, विच इज एट नंबर 8. तो जोहा वसीम और अर्शमान नईम की आवाज, दिस इज पाकिस्तानी पॉप सिंगर एंड द म्यूजिक इज जस्ट बियॉन्ड क्रेजी. तो सुनिए गाना. ऑलराइट, तो मैं लिस्ट को एक बारी रिवाइज कर दूं, उसके बाद मिलेंगे कुछ देर में. सो गाना नंबर 10 है मुसाफिर कैफे से, 13 हुआ साहिबा, नंबर 9 पे है बूम शाकलाका कृष्णा और ढांडा नियोलियाला, और 8 पे है दूर वे जोहा वसीम और उस्मान नईम की आवाज में. अब इस आएंगे तो फिर 7, 6 और 5 की सीढ़ी पे चढ़ेंगे भाई, ठीक है, जाना किधर भी नहीं है. स्टैचू
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back, assalamu alaikum. मैं दूँ हवाला कबीर FM 107 पे. This is Top 10 this week. And this week कौन सा गाना ऊपर जाएगा, कौन सा गाना नीचे जाएगा, कौन सा गाना लिस्ट से बाहर जाएगा, इस हफ्ते अगले हफ्ते यू डिसाइड. और क्या भाई, मैं क्यों करूँ सारे काम, आपके ऊपर है भाई साहब. तो सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar एंड वी वुड रियली लव टू हैव यू देयर. हमारी सोशल मीडिया की फैमिली आपसे ही है, आप ही हैं सब कुछ. तो प्लीज उनसे जुड़िए और हमें भी गाने बताते रहा करें. सो अभी गाना नंबर 10, 9, 8 हो चुका है, अब गाना नंबर 7 की बारी है. दिस इज अ वेरी डिफरेंट ट्रैक, वेरी डिफरेंट ट्रैक. मैंने एक इंटरव्यू देखा था ढांडा न्योली वाला का, और उसमें वो बात कर रहे थे कि ऐसा गाना बनाने का उनका मन है कि लोग उसमें झूम भी जाएं और उसके जज्बात भी पकड़ लें. अक्सर जो पार्टी नंबर्स होते हैं उनमें आपको पार्टी करने के लिए कहा जाता है, नाचो और नाचेंगे सारी रात सोने वे, ये सारे गाने जो हैं. बट कुछ गानों में लिरिक्स भी होते हैं, कुछ गाने EDM भी होते हैं, उसके बावजूद दे जस्ट टच योर हार्ट. और ये गाना उनकी लेटेस्ट EP से है और गाने का नाम है दिल दे बैठे. ऐसी शायरी करी है भाई ने इसमें, और कागज जला दिए भाई, कागज जला दिए ढांडा भाई ने. इतनी बढ़िया राइटिंग करी है इस गाने में जिसकी हद नहीं. हालांकि गाने का जो म्यूजिक है वो EDM है. आप जब गाड़ी में चलाएंगे फुल बेस पे तो आपको अंदाजा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज यू विल लव द म्यूजिक एज वेल. म्यूजिक अलोन डज द जॉब, मगर ऊपर से ढांडा भाई के जो उसमें लिरिक्स हैं जो चिपक के गाने से चल रहे हैं. बिकॉज अक्सर क्या होता है कि जो रिवर्स इमोशन लिखने की बारी आती है, बिकॉज आई हैव ट्राइड, आई कैन ऑल्सो राइट फ्यू सॉन्ग्स, आई हैव रिटन फ्यू सॉन्ग्स. और उसमें दिक्कत क्या आती है कि जब आप अगेंस्ट द इमोशन जाके लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी बीट जो बहुत ज्यादा पैपी है, आप उस पर सैड गाना लिखेंगे, सो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ इंटीग्रेसी, और उसमें कुछ किस्म का आपके अंदर एक अलग स्किल सेट होना चाहिए, तब आप ये कर पाएंगे. तो ट्रैक EDM है, बड़ा प्यारा है, लेकिन उस पर जो गाना है, जो लिरिक्स बिठाए हैं ढांडा भाई ने, वो उससे 10 गुना ज्यादा बढ़िया टिकाए हैं. और गाने का नाम है दिल दे बैठी. और हाँ, वीडियो भी बड़ा चंगा सीखा भाई, वीडियो भी बहुत बढ़िया है. ऑलराइट, गाना नंबर 6 की तरफ हो जाते हैं. अब मैं गाना नंबर 6 पे जब आ गया तो उनकी तारीफ करना चाहूंगा जिनकी तारीफ में मुझे बहुत पहले बहुत कुछ कह देना चाहिए था. आई एम नॉट लेट फॉर द पार्टी, पर इनकी तारीफ में जरूर करूंगा. कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनकी अदायगी, मौसिकी उनकी उम्र के साथ नहीं जाती. वो कितने भी साल इंडस्ट्री में काम कर लें, दे रिमेन द सेम. उनके लिए पब्लिक का प्यार भी वैसा का वैसा ही रहता है, पब्लिक भी उन्हें नहीं भूलती, और जब भी आते हैं तबाही मचा देते हैं. वन ऑफ अ काइंड सिंगर्स ये होते हैं. जैसे कि मैंने रिसेंटली सेम बात आतिफ असलम के लिए कही थी. आतिफ असलम कैन सिंग आदत एवरी सिंगल ईयर इन अ कॉन्सर्ट एंड इट विल स्टिल बी अ हिट. कुछ लोग जो हैं वो गिफ्टेड होते हैं इस चीज़ के लिए, यू नो, उनके टैलेंट में कभी जंग नहीं लगता, उनकी आवाज़ में जंग नहीं लगता. जैसे अरिजीत सिंह है फॉर एग्जाम्पल, हमारी तरफ भी आ जाते हैं. अरिजीत सिंह की बात करूँ तो अरिजीत सिंह ऐसे है कि वो कोई भी गाना गा देंगे, आप बोलेंगे भाई इसने दिल लगा के गाया है, इसे मैं कैसे नापसंद कर सकता हूँ. एंड वही हाल एक और सिंगर का है जिसका गाना ये नंबर 6 पर है, जो कि है जैक नाइट का क्या तेरी. क्या तेरी आंखों ने ढूंढा मुझे. तो क्या तेरी जो गाना है ये, एक तो मैं तारीफ करना चाहूंगा जैक नाइट की, बिकॉज उन्होंने अपना स्टाइल पब्लिक के कहने पे चेंज नहीं किया, वो एकदम फिट है उनके स्टाइल पे. उनके स्टाइल के बारे में एक और चीज है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता, यू कैन नॉट कॉपी हिज स्टाइल. ना आवाज कॉपी कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, बंदा अलग ही दुनिया में है, अलग लेवल पे उड़ रहा है वो. ये गेमिंग दुनिया में कहते हैं ना भाई, साइड क्वेस्ट कर रहा है, मेन मिशन तो कब का कर चुके. और गाना जो शूट किया गया है वो भी बड़ा जबरदस्त है. मुझे पहले लगा है कि असली जंगल में तो नहीं चले गए, क्योंकि वो जो उन्होंने शूट किया है, इफ इट इज रियल, और वो स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा वो इफेक्ट से किया है असली जगह पे गए थे ये, बिकॉज़ आई थिंक असली जगह पे गए ये. बहुत अच्छा शूट किया है यार, बहुत अच्छा शूट किया है. आई लव द लिरिक्स. गाना ये भी सैड सा है पर फिर भी आपको खुश कर देगा एंड आपके इमोशन को जरूर जगा देगा. जो नहीं याद आने वाला है वो भी आपको याद आ जाएगा ये गाना सुन के. एंड जैक नाइट की जो आवाज़ है, वो जो फ्लो करती है बीट्स के साथ, इट्स जस्ट अमेजिंग. ये एक गॉड गिफ्ट है, कुछ लोगों के पास होता है, उनके गले में ही एक तोहफा छुपा होता है, वही इनके साथ है मामला. सो क्या तेरी, जैक नाइट एट नंबर 6 ऑन द लिस्ट. अब जरा गाना नंबर 5 पे आ जाए, थोड़ा रुक के आते हैं, है ना. जब तक आप जाइएगा नहीं क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स आपके लिए अभी भी ओपन है, ओपन रहेंगे दरवाजे हमेशा क्योंकि आप ही का घर है भाई। तो FM 107 Qatar मिलते हैं बाकी के गानों के साथ, जाइएगा नहीं। दिस इज टॉप 10 ओनली ऑन FM 107, स्टे ट्यून्ड।
0: FM 107 टॉप 10 नंबर 7।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें.
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
5: FM 107 टॉप 10.
6: वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम. मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे. एंड जरा रिवीजन कर लें टॉप 10 दिस वीक में. अभी हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां मेरा भी दिल धक धक करने लग जाता है, बिकॉज अब मिडिल ऑर्डर की बारी आ चुकी है. पहले गाने रिवाइज कर लेते हैं. तो गाना नंबर 10 पे रहा मुसाफिर कैफे से 13 हुआ साहिबा. अमेजिंग हुक, विक्रांत मसीह है इसमें, वेदिका एंड महिमा है. उसके बाद नंबर 9 पे बूम शाकलाका केयर डॉलर साइन विद अमेजिंग फ्लो, और फिर ढांडा भाई ने तो आगे ला दी भाई. इसके बाद नंबर 8 पे दूर वे जोहा वसीम और अश्मा नईम, अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम पाकिस्तान. बहुत अच्छा लगा मुझे ये ट्रैक, कुछ है इसके अंदर, वाइब है. एंड उसके बाद गाना नंबर 7 है दिल दे बैठी, अगेन ढांडा भाई का गाना. EDM पे प्यार बड़े भरे लिरिक्स, बड़े बड़े लिरिक्स. एंड उसके बाद गाना नंबर 6 है समवन हु आई रियली रियली थिंक इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ अदर सिंगर्स इन हिज कैटेगरी, बिकॉज उनका कोई एज अ फिक्स्ड जॉनरा नहीं है. जैक नाइट कैन सिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रैक्स, लॉट ऑफ डिफरेंट इमोशन. सो जैक नाइट विद क्या तेरी, लवली ट्रैक ऑन नंबर 6 ऑन द लिस्ट. अब जरा आगे बढ़ते हैं, गाना नंबर 5 की बारी आ चुकी है. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दीज ट्रैक्स आर मेड, क्योंकि मैं तंग आ चुका था रीमेक से. ऐसा हो गया था भंगड़ा वाला, कोई भंगड़ा पौने पौन ले कोई ट्रैक आएगा तो वो ऐसा ही होगा कि वो किसी गाने का कॉपी होगा. एंड आई वाज डन, मुझे लगा था बॉलीवुड को ये भी भंगड़ा ट्रैक ले आएगा. और राघव हैं इसमें, राघव जोहल, तो हो सकता है कोई बॉलीवुड का पुराना गाना है. बट दैट डिडंट हैपन. एंड गाना बहुत बढ़िया है, भाई तेरा स्टार है मूवी का नाम है. आपने ट्रेलर देख लिया होगा, बहुत सारे गाने भी लॉन्च हैं, उनमें से एक गाना है नचले ललारिया. तो नचले ललारिया जो गाना है बहुत बढ़िया.

0: हुक स्टेप है, कॉपी करना तो बहुत ही मुश्किल है, पर राघव ने पूरी जान डाल दी है भाई डांस में, पूरी जान डाल दी है, और ये गाना पार्टीज की शान डेफिनेटली बनने वाला है, डेफिनेटली बनने वाला है। और अगर गलती से दूल्हे के दोस्तों ने इस गाने के स्टेप रट लिए तो भाई शादी में परफॉर्म होना बनता ही बनता है। तो कोरियोग्राफर्स जाग जाओ, यही आपके पास मौका है, लोगों को जरा सिखाई, जैसे स्लो मोशन में बाकी गानों के स्टेप सिखाए जाते हैं, इसके स्टेप सिखाना तो बनता है। तो नच ले ललारियां जो गाना है भाई तेरा स्टार है से, ये है एट नंबर 5 इन द लिस्ट, डेफिनेटली अ बैंगर, डेफिनेटली अ सॉन्ग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड राघव की मेहनत और कोरियोग्राफी पूरी तरह से नजर आ रही है इसमें, एंड आई लव दिस ट्रैक, सो दिस इज एट नंबर 5 ऑन द लिस्ट। एंड अगले गाना जो है, अगले गाने की तारीफ तो मैं कर करके थक गया हूं और हफ्ते की तारीफ करता हूं, अब मैं क्या नया कह दूं, क्या नया कह दूं इस गाने के बारे में, ये गाना रुक ही नहीं रहा भाई, वायरलिटी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मुझे इसी बात का डर रहता है किसी सिंगर का गाना जो बिल्कुल इतना वायरल हो जाए कि उसका ऐसा लगे आखिरी गाना है, फिर वो नया गाना बनाता है तो लोग बड़ी ही तकलीफ के साथ एक्सेप्ट करते हैं, बट आई रियली होप कि ऐसा ना हो। चरणप्रीत भाई ने ये गाना बनाया, साथ में बादशाह ने रैप किया, बादशाह भाई तो निकल लेंगे, उनका तो करियर अलग टेंजेंट पे, पर चरणप्रीत का गाना ये बन जा तू मेरी,
1: बन जा तू मेरी, बन जा, बन।
0: इतनी रील्स आती हैं आज भी यार इसकी, आज भी इतने लोगों ने रील्स बनाई है इसके हुक स्टेप पे। दिव्या गोयल जो इसकी कोरियोग्राफर है, उनकी तो लॉटरी लगी हुई है, लॉटरी भाई, लॉटरी उनकी कोरियोग्राफी का, उनका जो डांस स्कूल है वहाँ पे भर भर के लोग जा रहे हैं, जहाँ ये एक बार रिकग्नाइजेशन चाहिए होता ना, एक बार किसी ने आपको पहचान ली, एक बार आप हिट हो जाइए, होता ना लाखों नाकामियां आप झेल लीजिए, क्योंकि आपको हिट एक ही मरतबा होना है बस, और दिव्या गोयल के साथ वही हुआ। इतने लंबे करियर के स्पैनिंग ओवर आई थिंक 10 years, आई डोंट नो, इसके अराउंड ही है, एंड शी गॉट दिस वन, एक ऐसा हिट जिसको टॉप करना उनके लिए भी मुश्किल है, गाने के मेकर्स के लिए भी मुश्किल है, और हुकलाइन जो गाई है चरणप्रीत ने वो तो आइकॉनिक है भाई, आइकॉनिक है, वन ऑफ द बेस्ट हुकलाइंस एवर हर्ड इन अ सॉन्ग। एंड साथ में आसी जो इसमें परफॉर्म कर रही हैं, जिनका चेहरा हमेशा छुपा हुआ रहता है, वो परफॉर्म करती हैं, उन्होंने भी इसमें जान लगा दी है, एन अमेजिंग अमेजिंग कोरियोग्राफी, अमेजिंग हुक स्टेप, एवरीथिंग इज जस्ट 10/10 फॉर मी। तो बन जा तू मेरी एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट। आज ही नंबर 3 पे आ लिए भाई, नंबर 3 पे मामला थोड़ा केड़ा हो गया है, नंबर 3 पे आ लिया हमारा भाई डांडा न्योली वाला विद जगाने, ओ मारे कोई ना ठिकाने,
1: राखू भर के जगाने मारे कोई ना ठिकाने।
0: ये गाना लिरिक्स वीडियो एंड इसलिए भी हिट हुआ है क्योंकि लोगों को चाहिए मसाला बिग बॉस वाला। तो डांडा भाई का शुरुआत में इस गाने, मतलब इस पूरी ईपी से पहले एक से बीफ हो गई थी, आई डोंट टेक द नेम, एंड डांडा भाई से जब पंगा ले लिया है तो डांडा भाई गाने में कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, और उन्होंने बड़े ही प्यार से बड़ी प्यारी जुबान में सब कुछ बोल दिया है। पर साथ ही साथ जो एक लाइन इस गाने की बड़ी फेमस हो रही है, लोग अक्सर ये गाना चलने के बाद मुझे मैसेज करके बताते हैं, वो लाइन है कि बेटी चाहे दुश्मन की हो मारे घर महफूज मिलेगी। भाई आप समझ रहे हैं डेप्थ ऑफ दिस लाइन ओनली, ये लाइन अलोन कैन मेक दिस सॉन्ग हिट, देयर इज नो नीड ऑफ सेइंग एनीथिंग एट ऑल, मगर टू हैव अ बीफ विद समबडी एंड टू बी रियली रिस्पेक्टफुल, डांडा भाई वी सल्यूट यू मैन, वी सल्यूट यू, एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट एनिमल, एक वो भूख है डांडा न्योलीवाला में जो बहुत कम सिंगर्स में नजर आती है, एंड हरियाणा हिप हॉप को, हरियाणवी हिप हॉप को जिस मुकाम पर वो लेके चले गए हैं, इट्स जस्ट कमांडेबल। तो इसीलिए उनकी मेहनत को देखते हुए, इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इस गाने के लिरिक्स को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये गाना आ चुका है नंबर 3 ऑन द लिस्ट, जगाने। ऑलराइट, लौट के आइए फिर बताते हैं गाना नंबर 2 और 1 यानी टॉप पे कौन सा है, स्टे ट्यून्ड।
2: FM 107 टॉप 10 नंबर 5।

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड अब हम उस मुकाम पे आ चुके हैं जहाँ पे बस अभी दूल्हे को सहरा पहनाना है, बस बहुत हो गया। बेचारा दूल्हा बहुत देर से बैठा हुआ है गर्मी में। तो गाना नंबर 10 से लेकर 3 तक क्या माहौल रहा वो समझा देता हूँ टॉप 10 दिस वीक में। गाना नंबर 10 रहा मुसाफिर कैफे, 13 हुआ साहिबा विक्रांत मैसी वेदिका माहिमा, नंबर 9 पे भूम शाकला का कृष्णा और ढाणा न्यूली वाला भाई, एंड की बात है नंबर 8 पे दूर वे जोहरा जोहा वसीम एंड अर्शमान नाइम, एंड की बात है दिल दे बैठी गाना है डांडा न्योली वाला का एट नंबर 7। नंबर 6 पे है क्या तेरी जैक नाइट की आवाज में। नंबर 5 पे है नचले ले लारियां भाई तेरा स्टार है से, अमेजिंग ट्रैक अगेन एंड बहुत जबरदस्त कर रही कोरियोग्राफी है। इसके बाद नंबर 4 पे है बन जा तू मेरी चरणप्रीत और बादशाह एट नंबर 4 टिके हुए हैं, वेल डन गुड जॉब। नंबर 3 पे आ चुका है जगाने मारे कोई ना ठिकाने, भाई गाने का मन कर जाता है क्या करूं, सॉरी फॉर माय बैड वॉइस। जगाने भाई ढाणा न्यूली वाला इज एट नंबर 3 ऑन द लिस्ट। अब टॉप 2 की बारी है। ओके, सो नंबर 2 पे जो गाना है ये गाना धीरे धीरे लोगों पे चढ़ा है। अब लोगों ने शुरुआत में गाया तो 11 का कॉपी लग रहा है सईद कादरी साहब की आवाज में। सईद कादरी लिखते बहुत जबरदस्त है, उनकी शायरी इज जस्ट समथिंग एल्स। तो ये जो गाना है वे जुनून मुझे बहुत पसंद आया, और ये गाना ऐसा कि धीरे धीरे चढ़ता है जुबान पे, एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे ये तो सैयारा वाई बारी। हाँ आ रही है भाई, क्या करें, गाने की थीम मतलब फिल्म की थीम ही वैसी है, मगर जस्ट लिसन टू दिस ट्रैक वन ऑन और टू टाइम्स एंड फिर अपनी गाड़ी में तसल्ली से चलाएंगे, इस बात की गारंटी है। ओके, तो गाना नंबर 2 है वे जुनून फ्रॉम द मूवी आवारा पन 2।
0: FM 107 Top 10 Number 2.

0: FM 107 Top 10.
1: All right, gana number 1 ki bari aa chuki hai finally. गाना नंबर 1 उसी फिल्म से है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने वाली, वो फिल्म जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फर्स्ट डे लास्ट शो आपका भाई देखने को तैयार है, बस सारे दोस्त साथ देने. सो आवारापन 2 से गाना, ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज में इज एट नंबर 1 बिकॉज ये गाना डिजर्व करता. अरिजीत सिंह हैज किल्ड इट विद द वोकल्स, पता लग रहा है. वो कह रहे थे ना, मैंने अपने गले को तैयार किया है, तोड़ा है, वापस जोड़ा है, बहुत सारी उन्होंने बातें करी. उस टाइम लगा था कि फिलोसफी क्यों दिखा रहे हैं ये, लेकिन ही वॉज राइट. अरिजीत सिंह कैन टच एनीथिंग एंड इट विल टर्न टू गोल्ड. तो ये गाना भी बहुत बहुत जबरदस्त है, स्पेशली द वीडियो इसमें इमरान, जिसमें इमरान हाशमी ने वो एक कुर्ता पहना हुआ है ब्लैक वाला, कम माल के लग रहे हैं वो भी माशाल्लाह. सो ये जो गाना है, ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज में, स्मॉल फैक्ट दे देता हूँ, ये उन्होंने अमाल मलिक के लिए गाया है, नो फीस चार्ज्ड, एंड फिर भी डबल ट्रिपल मेहनत तो बनता है भाई. तो इस बार टॉप 10 दिस वीक का ताज जाता है फिर से ये आवारापन, आवारापन 2 से. एंड आप कहीं मत जाइएगा, पहले तो ये सुन लीजिए. और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मेरे भी आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया, अगले टॉप 10 में मिलेंगे. लेकिन अगले टॉप 10 में मिलने से पहले आपको फिर से बता दूं कि आप अपनी लिस्ट हमें बता सकते हैं, प्लीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़िए FM 107 Qatar, और हमें बताइए कौन सा गाना आप लिस्ट में चाहते हैं, कौन सा गाना आप लिस्ट से उतार देना चाहते हैं, कौन सा लिस्ट में गाना ऊपर जाना चाहिए. एंड आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं, dohawalakabeer@fm107. बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मां सलाम.
0: FM 107 Top 10 Number 1.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, पहचान सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप हैं मेरे साथ हमारे इस खासम खास शो मेरी पहचान पर। आज का दिन बड़ा खास है, क्यों? क्योंकि हम उन दिलों की बात करेंगे जो हजारों मील दूर से यहाँ आए हैं, सिर्फ एक सूटकेस लेकर नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी लेकर। आज ब्यूटीफुल लेडीज जो हमारे साथ मेरी पहचान शो में जुड़ी हुई है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जरा मेरे साथ उस पल में लौट जाइए। इमेजिन कीजिए हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो ग्रैंड अराइवल हॉल, वो चमकते हुए फ्लोर्स, वो भाग दौड़ और वो कतर की मिट्टी की पहली खुशबू। एक हाथ में आपका पासपोर्ट है और दूसरे हाथ में आपने देश से लगाए हुए सपनों का एक पूरा बैग। याद कीजिए वो दिन जब आप दिल्ली या कराची या मुंबई या ढाका में थी। शायद आप एक हाई फ्लाइंग लॉयर थी जो कोर्ट रूम में अपनी दलीलों से सबका दिल जीत लेती थी, या शायद एक ऐसी टीचर जिसके बिना स्कूल का स्टाफ रूम अधूरा लगता था। हो सकता है आप एक एक्सप्रेसिव आर्टिस्ट रही हो, या एक ऐसी मैनेजर जो 50 लोगों की टीम को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लीड करती थी। वहां आपका एक नाम था, आपकी अपनी एक पहचान थी। लोग आपको आपके काम से, आपके तजुर्बे से, आपके स्किल्स के जरिए, आपके टैलेंट के जरिए, आपके अचीवमेंट से जानते थे। सुबह की वो कॉफी, ऑफिस की वो डेडलाइंस और शाम की वही थकावट, वो सब आपका अपना था। लेकिन फिर जिंदगी ने एक मोड़ लिया, एक वीजा स्टैंप लगा और एक फ्लाइट ने सब कुछ बदल दिया। यू मूव्ड फॉर लव, आप मूव हुई फैमिली की वजह से, आप

हुई बेटर फ्यूचर की वजह से, पर क्या आपने सोचा था कि इस मूव की कीमत आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी? आज आप अलवाब के एक बहुत खूबसूरत विला में बैठी हैं, या शायद लुसेल के किसी स्लीक अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट की 20th फ्लोर के समुंदर को देख रही हैं। ऑन पेपर यू हैव एवरीथिंग, लग्जरी है, कंफर्ट है, सेफ्टी है, पर ब्यूटीफुल लेडीज, जब घर में खामोशी होती है तब वो पुरानी आप कहीं कोने में खड़ी सवाल करती है। जब आप वेस्ट बे की किसी ग्लिटरिंग डिनर पार्टी में जाती हैं, जहां कतर की सबसे एलीट क्राउड जमा होता है, या वहां माहौल बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, फाइन डाइनिंग, एक्सपेंसिव परफ्यूम और हसीन लोग, मगर वहां पहला सवाल ये नहीं होता कि आपकी पसंद क्या है या आपका क्या अचीवमेंट है। वहां सवाल ज्यादातर ये होता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। उफ, सडनली यू रियलाइज आपका नाम, आपकी डिग्रीज, आपका तजुर्बा सब उसे एक सवाल के पीछे छुप गया है। आपको इतने बार सो एंड सो वाइव्स कहकर इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप खुद को आईने में देखकर पूछती हैं कि हु एम आई, मतलब बिसाइड्स बीइंग अ वाइफ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या हूं? ये एहसास सबसे ज्यादा कब होता है? कई बार मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके मैसेजेस आते हैं और वो कहती हैं कि अमिता, जब हम सुपरमार्केट के उन ठंडे एयर कंडीशन आइल्स में ग्रोसरीज पिक कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वहां ट्रॉली धकेलते वक्त एक हल्की सी आवाज हमारे कानों में गूंजती है, मैं कहां गई, वेयर डिड आई गो। मेरी आइडेंटिटी किसी और के कॉन्ट्रैक्ट का महज एक फुटनोट कब बन गई? हाँ, मैं कब से सिर्फ एक ट्रेलिंग स्पाउस बनकर रह गई? ट्रेलिंग यानी पीछे चलने वाली। पर क्या आप पीछे चलने के लिए बनी है? आपने तो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीखा है, तो फिर ये खामोशी क्यों, ये अधूरापन क्यों? आज मेरी पहचान में हम इसी खामोशी को तोड़ेंगे। Today we talk about the trailing spouse and how to stop trailing. हाँ जी, और कैसे हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं फिर से। पर हमारे कतर की इस खूबसूरत रौनक में हम आपकी अपनी रौनक वापस ढूंढेंगे। We will find me in we. The beautiful ladies, कहीं मत जाइए। आज का जो सफर है वो बहुत लंबा है और बहुत जरूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ FM 107 पर, सुनते हुए मेरी पहचान, ये खास हम खास शो जो कि सिर्फ आपके लिए है, आपकी अमिता के साथ। स्टे ट्यून्ड।

अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का उन FM 107 पर. मैं हूँ आपके अमिताभ के साथ, मेरी पहचान शो सुन रहे हैं आप. और आज की सोच सिर्फ एक रूटीन सेगमेंट नहीं है, ये एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंचाने वाली पुकार है या बात है. ये हर उस खातून के लिए है या हर उस ब्यूटीफुल लेडी के लिए है जिसे लगता है कि वो एक स्पॉन्सर्ड लाइफ के साए में जी रही है. वेल, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, ये हो सकता है मेरे तजुर्बे में कहीं ना कहीं मेरी भी वो बात है जो आज आप तक पहुंचाई जा रही है. सो ब्यूटीफुल लेडीज, जब हम कतर आते हैं तो हमारे QID पर अक्सर एक लाइन लिखी होती है, स्पॉन्सर्ड बाय, और उसके आगे हमारे शौहर का नाम होता है. है कि नहीं? वो एक लीगल पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है, मगर धीरे धीरे हम उस पेपर को अपनी किस्मत मान लेते हैं. हमें लगने लगता है कि हमारी सांसें, हमारी खुशियां और हमारी हर पहचान भी ना स्पॉन्सर्ड है. देखिए, इस पर आप में से कुछ लोग हैं जो सोचेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन अमूमन एवरेज अगर देखा जाए तो मैं ऐसे शख्सियत से मिली हूँ, ऐसे लोगों से मिली हूँ जो ये महसूस करते हैं. लिसन क्लोजली मेरे सारे ब्यूटीफुल लिसनर्स, अ सैक्रिफाइस जो हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, ये किसी फ्यूनरल की तरह नहीं होना चाहिए, ये एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपनी फैमिली को मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. किसी ने सच कहा है कि रिश्तों को सींचने के लिए खुद को मिटाना जरूरी नहीं होता, अगर मिट्टी खुद ही सूख जाए तो पौधा कैसे पनपेगा. बहुत गहरी बात है, इस पर गौर जरूर फरमाइएगा. वेल, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर हमें बचपन से एक ही बात सिखाते हैं, एक औरत की फ्लेक्सिबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. बेटी थोड़ा एडजस्ट कर लो, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नए घर में ढल जाओ. हाँ, हम ढल जाते हैं, हम पानी की तरह होते हैं, जिस बर्तन में डालो उसका शेप ले लेते हैं. हम मूव करते हैं एक शेल्टर से दूसरे शेल्टर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, लेकिन ढलने में और गुम हो जाने में बहुत बड़ा फर्क होता है. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी ही बोझ बन जाए. हाँ, आपका ढलना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी चॉइस होनी चाहिए. जब हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी सांसों का गला घोट देते हैं ना, तो हम सैक्रिफाइस नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने अंदर के उस इंसान का कत्ल कर रहे होते हैं जो कभी बनना चाहता था, जो कुछ करना चाहता था. जिंदगी की इस फ्लाइट में जो शायद मुंबई या कराची से उड़ी और दोहा में लैंड हुई, इस फ्लाइट में आप कोई बैगेज नहीं है.

आप कोई पैसेंजर नहीं है जो सिर्फ खिड़की से बाहर देख रही है कि मौसम कैसा है। आप एक को पायलट है। सोचिए अगर को पायलट सो जाए या कंट्रोल्स छोड़ दे तो क्या प्लेन सही रास्ते पर रहेगा? नहीं ना। आपकी पहचान आपके शौहर के डेजिग्नेशन से तय नहीं होती है। वो सीईओ होंगे, वो मैनेजर भी होंगे, वो इंजीनियर भी होंगे। वो उनका सफर है, उनका सफर है, उनकी सैलरी ग्रेट और उनकी मेहनत है। लेकिन आपकी पहचान उस आग से है जो आज भी आपके अंदर कहीं सुलग रही है। वो आग जो शायद अब सिर्फ एक धुआं बनकर रह गई है क्योंकि आपने उस पर जिम्मेदारियों की जो राख है ना वो डाल दी है। Ask yourself today, अगर आज आपके शौहर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए या डेजिग्नेशन बदल जाए तो क्या आपका वजूद भी खत्म हो जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो जनाब हमें आज काम करने की जरूरत है, और अगर जवाब ना है तो फिर आप तालियों के हकदार हैं। वो टैलेंट जो आप में है, जिसका आप इस्तेमाल करते आई हैं, वो आपको याद है या नहीं? वो पेंटिंग ब्रशेस जो अब सूख चुके हैं, वो डायरी जिसमें आप अपनी कभी नज़मे लिखा करती थी, वो डिग्रीज जिसे फ्रेम करवाने का वक्त ही नहीं मिला, वो बिजनेस आइडियाज जो आपने किचन की बातों में भुला दिए, वो सब आपने एक सूटकेस में बंद करके बेड के नीचे या कबर्ड के ऊपर रख दिया है। आपने सोचा था कि जब सेटल हो जाएंगी तब निकालेंगी। एक साल बीता, दो साल बीता, अब तो शायद 10 साल बीत गए। उसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है। यू आंट जस्ट हियर इन कतर कि भाई आपको बस प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट होने का मतलब है अपनी जगह बनाना, अपनी आवाज पहचानना। तो आज जब आप ये शो सुन रही हैं, चाहे आप कॉर्निश पर ड्राइव कर रही हो या घर में नाश्ता बना रही हो या फिर एक पल के लिए आप कहीं रुक गई हो, आईने में देख रही हो, वहां आपको मिसेस खान या मिसेस शर्मा नहीं दिखनी चाहिए, वहां आपको एक इंसान दिखना चाहिए जिसके पास लिमिटेड वक्त है अपनी कहानी लिखने के लिए। बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी। हाँ, आप कतर आई, ये बहुत खूबसूरत बात है। कतर एक ऐसा शहर है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है, तो अपने सपनों को ट्रेलिंग मत होने दीजिए, उन्हें लीडिंग बनाइए। क्योंकि याद रखिए, जब आप खुश होती हैं तब आप मुकम्मल महसूस करती हैं, तभी आपका घर एक होम बनता है। मैं हूँ अमिता, आपके साथ, मेरी पहचान है शो का नाम, और आज की हमारी खास खास बातों को हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन द शो मेरी पहचान पर। मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ। हम बातें कर रहे थे कि कैसे हम जब अपना देश छोड़कर हम कतर में आते हैं बसने के लिए, तो कभी ना कभी हमारी पहचान जो खो जाती है, हमारे टैलेंट, उस पर सवाल उठ जाते हैं और आज इसे ही हम सुलझाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी साइंस की, लेकिन ये वो साइंस नहीं है जो हमने स्कूल की किताबों में पढ़ी थी। ये वो साइंस है जो आपका जिस्म या यूं कहें आपकी बॉडी आपको हर रोज समझाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूटीफुल लेडीज, क्या आपने नोटिस किया है कि जब से आप कतर शिफ्ट हुई हैं, आपके जिस्म में एक अजीब सा भारी बन रहता है। देखिए, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप क्या मिस कर रही हैं। एक ऐसी थकावट जो दवाओं से नहीं जाती है कि नहीं, अब कुछ याद आ रहा है? पहले आप रात को 8 घंटे 9 घंटे सोती हैं, लग्जूरियस यू कहे मैट्रेस में, एसी का टेम्परेचर परफेक्ट होता है, कमरे में अंधेरा होता है, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जंग से लौटी हो। यू फील लाइक यू रिटर्निंग फ्रॉम अ वॉर। काफी परेशान रहती हैं आप, उठती हैं लेकिन मसल्स में वो जान नहीं रहती। आपको लगता है शायद नया देश है, नई जगह है, या धूप ज्यादा है, इस चक्कर में थोड़ा सा ये हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जाती हैं, ब्लड टेस्ट करवाती हैं, विटामिन डी कम निकलता है, थोड़ा आयरन कम निकलता है, लेकिन सब नॉर्मल।

होने के बाद भी वो पुरानी एनर्जी वापस नहीं आती। इस थकावट को हम अक्सर बोर्डम या लेजीनेस कहकर झटक देते हैं, पर ब्यूटीफुल लेडीज, ये आलस नहीं है। इसे कहते हैं द बायोलॉजिकल टोल ऑफ लूजिंग योर व्हाई। वेलनेस और साइकोलॉजी की दुनिया में एक टर्म है, मेटाबॉलिज्म ऑफ पर्पस। हाँ, सुनने में थोड़ा सा भारी लगता है ना? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। जब हम काम पर जाते हैं या जब हमारी लाइफ में बड़े चैलेंजेस और गोल्स होते हैं या यूं कहें हुआ करते थे, तो दिमाग बॉडी को सिग्नल भेजता था, उठो, हमें ये टारगेट अचीव करना है, हमें आज ये मसला सॉल्व करना है। तब हमारी बॉडी हाई परफॉर्मेंस मोड पर रहती थी। लेकिन यहाँ जब हमारा दिन सिर्फ वेटिंग में निकल जाता है, बच्चों के स्कूल से आने का वेट, शौहर के ऑफिस से लौटने का वेट या अगले वेकेशन का वेट, तो दिमाग को लगता है कि अब बॉडी को किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। दिमाग सिग्नल भेजता है, स्लो डाउन, बैटरी सेवर मोड ऑन कर दो। इसका सीधा असर आपके थायराइड फंक्शन और आपके मेटाबॉलिक रेट पर पड़ता है। आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, आपका वेट बिना वजह बढ़ने लगता है और आपकी बॉडी लथार्जिक हो जाती है। ये थकावट दिमाग से शुरू होती है और सेल्स तक पहुंचती है। योर स्पिरिट इज अंडर स्टिम्युलेटेड और आपकी जो बॉडी है वो सिंपली आपके स्पिरिट की लीड को फॉलो कर रही है। तो इसका इलाज क्या है? क्या और एक कप कॉफी पीने से एनर्जी आएगी? नहीं, मैं इसे कहती हूँ मेंटल वेट लिफ्टिंग। हाँ जी, देखिए हम कतर में हैं, यहाँ ऑक्सीजन जिम है, एस्पायर है, हसीन पार्क्स हैं। हम वहाँ जाते हैं ताकि हमारे मसल्स फर्म रहें। लेकिन दिमाग का क्या? दिमाग को भी रेजिस्टेंस चाहिए, उसे मुश्किल काम चाहिए। जब आप कोई नई स्किल सीखती हैं, मानिए आपने कोडिंग शुरू की या कोई नई जुबान सीखना शुरू किया, जैसे कि अरबिक हो या फ्रेंच हो, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन सिर्फ खुशी का हार्मोन नहीं है, ये मोटिवेशन और एनर्जी का हार्मोन है। जब आप किसी सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ती हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम जाग उठता है, वो बॉडी को सिग्नल भेजता है, हे, आई एम स्टिल ऑन एक्टिव प्लेयर इन दिस वर्ल्ड। हाँ, एक नई रेसिपी बनाना एक्टिव होना नहीं है, एक नई रेसिपी बनाना एक्टिव होना नहीं है, कुछ ऐसा सीखना जो आपके दिमाग को चैलेंज करे, जिसमें फेल होने का डर हो और जीत की खुशी हो, वही है असली मेंटल वेट लिफ्टिंग। आया समझ? तो हम में से बहुत सी जो विमेन हैं, बहुत सी जो खवातीन हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफी मशीन की तरफ भागती हैं। हमें लगता है कि कैफीन हमें जगाएगा, पर कैफीन तो सिर्फ एक धोखा है, एक टेम्पररी स्पार्क है। असली एनर्जी आती है क्यूरियोसिटी से, क्यूरियोसिटी यानी कुछ जानने की तड़प। जब आप रात को सोती है इस एक्साइटमेंट के साथ कि कल मुझे मेरा वो ऑनलाइन कोर्स फिनिश करना है या कल मुझे अपनी नई वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करना है, तो आपकी सुबह की जो थकावट होती है ना, वो गायब हो जाती है। सडनली आपका थायराइड, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका ब्लड प्रेशर सब एक नए रिदम में आ जाता है। योर बॉडी फॉलोज योर माइंड। अगर आपका माइंड स्टैग्नेंट है तो बॉडी सड़ने लगेगी, अगर माइंड मोशन में है तो बॉडी जवान रहेगी। एज इज नॉट अ नंबर, तभी तो कहा जाता है एज इज द लैक ऑफ अ गोल, यानी कि आपके पास कुछ पर्पस, कुछ गोल होना बहुत और बेहद जरूरी है। तो आज मेरा आपको एक चैलेंज है। आज जब आप इस शो के बाद घर के कामों में मशगूल हो जाएंगे, यूं कहें बिजी होंगी, तो अपने आप से पूछिए, आज मेरे दिमाग ने कौन सा वजन उठाया है? फाइंड वन थिंग दैट मेक्स यू फील लाइक अ स्टूडेंट अगेन। हाँ, चाहे वो कोई कोर्स सीखने की बात हो, आप फ्री कोर्सेज भी देख सकती हैं, ऑनलाइन बतेरे कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे, या कतर फाउंडेशन की कोई वर्कशॉप हो, कॉफी से जो कहते हैं ना दोस्ती थोड़ी कम कीजिए। हाँ, मना नहीं कर रही हूँ कि दोस्ती ना कीजिए, लेकिन थोड़ी कम कीजिए और क्यूरियोसिटी से दोस्ती बढ़ा लीजिए। आप देखेंगी कि वो जो भारीपन था ना, वो अचानक पंखों के साथ उड़ गया है। एग्जैक्टली, तो ये कुछ चीजों का ख्याल रखे एंड आई एम वेरी सर्टेन कि ये जो हमारे जहन में आता है ना, अपने आप को खो देने की फीलिंग,
वो कम हो जाएगी। कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ।

वेलकम वंस अगेन. आप सुन रहे हैं मेरी पहचान. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. तो ब्यूटीफुल लेडीज, हमारी सारी लवली लवली विमेन, खवातीनों, कैसे हैं आप सब? वेल, अब हम उस मोड़ पर हैं जहाँ हम अक्सर दुश्वारी महसूस करते हैं. हाँ, छुपी हुई मैं, वो आप जो दुनिया को नहीं दिखती है. हाँ, जो शायद आपके शौहर को भी नहीं दिखती है, और कभी कभी तो आप खुद भी उससे आंखें चुराती हैं. इमेजिन कीजिए कि आप एक शानदार हाई राइज बिल्डिंग की बालकनी में खड़ी हैं, ठीक है, सामने ब्लू ओशन है, नीचे चमकती हुई गाड़ियां हैं, और हाथ में एक महंगे कॉफी का कप है. कतर की सेफ्टी ऐसी है कि आप रात के 2 बजे अकेले बाहर निकल सकती हैं. घर में हेल्प है, वीकेंड्स पर ब्रंचेस हैं, पर्ल पर वॉक्स हैं. आप ये सब देखती हैं और खुद से कहती हैं, मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है. दुनिया में इतने लोग हैं जो इस सुकून वाली जिंदगी के लिए तरसते हैं. मैं कितनी खुशनसीब हूँ. लेकिन जैसे ही ये ख्याल आता है, दिल के किसी कोने में एक टीस उठती है, एक ऐसी खामोश, एक ऐसी कश्मकश, एक ऐसा गिल्ट कि इतना सब होने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ. इस जज्बात को हम अक्सर अनग्रेटफुल होना कह देते हैं. हम खुद को कोसने लगते हैं. हमें लगता है कि हम ना शुक्रे हो रहे हैं. लेकिन मेरी बात बहुत गौर से सुनिए. कंफर्ट इज नॉट द सेम एज कंटेंटमेंट. समझ रहे हैं आप मूव होने पर गुस्सा है, आप उस सैक्रिफाइस पर गुस्सा है जो आपने अपने करियर का किया, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर गुस्सा है कि आप गुस्सा क्यों है. इसे साइकोलॉजी में कहते हैं गोल्डन केज सिंड्रोम. पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का, होता तो पिंजरा ही है ना. अगर एक परिंदे को उड़ने की आजादी ना दी जाए तो क्या वो इसीलिए खुश हो जाएगा कि उसका पिंजरा हसीन है और उसे वक्त पर दाना मिल रहा है? बिल्कुल नहीं. परिंदे की फितरत है उड़ना, और एक इंसान की फितरत है अपनी काबिलियत को साबित करना. आपकी छुपी हुई मैं दरअसल मातम मना रही है. वो मातम मना रही है उस पुरानी आप का, जो शायद किसी खास जगह के रस्तों पर फाइल पकड़े भागती थी, या कराची के किसी ऑफिस में मीटिंग लीड करती थी, या दिल्ली में कुछ खास काम कर रही होती थी. वो औरत जिसका अपना एक सोशल सर्कल था, जिसकी अपनी एक पहचान थी, जो अपने पैसे खुद कमाती थी और उन्हें अपनी मर्जी से खर्च करती थी. वो आप कहीं पीछे छूट गई हैं, शायद उस एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर, या शायद उस दिन जब आपने रेजिग्नेशन लेटर साइन किया था. इट्स ओके टू मिस हर, इट्स ओके टू ग्रीव फॉर हर. हम अक्सर अपने जज्बात को दबा देते हैं ये सोचकर कि अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए. मगर जब तक आप उस पुरानी आप को एक्नॉलेज नहीं करेंगी ना, तब तक आप नए शहर में कभी पूरी तरह सेटल नहीं हो पाएंगी. हीलिंग तब शुरू नहीं होती जब आप सब कुछ भूल जाती हैं. हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ये मानती हैं कि हाँ, मुझे दुख है, हाँ, मुझे अधूरा महसूस हो रहा है. सुकून की जिंदगी हसीन होती है, मगर वो एम्प्टी लगने लगती है, वो खाली लगने लगती है, अगर उसमें आपका अपना कोई मकसद या पर्पस ना हो. एक इंसान की रूह सिर्फ कंफर्ट से नहीं चलती, उसे कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है. उसे लगना चाहिए कि वो किसी काम आ रहा है, वो कुछ क्रिएट कर रहा है, वो दुनिया में अपनी कोई छाप छोड़ रहा है. जब तक आप सिर्फ वाइफ या मदर के रोल में रहेंगी, आपकी छुपी हुई मैं हमेशा भूखी रहेगी. उसे चाहिए अपनी काबिलियत का एहसास, उसे चाहिए वो सैटिस्फैक्शन जो दिन भर की मेहनत के बाद मिलता है. हाँ, हमारे दोहा के उन वीकेंड्स पर जब सब लोग ब्रंच कर रहे होते हैं और आप भीड़ में भी अकेली महसूस कर रही होती हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आपका मकसद कहीं खो गया है. तो आज छुपी हुई मैं से मिलने का वक्त है. आज आईने में देखकर ये मत कहिए कि मैं अनग्रेटफुल हूँ. आज ये कहिए, मुझे और चाहिए, और ये मेरा हक है कि नहीं? अपनी कश्मकश को पहचानिए, अपने गुस्से को एक डायरेक्शन दीजिए.
कंफर्ट को अपना दुश्मन मत बना दीजिए, बल्कि उसे एक प्लेटफॉर्म बनाइए कुछ नया शुरू करने के लिए। आप एक सुनहरे पिंजरे में बंद परिंदा नहीं है, आप इस नीले आसमान की मलिका है, बस पर फैलाने की देरी है। तो अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आप ही है जो अपने आप को ढूंढ के ला सकती है और छुपी हुई मैं को फिर से दुनिया के सामने जिंदा कर सकती है। और बातों ही बातों में अब हम अपने आखिरी मुकाम पर भी पहुंच चुके हैं। आज हमने एक लंबा सफर तय किया, हमने एयरपोर्ट की उन भारी आंखों की बात की, हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ पर्पस की साइंस को समझा और हमने उस गोल्डन केज के दर्द को महसूस किया। लेकिन सिर्फ दर्द की बात करने से रास्ते नहीं खुलते। मेरी पहचान का मकसद सिर्फ सवाल उठाना नहीं, बल्कि जवाब ढूंढने में आपकी मदद करना है। आप मुझसे पूछते हैं कि अमिता, हम वी के इस सफर में मी को कैसे ढूंढे? हम इस स्पॉन्सर्ड लाइफ से अपनी आइडेंटिटी कैसे वापस मांगे? तो चलिए डायरी और पेन उठाइए, क्योंकि ये है आपका आज का रोड मैप टू रिक्लेमिंग योरसेल्फ। तो जब हमसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली लेबल्स ढूंढता है। मैं खान साहब की वाइफ हूँ, मैं दो बच्चों की माँ हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आज ये सब बंद, कि यूं कहे आज से ये सब बंद। एक डायरी उठाइए और पांच ऐसी चीजें लिखिए जो सिर्फ आप हैं। इनका आपके रिश्तों से, आपके शौहर के डेजिग्नेशन से, ये आपके घर के कामों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मसलन लिखिए, आई एम अ राइटर। शायद आपने सालों से कुछ नहीं लिखा, पर आपकी रूह एक राइटर ही है। लिखिए, आई एम अ मैराथन रनर। चाहे आप अभी सिर्फ कॉर्निश पर वॉक ही क्यों ना कर रही हूँ, लिखिए आई एम अ पर्सन हु लव्स हिस्ट्री या आई एम अ टेक एंथुसियास्ट। जब आप ये पांच लाइनें लिखेंगी तो आपको पहली बार एहसास होगा कि आपका वजूद इन चार दीवारियों से बहुत बड़ा है। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर ओन स्किन। आप एक इंसान है, एक लेबल नहीं, ठीक है? दूसरा कदम है माइक्रो एम्बिशन। अक्सर हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि अब नया करियर कैसे शुरू होगा, कतर में तो इतनी मुश्किल है, वैकेंसीज नहीं है, ये थॉट हमेशा आता है। लेकिन जनाब, बड़े पहाड़ को देखकर डरना बंद कीजिए। सिर्फ एक घंटा, दिन का सिर्फ एक घंटा अपने नाम कीजिए। इसे मैं कहती हूँ द सेक्रेड आवर। इस एक घंटे में ना कोई बच्चा होगा, ना हस्बैंड, ना किचन की चिंता। इस एक घंटे में आप बनेंगी प्रोफेशनल यू। अगर आपको टीचर बनना है तो इस एक घंटे में ऑनलाइन मॉड्यूल्स देखिए। अगर आपको डिजाइनर बनना है तो स्केच बनाइए। अगर आपको सिर्फ अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है तो वो कीजिए। जब आप रोज एक घंटा अपने मकसद को देती हैं, तो आपका दिमाग ट्रेलिंग मोड से निकलकर लीडिंग मोड में जाता है। एक घंटा, 1 hour a day इज 4% ऑफ योर डे। समझ रहे हैं आप कि आप अपने लिए 4% भी नहीं निकाल सकती? तीसरा और सबसे अहम कदम, कनेक्ट विद द कम्युनिटी। आपको लगता है कि आप दोहा में अकेली हैं? बिल्कुल नहीं। इस शहर में हजारों ऐसी ब्यूटीफुल वुमेन हैं जो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हैं जैसे कि आप महसूस करती हैं, लेकिन रास्ता वही ढूंढती हैं जो बाहर निकलती हैं। कतर में हमारे पास बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। कतर फाउंडेशन, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए है। एजुकेशन सिटी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इनके पास अडल्ट एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग और ऐसे वर्कशॉप्स हैं जो आपकी हिडन टैलेंट्स को पॉलिश कर सकती हैं। इनकी वेबसाइट्स चेक कीजिए, इनके कैंपस जाइए। दोहा वुमेन फोरम, ये एक ब्रिलियंट स्पेस है नेटवर्किंग के लिए। यहाँ आपको ऐसी औरतें मिलेंगी जिन्होंने जीरो से शुरू किया और आज कतर में अपनी पहचान बना चुकी है। इनके इवेंट्स अटेंड कीजिए, लोगों से मिलिए। एंड देन देयर इज आल्सो अमन सेंटर। अगर आपको लगता है कि आपको एम्पावरमेंट की जरूरत है या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको सोशल सपोर्ट चाहिए, तो अमन सेंटर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। याद रखिए, नेटवर्किंग सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए नहीं होती, नेटवर्किंग हिम्मत ढूंढने के लिए भी होती है। और अब एकदम शो का आखिरी पड़ा, तो जाते जाते मुझे लगता है कि ये आपसे कहना बनता है, आप अपनी जिंदगी की +1 नहीं है, आप मेन कैरेक्टर हैं।
अक्सर पार्टी के इनविटेशन पर लिखा होता है मिस्टर सो एंड सो प्लस वन आप वो प्लस वन नहीं है आपके शौहर का कॉन्ट्रैक्ट आपको कतर लाया है ये सच है उनका वीजा आपको यहाँ रख रहा है ये भी सच है मगर इस मिट्टी पर आपके कदम क्या निशान छोड़ेंगे ये आपकी रूह तय करेगी या नहीं ये आपको तय करना होगा कोई कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये आपका डिसीजन है डोंट जस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ कतर बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर इन कतर जब आप कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं तो आप ट्रेलिंग स्पाउस नहीं रहती और आप इंस्पायरिंग स्पाउस बन जाती हैं तो कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड मुझसे अपनी कहानी जरूर शेयर करना हमारे नंबर 6622107 पर 6622107 पर और चाहे तो हमारा जो सोशल मीडिया है FM 107 का उससे भी आप जुड़ सकती हैं और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकती हैं बस याद रखिए जिंदगी का सफर और हसीन तब होता है जब आप अपने आप पर

0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
0: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवन्स और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए. संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक. बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें, राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें. और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है. कैरेवेंस के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर लाइटिंग का काम करना, रेयर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड. इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें. कैरेवन्स या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें. अगर कैरेवन्स का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है. टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें. टोइंग व्हीकल और कैरेवन्स की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम

0: करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ हो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को

0: बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनते ही आपके दिमाग के न्यूरॉन्स थोड़ा सा शेक करना शुरू हो जाएंगे। यानी हम बात कर रहे हैं द डे द रिवर रैन बैकवर्ड्स, यानी हाउ अर्थक्वेक्स रीशेप लैंडस्केप। जरा सोचिए, आप सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक किसी दरिया के किनारे वॉक कर रहे हैं, पानी आपको सरप्राइज देता है और वो सरप्राइज क्या है, वो अपनी यूजुअल डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने अपने ही रूल्स को चेंज कर दिया हो, है ना सरप्राइजिंग। लेकिन ये सिर्फ फिक्शन नहीं बल्कि कुछ रेयर और एक्सट्रीम अर्थक्वेक इवेंट्स के रियल वर्ल्ड फिनोमेना है। साथियों, अर्थक्वेक्स सिर्फ बिल्डिंग्स या सिटीज को नहीं हिलाते बल्कि नेचुरल लैंडस्केप्स को भी ड्रामेटिक चेंज देते हैं। कभी कभी एकदम अर्थक्वेक से रिवर्स अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं या माउंटेन्स और वैलीज भी कई दफा नई फॉर्म्स ले लेते हैं। हर अर्थक्वेक एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट है जहां हम ये देख सकते हैं कि कैसे अर्थ के अंदर के टेक्टोनिक फोर्सेस लैंडस्केप को रीशेप करते हैं। आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स और सेस्मिक एक्टिविटीज रिवर्स, लेक्स, वैलीज और माउंटेन रेंजेस को अल्टर करते हैं। हम जानेंगे अपलिफ्ट्स, सबसिडेंस, लैंडस्लाइड्स और लिक्विफिकेशन के फैसिनेटिंग फिनोमेना जो सिर्फ अर्थ की इंटरनल एनर्जी की वजह से होते हैं। आपको लगेगा जैसे अर्थ खुद अपनी पेंटिंग बना रही हो, कभी बॉयलेंट तो कभी सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस कभी कभी इतनी रैपिड होती हैं कि लोग लिटरली विटनेस करते हैं रिवर का रिवर्स फ्लो या लैंडस्केप का ओवरनाइट चेंज। साथियों, इमेजिन कीजिए एक ऑर्डिनरी मॉर्निंग और एक दरिया जो कि अचानक से पीछे की तरफ फ्लो करना शुरू कर दे। भाई क्या कहें, नेचर का सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है। तो साथियों, बकल अप कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे थ्रिलिंग और माइंड बेंडिंग जर्नी के लिए जिसे हम कहेंगे बीनीथ द अर्थ क्रस्ट एडवेंचर। मैं हूं सफा और ये है आपका शो एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे अर्थक्वेक्स रीशेप करते हैं हमारी दुनिया को, जो कि कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होते लेकिन हमेशा फैसिनेटिंग जरूर होते हैं। साथियों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं। देखिए, हमारे प्लैनेट का आउटर शेल यानी अर्थ क्रस्ट मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट से बना है। ये प्लेट्स एक सॉलिड लेयर की तरह है लेकिन ये बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है। कभी ये मूवमेंट स्लो होती है जैसे मोलेसिस की तरह आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कर रही होती हैं, और कभी ये सरप्राइजिंगली फास्ट भी हो सकती हैं, जैसे कि एक सडन सा झटका। भाई ये प्लेट्स हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिव रहती हैं, कभी ये एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करती हैं, कभी एक दूसरे की साइड्स पे स्लाइड करती हैं, और कभी कभी एक प्लेट दूसरे के नीचे डाइव कर जाती है जिसे सबडक्शन जोन भी कहा जाता है। जब प्लेट्स ये मूव करती हैं तो क्रस्ट में स्ट्रेस बिल्ड होता है। ये स्ट्रेस तब रिलीज होता है जब रॉक लेयर अपनी टॉलरेंस से ज्यादा टेंशन फेस कर लेती हैं, और बस एक सडन रिलीज और यही क्रिएट होता है अर्थक्वेक। साथियों, हर अर्थक्वेक अलग होता है, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन इनका वैरी करता ही करता है। मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की एनर्जी को मेजर करता है, मतलब कितनी पावर रिलीज हुई है। इंटेंसिटी ग्राउंड शेकिंग का लोकल इफेक्ट बताती है, यानी आपके आसपास बिल्डिंग्स और लैंडस्केप पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ड्यूरेशन बताता है कि अर्थक्वेक कितनी देर तक फील होता रहा है। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग चीज ये है कि ये अर्थक्वेक्स लैंडस्केप्स को कैसे ड्रामेटिकली चेंज करते हैं। कभी रिवर्स का फ्लो रिवर्स हो जाता है, कभी वैलीज और माउंटेन्स का शेप बदल जाता है। ये सब कुछ एनर्जी और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है। भाई साथियों, सेस्मोलॉजिस्ट यानी साइंटिस्ट्स जो अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं स्पेशल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। ये वेव्स दो टाइप की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स सबसे फास्ट होती हैं और ग्राउंड को कंप्रेस और एक्सपेंड करती हैं। ये वेव्स सबसे पहले डिटेक्ट होती हैं साथियों, और उनकी वजह से ही इनिशियल शेक फील होता है। भाई फिर बारी आती है एस वेव्स की, ये होती है सेकेंडरी वेव। ये थोड़ी स्लोअर होती है, लेकिन ये ग्राउंड को साइड टू साइड शेक करती है और काफी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। इन वेव्स के एनालिसिस से साइंटिस्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि रिवर या लैंडस्केप पे क्या इफेक्ट हो सकता है और कैसे माउंटेन्स और वैलीज रीशेप हो रहे हैं। और ये सिर्फ सरफेस तक लिमिटेड नहीं है साथियों, अर्थक्वेक की एनर्जी अर्थ के अंदर लेयर्स में भी ट्रेवल करती है भाई, जहाँ से लिक्विफिकेशन, लैंडस्लाइड्स और अपलिफ्ट्स क्रिएट होते हैं। साथियों जब ग्राउंड वाटर सैचुरेटेड सॉइल के साथ मिक्स होता है ना और शेकिंग होती है, तो सॉइल टेम्परेरली लिक्विड बन जाता है और इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन कहते हैं। इस वजह से बिल्डिंग्स सिंक कर जाती हैं और रिवर्स का कोर्स टेम्परेरली या परमानेंटली भी चेंज हो सकता है। तो भाई जब भी आप सुनते हैं कि अर्थक्वेक आया था या रिवर पीछे की तरफ फ्लो कर रहा है, समझ जाइए कि ये सिर्फ रैंडम इवेंट नहीं है, ये अर्थ के अंदर के टेक्टोनिक फोर्सेस का फैसिनेटिंग और पावरफुल ड्रामा है जो कंटिन्यूसली रीशेप कर रहा है हमारे इस प्लैनेट को। और साथियों इसी के साथ साथ हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये फोर्सेस कभी कभी एक रिवर को लिटरली पीछे की तरफ फ्लो करने पर मजबूर कर देती हैं। तो भाई यहीं पर लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और भाई ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे शेयर करेंगे और भी फैसिनेटिंग फैक्ट्स इस बारे में। तो भाई सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद सफा।
0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107। साथियों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिनोमिना की जिसके बारे में सुनते ही आपको थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगेगा, यानी हम बात कर रहे हैं दरियाओं के रिवर्स फ्लो करने की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ रेयर और एक्सट्रीम अर्थक्वेक्स के बाद रिवर्स टेम्परेरली या परमानेंटली अपना फ्लो रिवर्स कर देते हैं। ये सिर्फ ड्रामेटिक फिक्शन नहीं है बल्कि साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स का हिस्सा है। साथियों एक फेमस एग्जांपल है 1964 का अलास्का अर्थक्वेक। इस अर्थक्वेक ने न सिर्फ मैसिव सुनामी और कोस्टल अपलिफ्ट क्रिएट किए बल्कि रिवर्स के नॉर्मल फ्लो को भी डिस्टर्ब कर दिया। लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ रिवर्स ने टेम्परेरली पीछे की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया था, जैसे नेचर ने अपने ही रूल्स चेंज कर लिए हों। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है भाई। देखिए भाई, साइंटिफिक रीजन ये है कि अर्थक्वेक के वक्त रिवर बेड का अपलिफ्ट या सबसाइडेंस होता है। जब रिवर का डाउनस्ट्रीम पार्ट सडनली ऊपर उठ जाता है या नीचे गिर जाता है, रिवर का नेचुरल स्लोप या ग्रेडियंट चेंज हो जाता है। तो भाई पानी तो नेचुरली लो ग्राउंड की तरफ फ्लो करता है ना, लेकिन अगर स्लोप रिवर्स हो जाए तो फिर क्या होगा? जी हाँ, पानी टेम्परेरली या कभी कभी परमानेंटली अपने प्रीवियस डायरेक्शन से ऑपोजिट में फ्लो करने लग जाता है। ये रिवर्स फ्लो टेम्परेरली भी हो सकता है, जैसे एक ड्रामेटिक झटका होता है ना वैसा, जो कुछ घंटों या दिनों के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, या ये परमानेंटली भी हो सकता है डिपेंडिंग के भाई उस वक्त टेक्टोनिक चेंज और लैंडस्केप के लॉन्ग टर्म अल्ट्रेशन कितने हुए हैं। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करें कि रिवर का फ्लो चेंज हो रहा है या लेक का लेवल सडनली अल्टर हो गया है, तो ये क्लू देते हैं कि अर्थ के अंदर कुछ मैसिव एनर्जी रिलीज हुई है। रिवर्स और लेक्स सिर्फ वाटर कैरियर्स नहीं होते साथियों, दे आर नेचुरल स्टोरी टेलर्स जो अर्थ के टेक्टोनिक और सेस्मिक हिस्ट्री को नरेट करते हैं। साथियों ये सिर्फ अलास्का तक लिमिटेड नहीं है, दुनिया के मल्टीपल रीजन्स में अर्थक्वेक्स ने रिवर का फ्लो टेम्पररी रिवर्स कर दिया है। ये फिनोमिना हमें ये भी समझाता है कि नेचर कितनी ड्रामेटिक है भाई, और अर्थ का क्रस्ट सिर्फ स्टैटिक लेयर नहीं है बल्कि कंटिन्यूसली मूविंग और इंटरैक्टिंग एंटिटी है। जब हम रिवर का फ्लो ऑपोजिट देखते हैं तो समझ जाइए कि ये एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन है टेक्टोनिक प्लेट्स के सेस्मिक एनर्जी की। साथियों एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिवर रिवर्सल का इफेक्ट सिर्फ पानी तक लिमिटेड नहीं होता, ये लोकल इकोसिस्टम, सेडिमेंटेशन पैटर्न्स और नियर बाय वेट लैंड्स को भी इंस्टेंटली इम्पैक्ट करता है। कभी कभी ये चेंजेस इतने ड्रामेटिक होते हैं कि साइंटिस्ट को फील्ड सर्वे करनी पड़ जाती हैं और सैटेलाइट्स के डेटा एनालिसिस करने पड़ जाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो साथियों, जब आप सुनते हैं कि रिवर ने रिवर्स फ्लो किया या कोई रिवर सडनली अपने यूजुअल कोर्स से अलग हो गया, समझ जाइए कि ये एक रेयर और फैसिनेटिंग ग्लिम्स है अर्थ के इंटरनल फोर्सेस का। साथियों, जैसे ही हम रिवर्स के रिवर्स फ्लो के फैसिनेटिंग फिनोमेना से गुजरते हैं, तो भाई हमारे लिए एक बात को समझना बहुत जरूरी होता है। हमें समझना होगा कि अर्थक्वेक्स का इम्पैक्ट सिर्फ पानी तक लिमिटेड नहीं होता। अर्थक्वेक्स की पावर इतनी इमेंस होती है कि ये माउंटेन्स और वैलीज को भी ड्रामेटिकली रीशेप कर देते हैं। इस फिनोमेना को साइंटिस्ट्स टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, मतलब अर्थ के सरफेस की फॉर्म्स और शेप्स को स्टडी करना जो टेक्टोनिक फोर्सेस और सेस्मिक एक्टिविटीज की वजह से बन रही हैं। साथियों, जब भी अर्थक्वेक होता है ना, तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से स्ट्रेस और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी अर्थ के क्रस्ट को डीफॉर्म कर देती है। अपलिफ्ट्स, फॉल्टिंग और ग्राउंड रप्चर के थ्रू माउंटेन रेंजेस का हाइट और स्लोप बदल सकता है भाई, और वैलीज या लो लाइंग एरियाज क्रिएट हो जाते हैं। ये प्रोसेसेस कभी कभी इतनी रैपिड होती हैं कि कुछ मिनट्स या घंटों में भाई एक नोटिसेबल चेंज ऑब्जर्व किया जा सकता है। और भाई सिर्फ ग्राउंड शेप चेंज नहीं होता, यानी माउंटेन स्लोप्स को इंस्टेबिलिटी मिल जाती है। ये इंस्टेबिलिटी लैंडस्लाइड्स और डिब्रीज फ्लो को ट्रिगर करती है। जब ये मैसिव रॉक और सॉइल डिब्रीज डाउन हिल गिरते हैं, ये रिवर्स और स्ट्रीम्स में गिरकर टेम्पररी डैम्स क्रिएट करते हैं, और जैसे ही वाटर डैम के पीछे एक्यूमुलेट होता है, फ्लड और रिवर डाइवर्जन्स नेचुरली अकर करते हैं। मतलब एक अर्थक्वेक के बाद लैंडस्केप लिटरली ओवरनाइट चेंज हो सकता है, रिवर्स का कोर्स अल्टर हो सकता है और लो लाइंग एरियाज टेम्पररी लेक्स या पॉन्ड्स बन सकते हैं। साथियों, इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है 2008 का सिचुआन अर्थक्वेक। इस अर्थक्वेक ने चाइना के माउंटेनस रीजन में काफी वैलीज और स्ट्रीम्स को अल्टर किया। कुछ न्यू लेक्स और रिवर्स पाथ फॉर्म हुए और लोकल इकोसिस्टम और ह्यूमन सेटलमेंट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। ये इंसिडेंट हमें ये भी सिखाता है कि अर्थ कंटिन्यूसली रीशेप हो रही है। ये कोई स्टैटिक प्लैनेट नहीं है। माउंटेन्स ग्रो करते हैं, वैलीज डीपन होती हैं और रिवर्स का पाथ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता भाई। साथियों, सिस्मोलॉजिस्ट्स और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हर अर्थक्वेक एक नेचुरल लेबोरेटरी है। इससे हम सीखते हैं कि टेक्टोनिक एनर्जी का सरफेस पे क्या इफेक्ट होता है और कैसे लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल एवोल्यूशन होती है। अर्थक्वेक के बाद जो चेंजेस होते हैं, वो हमें अर्थ के इंटरनल डायनेमिक्स और क्रस्ट के बिहेवियर के बारे में लाइव इंसाइट देते हैं, और ये सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी तक लिमिटेड नहीं है, ह्यूमन सोसाइटीज के लिए भी ये नॉलेज बहुत क्रूशियल है। साथियों, जैसे वो एरियाज जो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं लैंडस्लाइडिंग से, उनमें सेटलमेंट का रिस्क या रिवर डाइवर्जन की वजह से फ्लड जोन्स को आइडेंटिफाई करना, ये हमें फ्यूचर प्लानिंग और डिजास्टर प्रिपेयरनेस में मदद करते हैं। तो साथियों, जब भी आप माउंटेन्स और वैलीज को ऑब्जर्व करते हैं या कोई रिवर सडनली नई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, समझ जाइए कि ये सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं बल्कि अर्थ के टेक्टोनिक और सेस्मिक फोर्सेस का लाइव ड्रामा है। अर्थ की सरफेस कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रही है साथियों, और हर अर्थक्वेक इस रीशेपिंग का एक यूनिक चैप्टर लिखता है। आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी RJ सफा के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा ऑन FM 107। और अब बात करते हैं रिवर रिवर्सल और उनके फ्लडिंग हैजर्ड के बारे में। साथियों, जब अर्थक्वेक का अफेक्ट रिवर ग्रेडियंट या स्लोप चेंज करता है या लैंडस्लाइड्स और डिब्रीज फ्लोज टेम्पररी डैम्स क्रिएट करते हैं तो रिवर्स लिटरली रिवर्स फ्लो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल रिवर अपनी यूजुअल डायरेक्शन से ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। ये एक रेयर लेकिन साइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल फिनोमेना है। ये रिवर रिवर्सल फ्लैश फ्लडिंग, सेडिमेंट डिपोजिशन और इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस का कॉज बन सकता है। साथियों, जब पानी अपने यूजुअल पाथ से हटकर नए एरियाज में फ्लो करता है तो सराउंडिंग इकोसिस्टम को सडनली अडॉप्ट करना पड़ता है, और अगर अर्बन एरियाज या सेटलमेंट्स नियर बाय हों तो भाई रिस्क और भी ज्यादा हाई हो जाता है। सेडिमेंट डिपोजिशन से रिवर बेड्स परमानेंटली अल्टर हो सकते हैं और फ्लड्स की वजह से भाई एग्रीकल्चर और लोकल कम्युनिटीज पर हैवी इम्पैक्ट होता है। साथियों, हाइड्रोलॉजिस्ट्स ने कंप्यूटर मॉडल्स बनाए हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा रिवर अर्थक्वेक के बाद ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है। ये मॉडल्स पास्ट अर्थक्वेक डाटा, रिवर ग्रेडियंट्स, सॉइल टाइप और लैंडस्लाइडिंग एरियाज को एनालिसिस करते हुए बनाए गए हैं। इस प्रिडिक्टिव मॉडलिंग से डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन प्लान्स बनाने में काफी हेल्प मिलती है। अथॉरिटीज अर्ली वार्निंग्स इशू कर सकती हैं, रिवर बैंक्स रीइंफोर्स कर सकती है और भाई इवैक्यूएशन प्लान्स इंप्लीमेंट कर सकती है। तो साथियों, चाहे वो लिक्विफिकेशन हो या रिवर रिवर्सल, दोनों फिनोमिना हमें ये बताते हैं कि अर्थ के अंदर के टेक्टोनिक और सेस्मिक फोर्सेस सिर्फ माउंटेन्स और वैलीज नहीं शेप करते बल्कि रिवर्स और फ्लड प्लेन्स को भी इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये रिमाइंड कराते हैं कि हमारा प्लैनेट एक डायनेमिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सिस्टम है, और हाँ, हर अर्थक्वेक के बाद रिवर्स और लैंडस्केप्स एक नई ही कहानी सुनाते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कुछ फेमस अर्थक्वेक्स के केसेस की स्टडीज के बारे में जिन्होंने रिवर्स और लैंडस्केप्स को ड्रामेटिकली रीशेप किया। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हमें ये दिखाती हैं कि अर्थ के अंदर की एनर्जी कितनी पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। सबसे पहला एग्जाम्पल है अलास्का 1964 अर्थक्वेक। भाई, इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9.2 था और ये यूनाइटेड स्टेट्स का लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है। कोस्टल अपलिफ्ट्स और टेक्टोनिक मूवमेंट्स ने न सिर्फ लैंडस्केप को अल्टर किया बल्कि रिवर्स का फ्लो भी रिवर्स कर दिया और जैसे ही ये रिवर्स फ्लो हुआ मैसिव सुनामीज के साथ कंबाइन हुआ जिसने लोकल कम्युनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेविस्टेटिंग इंपैक्ट डाला। ये एग्जांपल क्लियरली दिखाती है कि अर्थक्वेक्स का अफेक्ट सिर्फ ग्राउंड शेकिंग तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि रिवर डायनेमिक्स और कोस्टल जियोग्राफी को भी इंस्टेंटली चेंज कर देता है। साथियों दूसरा एग्जांपल है सिचुआन 2008 अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक चाइना के माउंटेनियस रीजन में आया था और मैसिव लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर गया। कुछ वैलीज और स्ट्रीम्स परमानेंटली अल्टर हो गई और न्यू लेक्स और रिवर्स पाथ फॉर्म हुए। लोकल इकोसिस्टम और सेटलमेंट्स पे हैवी इंपैक्ट पड़ा था भाई। इस इंसिडेंट से साइंटिस्ट को समझ आया कि अर्थक्वेक कितनी रैपिडली और ड्रामेटिकली लैंडस्केप रीशेप कर सकते हैं और कैसे रिवर्स और लेक्स नेचुरल सिस्मिक रिकॉर्ड का पार्ट बन जाते हैं। तीसरा केस है निगाता 1964 का जो कि था जापान में। भाई इस अर्थक्वेक में लिक्विफिकेशन का ड्रामेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। सैचुरेटेड सॉइल टेम्परेली लिक्विड बन गया जिसकी वजह से रिवर बैंक्स शिफ्ट हो गए और अर्बन एरियाज में फ्लड क्रिएट हुआ। बिल्डिंग्स टिल्ट हुई और रोड्स डैमेज हुए और ये केस हमें ये समझाता है कि ग्राउंड के सॉलिड और लिक्विड बिहेवियर के इंटरैक्शन से रिवर अपने कोर्स इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। और भाई चौथा एग्जांपल है लोमा प्राइटा 1989 कैलिफोर्निया। इस अर्थक्वेक ने स्मॉल स्ट्रीम्स और क्रीक बेड्स को परमानेंटली रीशेप कर दिया। लोकल टोपोग्राफी और रिवर कोर्सेज में परमानेंटली अल्ट्रेशन हुई जो हमें ये दिखाती है कि अर्थक्वेक्स का अफेक्ट कभी भी टेम्पररी नहीं होता बल्कि लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बन सकता है। साथियों अब सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स ये सब चेंज कैसे स्टडी करते हैं भाई। मॉडर्न साइंस के जरिए अब रिवर और लैंडस्केप चेंजेस को करंटली ट्रैक किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेजेस एरियल सर्वेज ड्रोन्स और जीआईएस मैपिंग के जरिए साइंटिस्ट लार्ज स्केल और डिटेल्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये टूल्स हमें ये दिखाते हैं कि रिवर का कोर्स फ्लड प्लान्स और सराउंडिंग टेरियन अर्थक्वेक के बाद कैसे अल्टर हुए। साथियों सेस्मोग्राफ्स और ग्राउंड सेंसर्स ये डिटेक्ट करते हैं कि अर्थक्वेक की वेव्स और इंटेंसिटी कितनी थी। ये मेजरमेंट्स हेल्प करते हैं ये समझने में कि अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर और इमर्जिंग रिलीज किस एरिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा। हाइड्रोलॉजिस्ट और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट रिवर और स्ट्रीम्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं, कैसे फ्लो चेंज हुआ, सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ और टेम्पररली डैम्स क्रिएट हुए। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें पास्ट इवेंट्स का रिकंस्ट्रक्शन करने में हेल्प करती है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए क्रिटिकल इंसाइट देती है। मतलब ये कि अगर किसी रीजन में टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा है या वो जगह रिवर ग्रेडियंट है तो भाई साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिवर या फ्लड प्लान फ्यूचर में रिवर्स फ्लो या फ्लडिंग हैजर्ड फेस कर सकता है। तो साथियों ये केस स्टडीज और साइंटिफिक स्टडीज हमें क्लियरली दिखाती हैं कि अर्थक्वेक्स सिर्फ ग्राउंड शेकिंग के लिए नहीं होते बल्कि रिवर्स वैलीज माउंटेन्स एंड इवन अर्बन लैंडस्केप को लाइव और ड्रामेटिक वे में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि अर्थ एक ड्रामेटिक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सिस्टम है और रिवर्स और लैंडस्केप्स हमेशा हमारी ऑब्जर्वेशन और स्टडी के लिए रेडी हैं। तो भाई यहीं पर लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक और भाई ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे शेयर करेंगे और भी फैसिनेटिंग फैक्ट्स इस बारे में। तो भाई सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद सफा।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन एफएम 107। साथियों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम अर्थक्वेक्स के ड्रामेटिक इफेक्ट्स रिवर्स वैलीज और माउंटेन्स पर देखते हैं तो सिर्फ लैंडस्केप ही चेंज नहीं होता, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम भी डायरेक्टली अफेक्ट होता है भाई। अर्थक्वेक इंड्यूस्ड रिवर चेंजेस और रिवर रिवर्सल्स का इम्पैक्ट बायोडायवर्सिटी और लोकल इकोसिस्टम पे काफी सिग्निफिकेंट होता है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये है कि अर्थक्वेक्स के बाद न्यू लेक्स एंड वेटलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। ये नेचुरल पॉन्ड्स और वेटलैंड्स फ्लोरा और फियोना के लिए नया हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस और एक्वेटिक प्लांट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करें और सरवाइव करें। मतलब एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक का साइड इफेक्ट भी इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल हो सकता है। मेरे ख्याल से ये नेचर का अपना बैलेंस मेंटेन रखने का अपना ही एक तरीका है। लेकिन रिवर्स के रिवर्सल और फ्लडिंग के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सॉइल डिपोजिशन और सेडिमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन से न्यूट्रिएंट पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। ये चेंजेस एग्रीकल्चर वेजिटेशन ग्रोथ और लोकल फॉरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। कभी रिवर का नया कोर्स फर्टाइल सॉइल को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, कभी वेजिटेशन और श्रब्स टेम्परेली डैमेज हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में ये इकोलॉजिकल सक्सेशन को इन्फ्लुएंस करता है, जहाँ न्यू स्पीशीज अडेप्ट करते हैं और इकोसिस्टम इवॉल्व करता है। साथियों, साइंटिस्ट्स और इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अर्थक्वेक के बाद जो वेटलैंड्स और लेक्स क्रिएट होते हैं वो फ्यूचर बायोडायवर्सिटी होस्ट स्पॉट्स बन सकते हैं। ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हमें ये समझाते हैं कि अर्थ के इंटरनल फोर्सेस सिर्फ सॉलिड सरफेस नहीं बल्कि लिविंग इकोसिस्टम्स को भी रीशेप करते हैं। तो साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अर्थ सिर्फ एक सॉलिड और स्टैटिक सरफेस नहीं है, ये एक डायनेमिक और अलाइव प्लैनेट है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। अर्थक्वेक्स हमें ये दिखाते हैं कि रिवर्स वैलीज और माउंटेन्स की फॉर्म परमानेंट नहीं होते, दे आर ऑलवेज चेंजिंग एंड ऑलवेज मूविंग।

हर लैंडस्केप के अंदर एक हिडन जियोलॉजिकल हिस्ट्री और टेक्टोनिक स्टोरी छुपी हुई है साथियों, जो सिर्फ केयरफुली ऑब्जर्व करने पर समझ में आती है। साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन्स, सिस्मोग्राफ्स और हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज, ये सब हमें इन हिडन प्रोसेसेस को एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं। ये हमें अर्थ के रेस्टलेस और पावरफुल नेचर का ग्लिम्स दिखाती हैं और हमें ये समझाती हैं कि हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स हैं, कंट्रोलर्स नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी दरिया के किनारे चल रहे हो ना, या किसी हिल या वैली को देखें, तो याद रखिएगा कि हर रॉक, हर स्लोप और हर फ्लोइंग वाटर का एक जियोलॉजिकल स्टोरी बैकग्राउंड है। ये लैंडस्केप का रेस्टलेस एवोल्यूशन और टेक्टोनिक फोर्सेस का रिकॉर्ड है। हर रिपल, हर हिल और हर वैली हमें बताती है कि अर्थ एक लिविंग ब्रीथिंग प्लैनेट है जो कभी स्टिल नहीं रहता। साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107। स्टे क्यूरियस, कीप ऑब्जर्विंग और अप्रिशिएट कीजिए हमारी प्लैनेट की पावर और कॉम्प्लेक्सिटी को, क्योंकि जब हम अर्थ की स्टोरीज को समझ जाते हैं ना, तो हम उसकी ब्यूटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और रेजिलियंस को भी सेलिब्रेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे जासिम जाबिर के बारे में। जासिम जाबिर एक यंग और प्रॉमिसिंग कतरी फुटबॉलर हैं जो कतर की नेशनल टीम और डोमेस्टिक फुटबॉल में डिफेंसिव रोल्स के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी पैदाइश 20 फरवरी 2002 को दोहा में हुई और वो अस्पार एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल करके प्रोफेशनल फुटबॉल तक पहुंचे। उनका मेन पोजीशन है डिफेंसिव मिडफील्डर, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पर सेंटर बैक और राइट बैक की पोजीशन में भी खेल सकते हैं। जासिम ने असद और अर्रयान जैसे टॉप कतरी क्लब्स के साथ अपना डोमेस्टिक करियर डेवलप किया, जहां उन्हें हाई लेवल कोचिंग और इंटरनेशनल क्वालिटी प्लेयर्स के साथ खेलने का तजुर्बा मिला। उनकी गेम रीडिंग, टैकलिंग और डिसिप्लिन उन्हें मॉडर्न फुटबॉल का एक वर्सेटाइल डिफेंडर बनाती है। इस साल का वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में कतर को ग्रुप बी में रखा गया था और कतर के स्क्वाड में जासिम को शामिल कर लिया गया था। उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचेस में कतर की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपीयरेंसेस किए। स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-1 ड्रॉ और बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ मैच में उन्होंने डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में टीम को स्टेबिलिटी फराहम की, जबकि कनाडा के खिलाफ टफ मैच में भी वो मिडफील्ड और बैकलाइन के दरमियान लिंक बनाते रहे। इन मैचेस ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया। जासिम जाबिर को कतर फुटबॉल का फ्यूचर स्टार माना जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले टूर्नामेंट्स में और बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, पिछले एपिसोड में हमने बात की कि सीजनल एलर्जी के असबाब क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से जो सीजनल एलर्जी है उससे हम मुतासिर हो सकते हैं। आज हम उसकी अलामत और उसकी डायग्नोसिस पर बात करेंगे। सीजनल एलर्जी की सबसे नुमाया अलामत बार बार छींकी आना है, उसके साथ नाक बहना, नाक बंद होना, आंखों में खारिश महसूस होना, आंखों से बाज़ुकात पानी आना और इस तरह गले में खराश भी हो सकती है। कुछ अफराद में कुछ ऐसी अलामतें भी देखी जाती हैं जो कि आम तौर पर नहीं भी होती, से सर में शदीद दर्द होना और चेहरे पर आप दबाव या भारीपन महसूस करते हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। शादी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, किसी की ग्रेजुएशन हो, या किसी का बेबी शावर हो, या कोई भी स्पेशल फैमिली इवेंट हो। हम चाहते हैं भाई कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और हाँ, इवेंट की तैयारी में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पता है क्या? इन्विटेशन कार्ड। अच्छा, एक वक्त था जब खूबसूरत डिजाइन वाले पेपर कार्ड्स घर घर भेजे जाते थे, याद है ना? वो 90s में लोग कार्ड इस्तेमाल करते थे और उनको बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया जाता था। लेकिन आज भाई टेक्नोलॉजी का दौर है और एक नया ऑप्शन हमारे पास है, डिजिटल इन्विटेशंस। यानी पेपर के बजाय मोबाइल, ईमेल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्विटेशंस भेजना। तो भाई आज के इको स्विच में हम बात करने लगे हैं डिजिटल इन्विटेशंस वर्सेस पेपर पर, एक ऐसी चॉइस जो हमारे इवेंट्स को भी स्मार्ट बना सकती है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो साथियों, जरा एक काम करते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा इन्विटेशन कार्ड बनाने के पीछे कितने रिसोर्सेज लगते हैं? देखिए, पेपर बनाने के लिए ना दरख्तों को यूज किया जाता है, ट्रीज को। फिर प्रिंटिंग के लिए इंक, इलेक्ट्रिसिटी और पैकेजिंग का इस्तेमाल भी होता है। और अक्सर क्या होता है भाई, अक्सर यही होता है कि इवेंट खत्म होने के बाद वो ब्यूटीफुल इनविटेशन कार्ड्स ड्रॉर्स में रख दिए जाते हैं या फिर सीधी सी बात है कचरे में फेंक दिए जाते हैं अगर अपने ना हो तो। सोचिए, एक फैमिली इवेंट में अगर आप कह लें कि 100-150 कार्ड्स प्रिंट होते हैं, तो फिर वो सिर्फ एक दिन के लिए यूज होते हैं ना, एक दिन के लिए भी नहीं, मैं कहूंगी कुछ घंटों के लिए। तो कितना सारा पेपर वेस्ट होता है। इसके अलावा कार्ड्स को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी यूज होता है कि नहीं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन होता है, कार्बन एमिशंस बढ़ती हैं, यानी एक छोटी सी चीज भी एनवायरनमेंट पर असर डाल सकती है। तो भाई अब आप पूछेंगे कि सफा बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए आपको छोटा सा इको स्विच ऑन करना है, जहां मुमकिन हो पेपर की बजाय डिजिटल इन्विटेशंस चूज करें। देखिए, डिजिटल इन्विटेशंस के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ तो मैं आपको यूं ही उंगलियों पे गिनवा दूंगी। आपकी जो ये सोशल मीडिया की एप्स हैं या दूसरी तीसरी जो मैसेजिंग वाली एप्स होती हैं या ईमेल्स या ऑनलाइन इन्विटेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए चंद सेकंड में इन्विटेशन भेजा जा सकता है और मल्टीपल पीपल। इससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और ये जो दरख्त होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है, वो काटे नहीं जाते। प्रिंटिंग और डिलीवरी का खर्चा भी कम हो सकता है। आप डिजिटल इन्विटेशन को और भी क्रिएटिव बना सकते हैं अपनी मर्जी से, फोटोज, वीडियोस, मैप्स और RSVP ऑप्शंस के साथ। और इससे टाइम भी बचता है भाई। मिसाल के तौर पर शादी का इन्विटेशन सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल वीडियो मैसेज भी बन सकता है। लेकिन साथियों, अगर किसी स्पेशल ओकेजन पर पेपर इन्विटेशन ज्यादा जरूरी लग रहा है आपको, तो भाई आप रिसाइकल्ड पेपर या इको फ्रेंडली प्रिंटिंग ऑप्शन क्यों नहीं चूज करते। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि हर चीज को बिल्कुल बदल दिया जाए, बल्कि जहां आसानी से बेहतर चॉइस हो सकती है वहां इको स्विच कर लिया जाए ना, मकसद तो यही है। अच्छा, अब अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं ना, तो आजकल बहुत सारे लोग अपने इवेंट्स में डिजिटल इन्विटेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अभी एक बच्ची के अकीके का इन्विटेशन रिसीव किया था एंड इट वाज वो वाओ ब्यूटीफुल। कई कपल्स अपनी शादी के लिए वीडियोस इन्विटेशंस भेजते हैं जिसमें उनकी फोटोज, इवेंट डिटेल्स और पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं। बर्थडे पार्टीज के लिए पेरेंट्स डिजिटल कार्ड बनाकर ग्रुप्स में भेज देते हैं, जो मैसेजिंग ग्रुप्स होते हैं। इजी होता है, जल्दी सबको पहुंच जाता है। अच्छा हाँ, कंपनीज भी अपनी मीटिंग्स और इवेंट्स के लिए ऑनलाइन इन्विटेशंस यूज करती हैं साथियों। अच्छा, इससे ना सिर्फ पेपर वेस्ट कम होता है बल्कि गेस्ट्स के लिए भी आसानी होती है। वो इन्विटेशन कभी भी मोबाइल पर दोबारा से चेक कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप इन्विटेशन कार्ड कहीं भूल गए हो तो भाई एक मसला पड़ जाए। लोकेशन देख सकते हैं और अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर सकते हैं गेस्ट। अच्छा भाई, यानी एक छोटी सी डिजिटल चॉइस कन्वीनियंस और स्टेबिलिटी दोनों लेकर आ सकती है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज क्या है बता देती हूँ। अगली बार आप किसी इवेंट का प्लान बनाएं तो खुद से एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या इस इनविटेशन को पेपर की बजाय हम डिजिटल बना सकते हैं? भाई जरूर बना सकते हैं और यकीन जाने पेपर से बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, हमें बताना मत भूलिएगा, आपने कभी डिजिटल इनविटेशन रिसीव किया है? मैंने तो पिछले दिनों किया था, बहुत खूबसूरत था। और क्या आपको पेपर कार्ड्स ज्यादा पसंद है या डिजिटल इनविटेशंस? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, हर मैसेज जो मोबाइल से भेजा जाए वो सिर्फ एक क्लिक नहीं, कभी कभी नेचर के लिए एक छोटा सा पॉजिटिव स्टेप होता है। छोटी सी आदत डालें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka, FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Aaj ka topic hai waqt mein barkat. कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग कम वक्त में भी बहुत काम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों का वक्त होने के बावजूद भी काम मुकम्मल नहीं होता। इसे ही वक्त की बराका कहते हैं। बराका जब आती है जब हम अपने वक्त को सही तरीके से यूज करते हैं और उसे बेकार चीजों में जाया नहीं करते। अल्लाह का जिक्र, नमाज की पाबंदी और डिसिप्लिन वक्त में बरकत पैदा करता है। अक्सर सोशल मीडिया और बेमकसद एक्टिविटीज हमारा वक्त ले जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आज का अमल ये है कि अपने दिन के कुछ हिस्से को प्लान बनाएं और बेकार एक्टिविटीज को कम करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे महावंश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
0: FM 107। दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
4: दोस्तों, flying cars, air taxis, इनके बारे में हमने सुन रखा है, देख भी रखा है। अब सवाल ये उठता है कि how close are we to these personal air transport? देखिए, कभी आपने सोचा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम roads पर traffic में फंसने की बजाय अपनी गाड़ी

ऑफिस, शॉपिंग मॉल या किसी के घर पहुंच जाएंगे। देखिए, जो चीजें पहले साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा थी, आज पूरी दुनिया भर में वो रियलिटी बन रही है। आजकल कंपनीज एयर टैक्सीज और फ्लाइंग व्हीकल्स डेवलप कर रही है। ये व्हीकल्स इलेक्ट्रिक बैटरीज पर चलती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिजाइन की जा रही है। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सालों में सिलेक्टेड सिटीज में एयर टैक्सी सर्विसेज आम लोगों के लिए अवेलेबल हो सकती है। अब हम ये सोचते हैं कि हम फ्लाइंग कार्स के कितने करीब पहुंच चुके हैं। आज भी कई प्रोटोटाइप फ्लाइंग व्हीकल्स टेस्ट की जा चुकी हैं। कुछ व्हीकल्स वर्टिकल टेक ऑफ

अभी भी फ्लाइंग कार्स आम ट्रांसपोर्ट का हिस्सा तो नहीं बने। इसकी वजह सेफ्टी है, इसकी वजह रेगुलेशंस हैं और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं। वैसे गवर्नमेंट और एविएशन अथॉरिटीज को पहले ही इंश्योर करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए सेफ है कि नहीं। मुझे तो सुन के ही डर लगता है। इसे ये कहना ठीक है कि हमें फ्लाइंग कार्स जो है एक्साइट तो बहुत करती हैं, बट क्या हम खुद फ्लाइंग कार्स को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? आई डोंट नो, अभी तो ऑटोनॉमस कार्स का ही एक्सपीरियंस नहीं किया, फ्लाइंग कार्स का पता नहीं। लेकिन हाँ, इसके फायदे तो बेशुमार होंगे ही होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि लोग रोड्स के ट्रैफिक से बच जाएंगे, पर शायद हम कह सकते हैं कि हवा में इतना रश है। जो सफर लोग रोड पर एक घंटे में तय करते थे, अब वो चंद मिनट्स में तय हो सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए इसके फायदे की, तो एक और बड़ा फायदा है फास्ट इमरजेंसी सर्विसेज। जी हाँ, इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स हों, रेस्क्यू टीम्स हैं या फिर कोई और मेडिकल सप्लाई है, ज्यादा तेजी से डेस्टिनेशन तक पहुँच सकती है। वहीं पर टाइम सेविंग भी है। बिजी सिटीज में लोगों का बहुत सा वक्त जो है वो ट्रैफिक में यूं ही वेस्ट हो जाता है। आपको पता ही होगा कि बड़ी बड़ी सिटीज में घंटों जाम लगना बड़ी कॉमन सी बात है। एयर ट्रांसपोर्ट इस वक्त की बचत करेगा और मुझे लगता है कि आपको आपके डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंचा देगा। वहीं कई एयर टैक्सीज जो हैं वो इलेक्ट्रिक पावर पर चलने के लिए डिजाइन की जा रही हैं। इससे फ्यूल कंजम्पशन होगा और पोल्यूशन कितना कम हो जाएगा, यानी एक तरह की क्लीन टेक्नोलॉजी। और हाँ, बेटर कनेक्टिविटी, ये हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इन एरियाज में पहुँचना आसान हो जाएगा, क्योंकि रोड्स बनाने का झंझट ही नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि इतने सारे फायदे मैं गिना रही हूँ तो इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। नहीं दोस्तों, फ्लाइंग कार्स के अपने अलग चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ्टी कंसर्न। जैसे मैंने कहा कि सुनने में बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है, अगर आप कोई मूवी में देख रहे हो या कोई फिक्शन मूवी चल रही है, आपको इतनी चीजें एक्साइट करते हैं। बट अगर आपको खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करने को कहा जाए तो शायद आप रिलक्टेंट हो गई होगे। सबसे बड़ा सवाल जो मुझे रोकता है वो है सेफ्टी को लेकर। मतलब अगर हवा में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा भाई? इसीलिए बहुत एडवांस सिस्टम जो है उसकी जरूरत है। भाई एक चीज मुझे लगती है जो और भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होगी, वो है हाई कॉस्ट। शुरू में फ्लाइंग व्हीकल्स बहुत ज्यादा महंगे होंगे, हर इंसान के लिए इन्हें अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं होगा। ये तो भाई एक बात हुई। आजकल हम रोड्स पे ट्रैफिक का जो है ना वो रोना रोते हैं। कल हो सकता है हजारों फ्लाइंग कार्स हवा में हो तो उनका मूवमेंट कैसे होगा? एयर ट्रैफिक को मैनेज करना उफ बड़ा चैलेंजिंग होगा। वहां पे तो आप जो है वो सिग्नल्स भी नहीं लगा सकते, क्या करोगे फिर? उसके साथ जो है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, फ्लाइंग टैक्सीज के लिए स्पेशल लैंडिंग एरियाज और चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होगी, तो फिर एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका लोड भी बढ़ता है। फिर मैं सोच रही थी बारिश हो या फिर बहुत ज्यादा हवा चल रही हो या डस्ट है, तो ऐसे में या बहुत ज्यादा और कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह के फ्लाइंग व्हीकल से उनका ऑपरेशन बड़ा मुतासर होगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आज मौसम ठीक है तभी तो मैं जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? वैसे एक ऐसी सिटी भी आने वाले वक्त में होगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ एयर टैक्सी आप जो है वो आसानी से सिंपली मोबाइल ऐप से बुक करेंगे, वो आपके घर के नजदीक आके लैंड करेगी। आप घर से निकलेंगे, नियरेस्ट टैक्सी स्टैंड तक पहुंचेंगे और

0: पसंद करेंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद, एक बड़ा तबका ऐसा भी होगा जो ट्रेडिशनल कार्स को ही अपना फर्स्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मानेगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे, रोड पर भी ट्रैफिक, हवा में भी। अगर कल से यहाँ आपसे कहा जाए कि जी कल से दोहा में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस शुरू होगी, तो क्या आप उसमें सफर करना पसंद करेंगे? क्या आप भी आज भी ट्रेडिशनल कार पर ज्यादा भरोसा करते हैं? चलिए मुझे बताइए 666-22-107 पर। इसे ये सवाल अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है। खैर, बस आखिरी टेक यही होगा मेरा कि आज फ्लाइंग कार्स एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम लगती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार देखकर लगता है कि शायद अगले चंद सालों में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अब हम इसे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, ये एक अलग बात है। तो इस सफारी के लिए, सफारी तो नहीं कहना चाहिए, क्या हम भी हवा में सफर करने के लिए तैयार हैं? ये जवाब तो मुझे आप ही देंगे। फिलहाल जब तक आप अपने जवाब को जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे कैसे देना है, क्या देना है, मैं आपसे यहाँ पर इजाजत ले लेती हूँ। कल मिलूंगी वापस, एक और नए टॉपिक पे बात करूंगी। तब तक मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2020.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
3: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: सेहत की बात हो तो एतमा चाहिए माहिरीन की राय पर.
3: माहिरीन की राय पर
2: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड.
3: हेल्थ गाइड,
2: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात. स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई. बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक.
3: इलाज और एहतियात तक.
2: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
3: दिल से देसी.
2: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत.
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है. मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर.

जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया कि ऐ सरदार बाइक्तदार, हम और हमारे अहलो आयाल सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें भरपूर गल्ला इनायत फरमाएं और हमको खैरात दें। अल्लाह खैरात देने वालों को जजा देता है। ये सुनकर यूसुफ से न रहा गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे। वो चौंक कर बोले, हाँ, क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। हकीकत यह है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के हाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। उन्होंने कहा, बखुदा कि तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी और वाकई हम खताकार थे। उसने जवाब दिया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। जाओ मेरा यह कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, उनकी बीनाई पलट आएगी और अपने सब अहलो आयाल को मेरे पास ले आओ। जब यह काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने कनान में कहा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तुम लोग कहीं ये न कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूं। घर के लोग बोले, खुदा की कसम आप अभी तक अपने उसी पुराने खबत में पड़े हुए हैं। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने यूसुफ का कमीज याकूब के मुंह पर डाल दिया और यकायक उसकी बीनाई औत कर आई। तब उसने कहा, मैं तुमसे कहता ना था, मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे, अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरख्वास्त करूंगा, वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है।

ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी बचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के आज़ाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनके साथ चश्म पोशी से काम लेता है, और यह भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज के लिए उसके हां एक मकदार मुकर्रर है, वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है, वो बुजुर्ग है और हर हाल में बाला तर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स खास जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसां हैं। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसाओकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जब लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिर वाकई उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है।